आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 5 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं

0: का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले नमन करते हैं अपनी मातृभूमि को।

श्रद्धा ईश्वरीय प्रेम वह कुंजी है जो शाश्वत परम आनंद और मुक्ति का द्वार खोलती है।

श्रोताओं, जग जननी के दर्शन अर्चन से तन मन तो पवित्र होता ही है, साथ ही कल्याण भी होता है। हे माँ दुर्गे, आप अपने सभी भक्तों की विनती सुनो, सबका कल्याण करो।

ऐ खुदा मेरे मौला मेरी लाज रखो, या अल्लाह तू रहीम तू करीम है, मेरे सर अपनी रहमत का ताज।

ऐ खुदा मेरे मौला मेरी लाज रखो, या अल्लाह तू रहीम तू करीम है, मेरे सर अपनी रहमत का ताज रखना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आपने जो स्वर सुने वो स्वर थे मोहम्मद रफी, पंडित भीमसेन जोशी और हरि ओम शरण के। इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। चिंतन के तहत आइए सुनते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विचार।
1: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सामाजिक समस्याओं के संबंध में एक ऐसे विचारक के रूप में सामने आते हैं जो सावधानी से आगे बढ़ने के हक में थे। वो जिस युग में थे वह महान सामाजिक आंदोलनों और महान वाद विवादों का युग था, और वो हर तरह से समाज में सुधार लाने के समर्थक थे। उनका कहना था, जब रीतियां, रीति रिवाज धर्म से जुड़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म की मूल भावना से टकराव हो ही जाता है। दुर्भाग्यवश जनता धर्म की सच्ची भावना या धर्म शास्त्रों का पालन करने के बजाय लोकाचार का पालन अधिक करती है। उनके विचार में देश में सामाजिक प्रगति के मार्ग की वास्तविक बाधा यही है। ऐसी दशा में समाज सुधार के समर्थन में शास्त्रों का हवाला देना कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि लोग किसी भी हालत में लोकाचार के विरुद्ध नहीं जाते, चाहे वह कितना ही अयुक्ति संगत या बाधक क्यों ना हो। इस प्रकार प्रगतिशील कानून भी सहायक नहीं हो सकते। बंकिम जी के अनुसार इसका एकमात्र उपाय है लोक शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। ऐसा करके ही लोगों के

0: मन से पंगुता लाने वाली सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का भूत हटाया जा सकता है और तभी उनकी प्रगति के मार्ग की बाधा दूर की जा सकती है। बंकिम जी, स्त्रियों को हीन समझने और पुरुषों की अधीनता में रखने की प्रवृत्ति का कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने कहा था, शिक्षा के माध्यम से ही महिलाएं अपने पांव पर खड़ी हो सकती हैं और घर से बाहर जाकर अपनी आजीविका कमा सकती हैं। बंकिम जी इस बात पर खेद प्रकट करते हैं कि राजनीति, समाज और धर्म, यहाँ तक कि जानवरों पर भी होने वाली क्रूरताओं की रोकथाम के लिए हम कार्य करते हैं, पर न जाने क्यों समाज के अभिन्न अंग महिलाओं के प्रति हमारी कोई भावना जागृत नहीं होती। बंकिम स्वीकार करते हैं कि बहुविवाह प्रथा एक सामाजिक बुराई है और इस संबंध में सामान्य सहमति है कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब चारों ओर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। शिक्षा के माध्यम से ही जनता के सामाजिक और नैतिक स्तर में सुधार लाया जा सकता है। बंकिम जी कहा करते थे, मात्र शिक्षा ही सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों की दवा है। बंकिम कहते हैं, मानव धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग है प्राणी मात्र से प्रेम और उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करना। बिना इसके ईश्वर से प्रेम भी असंभव है। सब धर्मों का सार जब प्रेम है, तो हम प्रेम का पालन क्यों नहीं करते? हमारा धर्म हमें ये बताता है कि अपनी सभी क्षमताओं का संतुलित विकास हम करें, ताकि अंततः उसके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव पैदा हो। इसके अंतर्गत मनुष्य से ये अपेक्षा की जाती है कि उसकी ईश्वर के अस्तित्व और सब प्राणियों में उसके अदृश्य अस्तित्व में दृढ़ आस्था हो और वह समझे कि उन सबसे प्रेम करना उसका धार्मिक एवं नैतिक दायित्व है। इस प्रकार व्यक्ति मानवता की संपूर्ण संरचना में सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को, जिनमें देश के प्रति उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है, हम पूरा करें, ताकि हम अपने आध्यात्मिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके और राष्ट्र के हित में काम आ सके।
1: चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विचार।

हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता है वहां, राष्ट्रभाषा है जहां।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है हमारे आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार होंगे अनुराधा पोटवाल। प्रातः 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी डॉक्टर पीसी रावत की वार्ता। विषय होगा दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दूध निकालने के परिणाम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर जानकारी देंगे डॉक्टर वी के राजपाल। बच्चों के दिल में छिद्र होना कारण और लक्षण विषय पर प्रातः 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। सुबह 9:25 पर आप सुन सकेंगे गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे

सुबह 9:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मनोरमा तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। सुबह 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित सी आर व्यास से राग गुर्जरी तोड़ी और ठुमरी में और ठुमरी राग मिश्र कौशिया में ख्याल गायन। सुबह 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम में आप सुनेंगे कलाकार निर्माता मुकेश भट्ट के विषय में। 11:30 पर प्रसारित किया जाएगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व। दोपहर 12:00 प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दोपहर 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा बहनों का अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें चर्चा का विषय होगा हमारी सोच धरती और हम। सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में बात की जाएगी मेरी पहचान सेगमेंट में। काफ्तान लगते हैं कमाल इस विषय पर जानकारी दी जाएगी फैशन और ब्यूटी सेगमेंट में। इसके अलावा आप सुन सकेंगे डॉ प्रभा गुप्ता से काव्य पाठ। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में नश्र की जाएंगी चंद गजलें, कलाकार होंगे प्रेरणा केशव। दोपहर 2:30 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत, जिसमें कलाकार होंगे पंडित अजय पोहनकर। दोपहर 3:00 सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम अंजुमन, जिसमें आप सुनेंगे मकाला कुदरत का बचाव, मकाला निगार होंगे अताउल्ला। कलामी शायर के तहत शिरकत करेंगे मोहम्मद वसी बेग और सुनिएगा अफसाना पॉलिथिन, अफसाना निगार होंगे महमूदा कुरेशी। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय होगा शीत जल मत्स्य संपदा। साथ ही सुनिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर बातचीत नई पहल सेगमेंट में। क्लियर टेक्नोलॉजी पर बात की जाएगी वैज्ञानिकी के तहत और वार्ता सुनवाई जाएगी उन्नति अग्रवाल से, विषय होगा युवा पीढ़ी और हरित भविष्य की जिम्मेदारी। चलते चलते जानकारी दी जाएगी हीट स्ट्रोक यानी लू से बचाव के संबंध में। शाम 6:00 ग्रामीणों कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मन के हारे हार है मन के जीते जीत। साथ ही सुनिएगा वार्ता पशुओं में कुपोषण से होने वाले रोग, वार्ताकार होंगे डॉक्टर आदित्य कुमार। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। कानूनी वार्ता सेगमेंट में बात की जाएगी श्रमिकों की हड़ताल और कानूनी प्रावधान विषय पर, वार्ताकार होंगे ज्ञानेंद्र कुमार रावत।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर पीसी रावत की वार्ता। विषय है दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दूध निकालने के परिणाम।
1: प्यारे किसान भाइयों, हमारा देश

दूध के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। दूध पशुओं के अयन में स्थित दुग्ध ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव है। दूध मनुष्य के लिए संपूर्ण भोजन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पशुओं के अयन में स्थित दुग्ध ग्रंथियों से दूध का स्राव लगातार होता रहता है तथा दुग्ध कूपों में दूध जमा होता रहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से दुग्ध कूपों की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तथा दूध थनों में उतर आता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पसराना कहते हैं। जब बछड़ा दूध पीता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है तथा पशुओं में पसराने की क्रिया होती है। कुछ विपरीत परिस्थितियां आने पर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण अयन में दूध भरा होने के बावजूद भी पशु पसराता नहीं है तथा पशुपालक दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दूध निकालते हैं। जिस दवा की सुई लगाई जाती है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त में मिल जाता है तथा दुग्ध कूपों की मांसपेशियों को संकुचित करता है, जिसके कारण पशु दूध को उतारने हेतु मजबूर हो जाता है। दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दूध लेने की स्थिति दुधारू पशु के बछड़े की मृत्यु होने पर बनती है। ऐसी स्थिति में पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन न निकलने के कारण पशुपालक सुई लगाकर दूध निकालने की प्रक्रिया अपनाते हैं। स्थान तथा दूध धोने वाले व्यक्ति के बदलने पर भी यह स्थिति आ जाती है। पशुओं में सुई लगाकर दूध लेने के कई घातक परिणाम हैं। सुई लगाकर दूध लेने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के साथ निकलता है। ऐसे दूध को पीने के घातक परिणाम सबसे अधिक कम उम्र तथा किशोर उम्र के लड़के तथा लड़कियों पर पड़ते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से किशोर उम्र से पहले ही लड़कों के जल्दी दाढ़ी मूंछ निकल आती है। किशोर उम्र से पूर्व ही लड़कियों में युवावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। सुई लगाकर निकलने वाले दूध को पीने से महिलाओं का मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है। दुधारू पशुओं से सुई लगाकर दूध लेने के घातक परिणाम दुधारू पशुओं पर भी पड़ते हैं। जिन पशुओं से सुई लगाकर दूध निकाला जाता है वे पशु गर्मी पर नहीं आते हैं। यदि ऐसे पशु गर्मी पर आ भी जाते हैं तो आसानी से गर्भधारण नहीं करते हैं। दुधारू पशुओं को सुई लगाकर दूध निकालने से पशुओं को सुई लगाकर दूध निकालने की आदत पड़ जाती है तथा बिना सुई लगाए ऐसे पशु दूध नहीं देते हैं। लंबे समय तक पशुओं के गर्भधारण न करने से पशुओं द्वारा दिए गए दूध की मात्रा काफी कम रहती है तथा पशु आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं रहता है। इन्हीं सब घातक परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दूध निकालने के इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेडिकल स्टोर पर अनधिकृत रूप से रखे जाने अथवा बेचे जाने पर यह अपराध माना जाता है। दुधारू पशुओं को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने की पद्धति गांवों की अपेक्षा शहरों में ज्यादा प्रचलित है। शहरवासी ताजा दूध शहरों में रखे जाने वाले पशुओं से लेते हैं। शहरों में दुधारू पशुओं के तबेले पाए जाते हैं। दुधारू पशु पालने से ये लोग अच्छे नस्ल के दुधारू पशुओं को खरीद लेते हैं तथा बछड़े को दूध न पिलाकर पूरा दूध निकालते हैं। बछड़े को दूध न मिलने के कारण तथा बछड़े की सही देखरेख न होने के कारण कुछ ही दिनों में बछड़ा मर जाता है तथा पशु दूध देने में परेशान करता है। ऐसी स्थिति में शहरों में पशु रखने वाले ये लोग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने से पशु दूध उतारने हेतु मजबूर हो जाता है तथा बिना किसी कठिनाई के पशु दूध निकालने देता है। शहर में पशुओं को पालने वाले व्यक्तियों के लिए पशु का जल्दी गर्भधारण करना आवश्यक भी नहीं होता है तथा पशु बहुत दिन तक दूध देता

रहता है। दुधारू पशु के द्वारा कम दूध दिए जाने की स्थिति में शहर के पशुपालक पशुओं को बेच देते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए दूध के खरीदारों को यह मालूम कर लेना चाहिए कि जिस स्थान से वह दूध ले रहे हैं वहाँ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग हो तो नहीं रहा है। यदि वहाँ पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है तो उस स्थान से दूध नहीं लेना चाहिए। साथ ही शहर के पशुपालकों को यह प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि वे दुधारू पशुओं के बछड़ों का अच्छी तरह से पालन पोषण करें, उन्हें पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं जिससे बछड़ों की मृत्यु न हो। इसके साथ ही यदि किसी कारण दुधारू पशु का बछड़ा मर जाता है तो पशुपालक ऑक्सीटोसिन का प्रयोग न कर पशुओं के साथ नरम व्यवहार करें तथा पशु चिकित्सक से सलाह लें। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में दूध उतारने के लिए किया जाना इस हार्मोन का दुरुपयोग है। दुधारू पशुओं में बछड़े की मृत्यु, स्थान बदलने तथा दूध दुहने वाले व्यक्ति के बदलने से यदि पशु दूध नहीं उतारे तो पशु के साथ नरम व्यवहार किया जाना चाहिए। पशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशु के थनों को धीरे धीरे सहलाना चाहिए। यदि पुराने दूध धोने वाले व्यक्ति को लाना संभव हो तो पुराने दूध धोने वाले व्यक्ति को लाकर कुछ दिन नए व्यक्ति के साथ दूध निकलवाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। यदि इन सभी उपायों से पशु दूध न उतारे तो पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए तथा दूध निकालने वाले इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए।

खेती की बातें कार्यक्रम में अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पीसी रावत दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दूध निकालने के परिणाम विषय पर।

जब पेड़ कटता है तो जीवन घटता है। अगर बनाना है देश महान तो आओ रखें पर्यावरण का ध्यान। जहां हरियाली वहां खुशहाली। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में

0: भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और इसका अपने आप पता तब लग सकता है यदि आप शुरू से ध्यान दें कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो क्या ठीक से बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ रहा तो हो सकता है उसके किसी हिस्से में और हो सकता है दिल के अंदर छेद वाली प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चा दूध पीते वक्त हाँफ जाता है, कभी कभी उसके सर पे पसीना आ जाता है, और अगर बच्चा बड़ा है तो वो खेलता है दौड़ता है तो हाँफ जाता है, ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी बच्चा नीला भी पड़ जाता है और इस नीलेपन का कारण दिल के अंदर दूसरे दोषों के अलावा दिल में छिद्र का होना भी हो सकता है। जब कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम जो है बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं और बाल रोग विशेषज्ञ को हमने ट्रेनिंग दी है कि वह दिल की जांच करके ये बता सके कि क्या दिल में कोई खराबी है कि नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि दिल की आवाज़ों में कोई खराबी है तो आगे जांच करके वो इसको कंफर्म कर देते हैं। इसके बारे में शंका का समाधान ऐसे हो सकता है कि जो दिल है हमारा वो 6 हफ्ते तक जब पेट में बच्चा होता है तभी पूर्ण बन जाता है। अगर उस वक्त माँ में कोई दोष है, माँ में कोई बुखार है, खांसी है या कोई अनुवांशिक चीज़ है तो उसका असर दिल पे पड़ सकता है और दिल के अंदर कोई ना कोई खराबी पैदा हो सकती है। पर अभी तक के अध्ययनों से पता लगा है कि 90% बच्चों में जिनके अंदर ये खराबी होती है उसका पता ठीक से नहीं लग पाता और उसका कारण ज्ञात नहीं हो पाता। अब ये छिद्र होता क्या है? ईश्वर ने जब बच्चे को पेट में रखता है, भ्रूणावस्था में होता है, उस वक्त उसको जिंदा रहने के लिए मां से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो तरह तरह के द्वार भगवान उसमें खोल देता है और जो ही बच्चा पैदा होता है इन द्वारों को बंद हो जाना पड़ता है। पर किसी कारणवश अगर ये द्वार बंद नहीं हो पाते तो डॉक्टर और आप जो है बच्चे को तकलीफ होती है और कहा जाता है कि बच्चे के अंदर छेद हो गया। एक्चुअली ये छेद जो है एक नॉर्मल चीज होती है, इसको बंद होना होता है, अगर नहीं बंद हो पाता तो कहते हैं दिल में छेद। इसकी दो मुख्य जो है अवस्थाएं हैं, एक अवस्था है VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये जो हमारा दिल है उसके नीचे के भाग के अंदर कोई द्वार खुला रह जाता है तो उसे VST कहते हैं, अगर ऊपर के भाग में कोई द्वार खुला रहता है तो उसे ASD कहते हैं। और ये कई तरह का हो सकता है, कई बार तो ऐसा हो सकता है कि जिंदगी भर आपके दिल के अंदर ऐसी अवस्था हो आपको पता ही ना लगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये अवस्था इतनी ज्यादा भयानक होती है कि थोड़े से ही दिनों में बच्चा जो है पनपता नहीं है ठीक से और वो जो है तरह तरह से हाँफ जाता है, तरह से नीला पीला पड़ता है, तो इसी अवस्था में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। जब आपको पता लग गया कि दिल के अंदर छेद है तो आपको ये भी इच्छा होगी कि मैं जानूं इसका उपचार क्या। 20-30% जो ये डिफेक्ट्स हैं, जो ये छेद हैं, ये अपने आप भी समय के अनुसार बंद हो जाते हैं। इसमें ये देखना पड़ता है कि डॉक्टर इस बात का ध्यान रखे कि कोई भी जटिलता ना पैदा हो, पर अगर ये अपने आप बंद नहीं होता है, जटिलता होती है, तो अब हमारे पास बहुत ही सेफ तरह के इंटरनेशनल प्रोसीजर्स और बहुत ही सेफ तरह के ऑपरेशंस आ चुके हैं, घबराने की कोई बात नहीं है और 99% इसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर VK राजपाल बच्चों के दिल में छिद्र होना कारण और लक्षण विषय पर। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला।
1: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदु

वस्तुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे वायु युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा

0: दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। तो नए चैलेंजेस हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी PAC, SDRF और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि PAC, SDRF और UPSSF को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से PAC की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला PAC बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही SDRF को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
3: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियाँ हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
5: रक्षा मंत्री आज पूर्वाहन 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराहन 12:15 विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ माँ के नाम रोपित करेंगे। अपराहन 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4:00 दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे।

0: 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायोयुग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, स्वास्थ्य

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी सुनैना। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 6 जून को होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने यह फैसला अटल बिहारी वाजपेयी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के कारण से लिया है। 6 जून को होने वाली ये परीक्षा अब 20 और 26 जून को होगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार शनिवार को दोनों पालियों में होने वाली बीएससी कृषि, एमएससी कृषि और बीए एलएलबी एलएलबी की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत की संभावित तिथि आ गई है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 3 अगस्त को करने की योजना बनाई जा रही है। इसी के तहत विश्वविद्यालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि इस बार विश्वविद्यालय अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगा। इसी के तुरंत बाद विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 का दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा। लोक भवन की ओर से इसकी संभावित तिथि को साझा कर दिया गया है। विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह का आयोजन 3 अगस्त को कराएगा। इससे पहले विश्वविद्यालय को कुलाधिपति के निर्देशों के अनुसार दीक्षोत्सव का आयोजन करना है, साथ ही अपना शताब्दी समारोह आयोजित करना है। ऐसे में विश्वविद्यालय ने दीक्षांत के लिए भी कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार दीक्षांत समारोह में लगभग 150,000 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधि प्रदान की जाएगी।

श्रोतो, कमिश्नरेट में 8, 9 और 10 जून को नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होगी। 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रत्येक पाली में करीब 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कमिश्नरेट में धारा 163 पूर्व में जो धारा 144 लागू कर दी गई है। डीसीपी मुख्यालय ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। परीक्षा के दौरान फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। साइबर और सर्विलांस सेल सक्रिय रहेगी। हाईटेक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आगरा में फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हाथरस, अलीगढ़ के अभ्यर्थियों का सेंटर रहेगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे और दूसरी शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच आयोजित होगी। श्रोताओं, प्रत्येक पाली में 12,000 को बुलाया गया है। पहले सिर्फ परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन कराया जाता था। पहली बार केंद्र पर ड्यूटी करने वाले हर कर्मचारी का भी बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। परीक्षार्थी केंद्र में सिर्फ पहचान पत्र, प्रवेश पत्र और काले नीले रंग का पेन ही ले जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम तक में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी। परीक्षा से पहले ही एसओजी को सक्रिय कर दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग ने हाल में संपन्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में चेहरा मिलान प्रोटोकॉल सफलतापूर्वक लागू किया। यूपीएससी ने गुरुवार को एक बयान में ये जानकारी दी है। कहा गया है कि चेहरा मिलान प्रोटोकॉल ये तय करता है कि फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी ने जो तस्वीर अपलोड की थी वह परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ पहुंचे व्यक्ति से मेल खाए। कहा गया है कि चेहरा मिलान व्यवस्था ने केंद्रों पर मौजूद पर्यवेक्षकों को

मोबाइल फोन आधारित सत्यापन के जरिए अभ्यर्थियों का वास्तविक समय में लाइव प्रमाणीकरण करने में सक्षम बनाया, जिससे निर्बाध पहचान पुष्टि सुनिश्चित हुई। यूपीएससी ने 24 मई को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के दौरान देश के सभी 2072 परीक्षा केंद्रों पर चेहरा मिलान प्रोटोकॉल का अभ्यास किया।

श्रोताओं, दिव्यांग असाध्य रोगी शिक्षकों के तबादले होंगे। जी हाँ, जनगणना के बीच दिव्यांग व असाध्य रोगी शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। जनगणना के कार्य में लगे होने से सिर्फ जरूरतमंद शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा शैक्षिक सत्र वर्ष 2026-27 में दी जाएगी। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले को नीति जारी कर दी गई है। इसके लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और समय सारणी जारी होगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी नीति के अनुसार ऐसे शिक्षक जो खुद या अपने पति पत्नी में से कोई और अविवाहित पुत्र या पुत्री के दिव्यांग होने, शिक्षक शिक्षिका व उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने या अध्यापक अध्यापिका व उनके अविवाहित पुत्र या पुत्री की डायलिसिस होने और पति पत्नी दोनों परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षक हैं और उनमें से कोई आवेदन करता है तो जहां पर शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा उस जिले में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। फिलहाल सिर्फ जरूरतमंद शिक्षकों को ही स्थानांतरण की सुविधा दी गई है, बाकी शिक्षकों को इसके लिए छोड़ा गया है क्योंकि वे जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। जनगणना के बीच शिक्षकों के तबादले से काम गड़बड़ा सकता है।

श्रोताओं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पराविधिक स्वयंसेवक या अधिकार मित्र के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यह पहल राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के तहत जिला मुख्यालय व तहसील स्तर पर की जा रही है। इन स्वयं सेवकों का कार्य दूरस्थ ग्रामों में निर्धन, असहाय और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की मदद करना होगा। सेवानिवृत्त अध्यापक, वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता पात्र होंगे। चयनित स्वयं सेवकों को अधिकतम 20 कार्य दिवस के लिए प्रति कार्य दिवस ₹750 का मानदेय दिया जाएगा। आवेदन पत्र में पहचान पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्रों सहित सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी परिसर गेट संख्या 4 आगरा के कार्यालय में जमा होंगे। अंतिम तिथि 10 जून दोपहर 1:30 तक है।

श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिकों को यदि कोई समस्या हो तो अब फ्री हेल्पलाइन नंबर पर वे अपनी समस्याओं का समाधान कराने को मदद ले सकते हैं। उन्हें किसी भी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 14567 शुरू किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा संबंधी मार्गदर्शन, आपातकालीन सहायता, वृद्धाश्रमों से संबंधित जानकारी, वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार से बचाव, भावनात्मक समर्थन और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सलाह में मदद करती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन व वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कल्याण साथी हेल्पलाइन नंबर 14567

श्रोताओं, डाक सेवाओं से संबंधित जन शिकायतों के निस्तारण के लिए 9 जून को प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में डाक अदालत आयोजित होगी। पोस्ट मास्टर जनरल इसकी अध्यक्षता करेंगे। जिन परिवादों का निस्तारण संबंधित डाक अधिकारियों के स्तर पर न हुआ है, उन्हें 5 जून यानी आज तक सहायक निदेशक डाक सेवाएं कार्यालय में भेजे। विवाह पंजीकरण में अब वर वधू और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उप निबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। पात्र आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। खेल तालाब योजना के तहत किसानों को निजी भूमि पर तालाब खुदवाने के लिए 52,500 रूपये का अनुदान मिलेगा। भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित है। तालाब का उपयोग वर्षा जल संचयन, मत्स्य पालन और सिंचाई में होगा। रेलवे पियानो ने बताया कि सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सूबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी।

रेलवे बोर्ड ने बेहद महत्वाकांक्षी नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश के प्रमुख रूटों पर चलने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा को 110 से बढ़ाकर सीधे 130 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा। श्रोताओं, ये ट्रेनें राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की गति से दौड़ेगी। इससे सालाना करीब 40 से 45 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुरुआती चरण में उन ट्रंक रूट्स यानी प्रमुख रेल मार्ग को शामिल किया जा रहा है, जहां ट्रैक सुदृढ़ीकरण, भारी पटरियां और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम लगभग 90% से ज्यादा पूरा हो चुका है।

श्रोताओं, हरी पर्वत से दिल्ली गेट के रास्ते एक लेन बंद रहेगी। ट्रैफिक प्लान किस तरह का रहेगा, किन वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग किया जा सकेगा, ये हम आपको बता रहे हैं। हरी पर्वत और दिल्ली गेट के आसपास लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम को वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं ताकि ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा सके। स्पीड कलर लैब तिराया से डीमार्ट होकर दिल्ली गेट जाने वाले मार्ग को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त कराकर सड़क की मरम्मत कर दी गई है। बीच बीच में डिवाइडर भी बनाए गए हैं। सेंट जॉन्स चौराहा से लोहा मंडी तक की सड़क से सभी प्रकार के स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाकर उसकी तत्काल मरम्मत करा दी गई है।

ताकि मुख्य मार्ग का दबाव कम हो सके। अधिकारियों के मुताबिक हरी पर्वत क्षेत्र से ये निर्माण कार्य अभी कम से कम एक महीने तक जारी रहेगा। पहले ये काम कई महीने पहले शुरू होना था, लेकिन एमजी रोड पर चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य के चलते पुलिस ने शहर को भीषण जाम से बचाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। बाद में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 15 मई से 15 जून तक की अनुमति दी, लेकिन किन्हीं कारणों से काम समय से शुरू नहीं हो सका। अब जब काम शुरू हुआ है तो ट्रैफिक को नियंत्रित करना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

श्रोताओं, ताज नगरी में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने फिर से आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दो दिन मौसम में भारी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ताज नगरी के लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दें खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। जशोदा पुत्री प्रेम सिंह निवासी फिरोजपुर सिहोला थाना ढोलना जनपद कासगंज से 15 अप्रैल 2026 से लापता है। जशोदा की उम्र 28 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ, शरीर मध्यम है। गुमशुदगी के समय ये प्याजी रंग की साड़ी और पैरों में चप्पल पहनी हुई थी। इनके विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना ढोलना जनपद कासगंज को सूचित करें। अन्य सूचना के अनुसार आरती पत्नी सुनील निवासी बीमपुर थाना पटियाली जनपद कासगंज से 19 अप्रैल 2026 से लापता है। आरती की उम्र करीब 35 वर्ष, कद 5 फुट है। गुमशुदगी के समय ये सलवार सूट पहनी हुई थी। इनका रंग गोरा, शरीर मध्यम, आंख नाक कद औसत है। आरती के विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना पटियाली जनपद कासगंज को सूचित करें। अंतिम सूचना के अनुसार दीक्षा पुत्री नानक चंद्र निवासी मऊ तालुका बरौली थाना कोतवाली देहात जनपद एटा से 15 मार्च 2026 से लापता है। इनकी उम्र 25 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, चेहरा गोल, रंग साफ है, आंखें औसत और बाल काले लंबे हैं। गुमशुदगी के समय ये सलवार सूट पहनी हुई थी। इनके विषय में यदि आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना कोतवाली देहात जनपद एटा को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाए और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आज 5 जून है और आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून संयुक्त राष्ट्र इस बात से अवगत है कि मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो विश्व भर के लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। इसी कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय

सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करना नहीं, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति देने वाली प्रणालियों पर पुनर्विचार करने और जलवायु के साथ हमारे संबंधों को सुधारने के बारे में है। श्रोताओं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की शुरुआत 5 जून को ही हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के विषय में हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जिससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नकारते हैं, उसके बारे में गहराई से चिंतन मनन करने से बचते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है। यदि हम जागरूक होंगे तो छोटे छोटे प्रयासों से हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण के विषय में जागरूक करना और जैव विविधता के नुकसान जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना है। दुनिया भर के लोगों, सरकारों और उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाना होगा और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए सतत विकास जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी सुरक्षित रहे। हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं जिससे जीवन बचा सकें, पर्यावरण को स्वच्छ बना सकें। अपनी धरती माँ की रक्षा हम इसी सच्ची शिक्षा के साथ कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्रदूषण को दूर भगाओ, हरा भरा देश बनाओ। इसके लिए हमें सबसे पहला कदम प्लास्टिक को कम करना होगा। अपने जीवन से हम प्लास्टिक कम करेंगे तो कई तरह की गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक पेड़ एक जिंदगी, यही मूल मंत्र है अपने पर्यावरण को संरक्षित करने का। तो आइए मिलकर आज ही कसम खाएं कि इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और छोटे छोटे प्रयास करेंगे। कोई बड़े काम नहीं करने हैं, बस अपने आसपास हरियाली बनाए रखें, पेड़ जरूर लगाएं और जहां भी पेड़ हो उनका ध्यान रखें। इसी से छोटे छोटे जीवों को हम संरक्षित कर सकते हैं। श्रोताओं, आज अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछली पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों को समाप्त करना ही इसका उद्देश्य है, जिससे वैश्विक सहयोग बढ़ाना, निगरानी और डेटा साझा करना, खाद्य सुरक्षा और मछली संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण करना है। पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो हम संरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी और छोटे छोटे जीव, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी सुरक्षित रहेंगे। तभी तो हम गुनगुना सकेंगे।

श्रोताओं, छोटे छोटे प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक से बचें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, प्रदूषण को कम करें, कचरे का सही निपटान करें, जो वस्तुएं दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं उन्हें फेंकने के बजाय रिसाइकिल करें, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और सबसे अहम बात, जागरूकता फैलाएं। खुद भी पर्यावरण नियमों का पालन करें और दूसरों को भी पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक करें। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से ही हम अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ ही कार्यक्रम आसपास को संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी सुनैना को अब इजाजत दीजिए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।

समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया। कहा, अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर

0: आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2 से 6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
1: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
1: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to

0: deeper energy ties, writes the Tribune. As a court sent Lokesh Bajaj, owner of the hotel where 21 people were killed in a devastating fire, to police custody, the Delhi government said it would withdraw its bed and breakfast policy, reports the Pioneer. A picture on its front page shows family members at the last rites of the victims of the fire under the headline, Eight Fires, One Broken Family. Still seething with anger at the Congress ditching it and switching over to the TVK immediately after the Tamil Nadu Assembly elections, the DMK announced its decision to boycott the INDIA block meeting slated for the 8th of June, says a top headline in the Statesman. Rebel Rita Brata's expulsion from TMC void, writes the Asian Age, quoting the West Bengal Assembly Speaker, adding that there are 61 MLAs in the rebel camp. And its editorial, titled Funding India's Climate Future, a $1 trillion question, the Hindu writes that India will require roughly $2.5 trillion by 2030 to meet its nationally determined contributions. Over the longer term, the cost of achieving net zero emissions by 2070 is estimated at $10.1 trillion, nearly three times India's current GDP. And finally, in what climbers are calling a miracle, 52-year-old Sherpa guide, who was presumed dead at Mount Everest after he vanished during descent on May 29th, was found alive 6 days after base camp, reports the Times of India under the headline, Sherpa survives 6-day Everest ordeal, sans food, oxygen. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasana Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दो माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। उन्होंने भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार करार दिया है। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सूरत जा रहे हैं, जहां वो सड़कों, बिजली और सनती शोबों में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पहले हाजिरा जाएंगे और सनती और बुनियादी ढांचे के मौजूदा प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। वजीर आजम दोपहर को एक बड़े जलसयाम से खिताब करेंगे। जनाब मोदी शाम को दमन जाएंगे और तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इलाकाई बुनियादी ढांचे को खास तौर से फरोग देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 8 लेन वाले वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर आजम कबायली खितों और मुजस्मा इत्तेहाद तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कौमी शाहराह 56 पर अहम हिस्से को 4 लेन बनाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अवामी फलाह बहबूद की खातिर वो सूरत में एक जदीद 200 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो 24

0: 24 घंटे इमरजेंसी और ट्रॉमा खिदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अहम और सनती बुनियादी ढांचे से मुतालिक प्रोजेक्टों का भी आगाज किया जाएगा, जिनमें गुजरात में तरसीली निजाम की तौसी और वलसाड़ में बिजली की तकसीम की जदीद कारी शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो जब अपने अपने वतन वापस जाएं तो आयुष वजारत की योग 365 मुहिम के सफीर बने। अहमदाबाद में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आयुष की वजारत ने योग के साथ पूरे साल सरगर्मियों की हौसला अफजाई करने और सभी तबकों में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए योग 365 का आगाज किया है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: वजीर आजम ने कहा कि ये चैंपियनशिप खेल मुकाबले से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है और इससे दुनिया भर में योग के वसी तर पैगाम की तशहीर का मौका फराहम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपने 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में माली पॉलिसी कमेटी की जानिब से किए गए फैसलों का ऐलान करेंगे। 6 अरकान पर मुश्तमिल माली पॉलिसी कमेटी ने बुध के रोज 3 रोजा तबादला ख्याल का सिलसिला शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी अहम पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं की थी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: सरकार ने अफराद जर की शरह पर मबनी अशियाए सारफीन की कीमतों का इशारिया 4% तय किया है। मरकजी बैंक के लिए इसकी बालाई हद 6% और निचली हद 2% रखी गई है। अप्रैल के महीने में अशियाए सारफीन की कीमतों का इशारिया मामूली बढ़कर 3.48% हो गया और ऐसा सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ रसोई की कुछ अशिया की कीमतें बढ़ने की वजह से हुआ। चूंकि अशियाए सारफीन की कीमतों का इशारिया तय की गई हदूद के अंदर है, लिहाजा इक्तसादी माहिरीन ये उम्मीद कर रहे हैं कि अहम शरह सूद 5.25% की सतह पर ही बरकरार रहेगी। उनका यह भी कहना है कि मगरबी एशिया महास आराई की वजह से इफरात जर की शरह और माशी तरक्की को लाहक चैलेंजेस के तनाजुर में रिजर्व बैंक मोहतात रवैया अख्तियार करेगा। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 97 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। डॉक्टर कश्यप साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली आला सतह की उस कमेटी में शामिल थे जो एक साथ इंतखाबात कराए जाने के बारे में कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए तश्कील दी गई थी। वो 1983 से लेकर 1990 तक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर फायज रहे। डॉक्टर कश्यप 100 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उनके इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि डॉक्टर कश्यप ने अपने मुताले इल्म तसानीफ और अवामी खिदमत के जरिए भारत के आईन और पार्लिमानी जमहूरियत की सूझबूझ के सिलसिले में गरां कदर रोल अदा किया। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर तरुण कपूर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुशीर की हैसियत से मुद्दत कार में 1 साल की तौसी को मंजूरी दे दी है। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुत्तला किया है कि वजीर आजम के दफ्तर में जनाब कपूर की तौसी शुदा मुद्दत कार 1 साल के लिए इस माह की 10 तारीख से शुरू होगी। तकर्रियों से मुतालिक काबीना कमेटी ने वाशिंगटन में आलमी बैंक हेडक्वार्टर में नीलकंठ मिश्रा की बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तकर्री को मंजूरी दे दी है जिसकी मुद्दत कार 3 साल होगी। अमले और ट्रेनिंग के महकमे ने मुतला किया है कि जब तक नए अहदेदार जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं तब तक परमेश्वरन अय्यर की मुद्दत कार में तौसी भी दी गई है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद ने राज्यसभा की 4 खाली सीटों में से 3 तेलुगु देशम पार्टी को और 1 जनसेना पार्टी को देने का फैसला किया है। कल रात अमरावती में एनडीए के इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का ऐलान किया। ये खबरनामा

0: आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रूस की कलीदी साझेदारी की सताइश की है और जोर देकर कहा है कि रूस के साथ अपना इश्तराक कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने की मगरबी मुल्कों की कोशिशें लाहासिल हैं और इनसे आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। सरकर्दा आलमी खबर रसा एजेंसियों के सरबराहों के साथ गुफ्तगू में सदर पुतिन ने भारत की मुआशी तरक्की और उसकी आजादाना खारजा पॉलिसी को सराहा और कहा कि रूस भारत के साथ अपने इकतसादी राबतों को वसत देने का पाबंद है। सदर पुतिन ने कहा कि भारत की मुआशी तरक्की उस मेहनत का नतीजा है जो भारत सरकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कर रही है। रूस के सदर ने यह भी कहा कि अमरीका के साथ भारत के सिफारती राबतों से रूस के साथ वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसके रिश्तों में कोई खलल नहीं पड़ता और न ही ये कमजोर होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक काबिल भरोसा साझेदार मानता है और किसी दूसरे मुल्क के साथ भारत के बाहमी ताल्लुकात की वजह से किसी तरह के मनफी मुजमरात की कोई बात नहीं है। सदर पुतिन ने मजीद कहा कि भारत एक अजीम मुल्क और अजीम जमहूरियत है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वसअत देता रहेगा। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुरे अर्ज पर जिंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: फितरत और कुर्राए अर्ज के तहफ्फुज़ के लिए माहौलियात के एतबार से मुस्बत इकदाम करने के लिए बेदारी बढ़ाने की खातिर ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कौमी राजधानी में मैदान घड़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर वुजराए आला अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम तकरीबात और इकदामात के जरिए यह दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियां करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज्यादा साफ, ज्यादा सरसब्ज, शादाब और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबो हवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का इयादा करें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह दो रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे जिसका मौजू लेवेंडर गोज ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा जिले के भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। सीएसआईआर आईआईएम की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोजा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहेली कर्नाटक, केरलम, माहे, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के हिस्सों में दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जसायर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहेली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ककामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है।

0: भारतीय टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफाए अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद किफालत के लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तावुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानूनसाज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के निफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावामी खबरें इस तरह से हैं, अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरियत को रोका, तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हुरमुस के मुतबादल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगू।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष वजारत की योगा 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

प्यार तो होना ही था। जी हाँ, इस फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना कुमार सानू की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था विनोद महेंद्र ने और धुन बनाई थी जतिन ललित ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं दिल क्या करे फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है एक बार फिर जतिन ललित ने और आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। इस कार्यक्रम में अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजों में है। शब्द रचना समीर की है और संगीत नदीम श्रवण का है। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजों में अभी आपने इस गीत को सुना जिसे हमने लिया था फिल्म दिल है तुम्हारा से। आइए अब सुनवाते हैं आपको लकी अली और राम्या की आवाजों में इब्राहिम अश्क की शब्द रचना, संगीत राजेश रोशन का और फिल्म का नाम कहो ना प्यार है।

श्रोताओं, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में सुनिए समीर की शब्द रचना, स्वर उदित नारायण का, और फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण के स्वर में समीर की शब्द रचना, संगीत जतिन ललित का था और फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

0: हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
1: राम मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित मां भगवती मंदिर के शिखर पर साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंबरा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धन ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ ही मातृ शक्ति भी मौजूद रही। दोनों साध्वियों ने इसे राम मंदिर आंदोलन के लंबे संघर्ष, त्याग और सनातन स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। ध्वजारोहण के साथ पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामनगरी अयोध्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सौगात दी है। जिले के मौशीवाला क्षेत्र में 17.72 करोड़ रुपए की लागत से लौकुश पार्क विकसित किया जाएगा। कचरे से कला थीम पर बनने वाले इस पार्क में स्क्रैप सामग्री से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को 3D इंस्टॉलेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। आधुनिक साउंड लाइट शो, डिजिटल तकनीक और इंटरएक्टिव मॉडल के जरिए श्रद्धालु रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों से साक्षात कर सकेंगे। पार्क में आकर्षक उद्यान, वॉकवे, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि
2: अयोध्या नगर निगम के द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी अंतर्गत 17.72 करोड़ का लकुश पार्क वेस्ट वंडर पार्क स्वीकृत हुआ है।
1: अयोध्या में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सिविल लाइन ईदगाह सहित सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। DM शशांक त्रिपाठी और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। नमाज के दौरान देश दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी गई। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अयोध्या में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बताया। मंत्री ने कहा कि करीब 54 लाख विद्यार्थियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लिया और पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के 7वें

0: बैच के 835 अग्निवीरों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना में कदम रखा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अवधि में जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल, शारीरिक दक्षता और सैन्य मूल्यों का प्रशिक्षण दिया गया। परेड की समीक्षा ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की और जवानों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने कहा,
1: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में ज्वाइन करेंगे।
0: अयोध्या नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। राम की पैड़ी और नया घाट से अभियान का शुभारंभ हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लगभग 400 स्थानों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हजारों सफाई कर्मियों और सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए। नगर निगम ने शहर वासियों से भी स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आह्वान किया कि निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में इक्ष्वाकु वंश की विशेष हाईटेक गैलरी बनाई जाएगी। डिजिटल तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम की 63 पीढ़ियों का इतिहास दर्शाया जाएगा। दर्शक डिजिटल प्रतिकृतियों के जरिए राजाओं के शासनकाल, धार्मिक महत्व और वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह गैलरी नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या में निवेश का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अमिताभ बच्चन के बाद अब अभिनेता रणबीर कपूर ने भी विगत दिन तिहरा मांझा क्षेत्र में 2.42 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूखंड राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे अयोध्या में रियल इस्टेट और निवेश गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा दशहरा और बड़े मंगल के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। पर्व को लेकर घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी करता रहा। अयोध्या में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर जल प्याऊ और ORS वितरण के केंद्र स्थापित किए गए हैं।
2: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग लाइंग ने गौतम बुद्ध नगर के NTPC लिमिटेड की अनुसंधान एवं विकास इकाई NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस का दौरा किया, जिसमें म्यांमार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। इस मौके पर NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह तथा NTPC नेट्रा के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति एवं प्रतिनिधि मंडल को NTPC की विकास यात्रा, म्यांमार में कंपनी की पूर्व गतिविधियों तथा वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने वाली अनुसंधान, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने नेट्रा की अत्याधुनिक इन हाउस पायलट सुविधाओं का भी अवलोकन किया, जिसमें बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन हब तथा कृषि एवं नगर ठोस अपशिष्ट गैसीकरण से विद्युत संयंत्र शामिल था। राष्ट्रपति ने NTPC की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की कंपनी लोहम के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। दौरे के दौरान मंत्री ने लिथियम आयन बैटरी के पुनर्चक्रण, महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी तथा ऊर्जा भंडारण समाधानों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों, उत्पाद क्षमता और भविष्य की विस्तार योजनाओं की जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकलिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचार आधारित कंपनियां भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। दौरे में मंत्रालय और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, बैटरी आपूर्ति, श्रृंखला तथा उभरती प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा हुई। गर्मी की छुट्टियों में जनपद गौतम बुद्ध नगर में बच्चों में शिक्षा के साथ खेल प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शतरंज प्रतियोगिता का

0: उद्घाटन कर युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। जिलाधिकारी ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि शतरंज मानसिक विकास, धैर्य, एकाग्रता एवं रणनीतिक सोच को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण खेल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
1: इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एफकॉम होल्डिंग लिमिटेड

0: हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी दिनों में अलग अलग स्थानों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
1: इस गर्मियों की छुट्टियों में विभिन्न हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट द्वारा अरेंज किए जा रहे हैं एंड सभी बच्चे आमंत्रित हैं। पूरे गौतम बुद्ध नगर के सभी बच्चों के लिए काफी सारे टूर्नामेंट्स हैं एंड पार्टिसिपेट करें एंड इसमें गर्मी का भी विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान रखा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एफ काम होल्डिंग लिमिटेड और एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी हुई। इस समझौते के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर कार्गो संचालन को विकसित और विस्तारित किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत में एयर कार्गो कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के तहत AF काम अपने मालवाहक विमानों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बेस करेगा और यहां से फ्रेटर सेवाओं का संचालन करेगा। इससे एयरपोर्ट को उत्तर भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक और कार्गो हब के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। समझौते के दायरे में तीनों संस्थाएं मिलकर संभावित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान करेंगी और कार्गो मांग एवं फ्लो के आधार पर मजबूत नेटवर्क प्लान तैयार करेंगी। साथ ही परिचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं के समन्वय के साथ संयुक्त मार्केटिंग रणनीति भी बनाएंगी, ताकि एयर कार्गो संचालन को दीर्घकालिक मजबूती और स्थिरता मिल सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुख्य परिचालन अधिकारी किरण जैन ने कहा कि यह साझेदारी एयरपोर्ट पर मजबूत एयर कार्गो इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि समर्पित फ्रेटर संचालन और उद्योग भागीदारों के सहयोग से क्षेत्र की कार्गो क्षमता को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्तर भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। गांधी चर्चा के तहत आप सुनेंगे वचन और विचार के संबंध में गांधी जी के विचार और उनका प्रिय भजन।

पाठशालाओं में हम पढ़ते हैं वाचन मिथ्या बिना विचार। यह उक्ति शब्दशः सत्य है। हमें किताबें पढ़ने का शौक हो तो अच्छा ही कहा जाएगा। आलस्यवश जो पढ़ता नहीं, बाँचता नहीं, वह अवश्य मूढ़ माना जाएगा। पर जो खाली पढ़ा ही करता है, पढ़े हुए पर विचार नहीं करता, वह भी लगभग मूढ़ जैसा ही रहता है। इस पढ़ाई के बदले में कितने ही लोग अपनी आंखें खो बैठते हैं, वह एक अलग बात है। निरावाचन एक प्रकार का रोग है। हम में से बहुतेरे निरी पढ़ाई करने वाले होते हैं। वे पढ़ते तो हैं पर गुणते नहीं, विचारते नहीं, उसमें छिपे गहन अर्थ को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। फलतः पढ़ी हुई चीज पर वे अमल क्यों करने लगे? इससे हमें चाहिए कि थोड़ा पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन उस पर विचार अवश्य करें, उस पर अमल अवश्य करें, या यूं समझें कि उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। अमल करते वक्त जो ठीक न जान पड़े उसे त्याग दें, और जो ठीक जान पड़े, अच्छा लगे, उसे ग्रहण करके आगे बढ़ें। ऐसा करने वाला थोड़ी पढ़ाई से भी अपना काम चला सकता है, बहुत सा समय बचा लेता है, और वह मौलिक जिम्मेदारी उठाने के योग्य बन जाता है। जो विचार करना सीख लेता है उसको एक लाभ और भी होता है।

जो उल्लेखनीय है। पढ़ने को हमेशा नहीं मिल सका, देखने में आता है कि जिसे पढ़ने की आदत पड़ गई हो उसे यदि पढ़ने को नहीं मिले तो वह परेशान सा हो उठता है, पर जिसे विचार करने की आदत पड़ जाए तो उसे कहीं कुछ लेने नहीं जाना पड़ता और विचार पोथी को पुस्तक की भांति उसे कहीं खोजने की भी आवश्यकता नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि विचार करने वाले व्यक्ति को परेशानी में नहीं पड़ना पड़ता। विचार करना सीखना, यह शब्द जानबूझकर प्रयोग किया गया है। सही गलत निठल्ले विचार तो बहुतेरे किया करते हैं, वह तो पागलपन है। कितने ही व्यक्ति विचारों के भंवर में पड़कर निराश हो जाते हैं और आत्मघात भी कर बैठते हैं। इस समय तो मेरा तात्पर्य पढ़े हुए पर विचार करने से है, उस पर गुनने से है, और आपने जो पढ़ा उस पर अमल करने और उसे व्यवहार में लाने से है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आज हमने एक भजन सुना या पढ़ा, उसका अपने मस्तिष्क में विचार करना, उसके अर्थ का मायने का मंथन करना, उसमें क्या रहस्य है, क्या भेद है, उससे मुझे क्या ग्रहण करना है, किस बात का त्याग करना है, इसकी छानबीन करना, इसे ढूंढना, उसमें दोष हो तो उन्हें देखना, उन्हें परखना, यदि उसका अर्थ समझ में नहीं आया हो तो उसे समझने का प्रयास करना, यही विचार पद्धति कही जाएगी। यह मैंने सादे से सादा दृष्टांत लिया है, इसमें से हर एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरा दृष्टांत घटित कर ले और आगे बढ़ता चले। ऐसा करने वाला व्यक्ति अंत में आनंद भोगेगा और जीवन में पूरी पढ़ाई का वाचन विचार के रूप में फलेगा। अब मिसाल के तौर पर एक पंक्ति को ले लेते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। हम देखेंगे कि यह पंक्ति तो एक है, लेकिन इसके अर्थ व्यापक और अनेक हैं। इसकी सार्थकता इस बात पर निर्भर करती है कि इस पंक्ति में से आप कौन सा उत्तम से उत्तम अर्थ ढूंढ पाते हैं और किस तरह अपने जीवन में उसे उतार पाते हैं। अरे मुसाफिर उठ, सवेरा हुआ, अब रात कहां है जो तू सोता है। इतना समझकर जो उठकर मात्र बैठ जाता है, उसने पढ़ा तो सही पर विचार नहीं किया, अमल नहीं किया, क्योंकि वह तो सवेरे के समय उठकर ही अपने आप को कृतार्थ मान लेता है। पर जो विचार करना जानता है वह तो अपने आप से पूछता है, मुसाफिर यानी कौन, सवेरा हुआ के माने क्या हुए, रात गई, सोना क्या है। यों यद सोचने बैठ जाएं तो रोज एक पंक्ति के अनेक अर्थ निकाल लें और समझें कि मुसाफिर यानी जीव मात्र। मन में इसका मंथन करें और इसके गहन अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न करें। जो अर्थ ठीक जान पड़े उसका जीवन में प्रयोग करें। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिसे ईश्वर पर आस्था है उसके लिए सदा ही सवेरा है, रात के मानी आराम भी हो सकते हैं, और जो जरा भी लापरवाह रहता है उस पर यह पंक्ति घटित होती है। और आइए अब सुनते हैं बापू का ये प्रिय भजन।

श्रोताओं, गांधी चर्चा के तहत अभी आप सुन रहे थे वचन और विचार के संबंध में गांधी जी के विचार और उनका प्रिय भजन। आइए अब आपको सुनवाते हैं राम भजन, जिसके बोल हैं राम रमैया गाए जा।

श्रोताओं, अब जगजीत सिंह के स्वर में सुनिए सुदर्शन फाकिर की शब्द रचना, हे राम हे राम।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनोरमा तिवारी के गाए कुछ भक्ति लोक गीत। संगत करता है हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नक्कारा पर ईश्वर सिंह खींची। तो सबसे पहले सुनिए ये लोक रचना जिसके बोल हैं, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं।

श्रोता मनोरमा तिवारी के स्वर में अभी आपने सुनी ये लोक रचना, जिसके बोल थे सौ खाऊं पर घर ना जाऊं। आइए अब सुनते हैं ये भक्ति लोक गीत, जिसके बोल हैं रामा भजो सिया रामा।

श्रोता, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मनोरमा तिवारी को। संगतकर्ता थे हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नक्कारा पर थे ईश्वर सिंह खींची। इन्हीं लोक रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में केदारनाथ फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर सरिता। सुर सरिता कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है धुरंधर द रिवेंज फिल्म से। स्वर और शब्द रचना जैस्मिन और सतेंद्र सरताज की है और संगीत निर्देशन है शाश्वत सचदेव का।

मोहित चौहान और तरन्नुम मल्लिक की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे कौसर मुनीर की शब्द रचना। संगीत सोहेल सेन का था और फिल्म का नाम था एक था टाइगर। अरमान मलिक की आवाज में आइए सुनते हैं MS धोनी फिल्म से गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत अरमान मलिक का है।

श्रोताओं, मीट ब्रोस अनजान की गाय लीला फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुरसरिता अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित सी आर व्यास से ख्याल गायन। तो सबसे पहले सुनिए राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं अब मोरी नैया पार करोगे। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं अब मोहे घर जाने दे। तो आइए सुनते हैं पंडित सी आर व्यास से ख्याल गायन राग गुर्जरी तोड़ी में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास से राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन। आइए अब सुनते हैं ठुमरी राग मिश्र कौशिया में, बोल हैं आए मोहनवा मोरे भवनवा। कलाकार एक बार फिर पंडित सी आर व्यास।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सीआर व्यास का ख्याल गायन राग गुर्जरी तोड़ी में। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध था, बोल थे कब मोरी नैया पार करोगे। इसके बाद आपने सुनी राग मिश्र कौशिया पर आधारित ठुमरी आए मोहनवा मोरे भवनवा।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। श्रोताओं, आज हम प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और अभिनेता मुकेश भट्ट जी की फिल्मों के गीत सुनेंगे। आपका जन्म 5 जून 1942 को हुआ। आप मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के छोटे भाई हैं। 1986 में स्थापित प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स के आप सह मालिक रहे और हिंदी बॉलीवुड को इन्होंने बहुत सी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इन्होंने जो फिल्में हिंदी सिनेमा को दी, उन फिल्मों की कहानी के साथ साथ उनका संगीत भी काफी पसंद किया गया। शुरुआती जीवन और करियर के अंतर्गत इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आपके पिता भी एक गुजराती फिल्म निर्माता थे। जी हाँ, नाना भाई भट्ट गुजराती फिल्में बनाया करते थे। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की और उसके बाद 1970 में अपने पिता की कंपनी में इन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में अपने करियर को शुरू किया। 1986 में अपने भाई महेश भट्ट के साथ इन्होंने विशेष फिल्म्स को स्थापित किया और कई उम्दा फिल्मों का निर्माण किया। इनकी फिल्मों में संगीत और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण दर्शकों को देखने को मिला, जिसकी वजह से इनकी फिल्मों को एक अलग पहचान मिली। अगर प्रमुख फिल्मों की बात करें तो आशिकी, सड़क, मर्डर, गैंगस्टर, राज, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में धूम मचा दी। आपका विवाह नीलिमा भट्ट से हुआ और उसके बाद बेटी साक्षी भट्ट और बेटा विशेष भट्ट आपके दो बच्चे हैं। अभिनेता के रूप में भी इन्होंने एक पहचान बनाई। कई फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया और ये फिल्में सफल भी रहीं। निर्माता होने के साथ साथ अपने अभिनय को भी इन्होंने समय दिया और समीक्षकों द्वारा इनके जिन फिल्मों को सराहा गया उसमें रही अवेयरनेस डे 2008, स्पेशल 26 2013 में आई और सोनू के टीटू की स्वीटी, ये फिल्म सन 2018 में इनकी आई और इस फिल्म में इनके अभिनय को काफी शानदार कहा गया।

मुकेश भट्ट जी की एक निर्माता के तौर पर सफल फिल्मों की बात करें तो इनकी पहली सफल फिल्म रही फिल्म जुर्म। यह फिल्म सन 1990 में आई। इसमें अभिनेता थे विनोद खन्ना जी और बाद में गुलशन कुमार जी के साथ मिलकर इन्होंने एक प्रेम कहानी बनाई जिसे फिल्म आशिकी का नाम दिया गया। यह फिल्म सन 1990 आई और इसमें कलाकार लिए गए अभिनेता राहुल रॉय और अनु अग्रवाल। ये दोनों कलाकार उस समय नए थे लेकिन इनके अभिनय को काफी पसंद किया गया और इस फिल्म का निर्देशन किया महेश भट्ट साहब ने। आशिकी के बाद की फिल्में जिनमें दिल है कि मानता नहीं और सड़क जिसमें पूजा भट्ट, आमिर खान और

अजय दत्त जी ने एक्टिंग की। ये सभी फिल्में हिट फिल्मों की श्रृंखला में रहीं और ये फिल्में प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स के बैनर तले ही दर्शकों के सामने आई। मुकेश भट्ट ने अगले कई वर्षों में बहुत सी फिल्में बनाई, जिसमें फिल्म सर 1993 में आई। इस फिल्म में अभिनय किया था नसीरुद्दीन शाह ने, नाजायज, क्रिमिनल, फरेब। साथ ही एक और बड़ी फिल्म आई जो काफी सफल रही बॉक्स ऑफिस पर, इस फिल्म का नाम था गुलाम। प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार के साथ फिल्म संघर्ष को इन्होंने बनाया, जो एक बहुत ही अलग कहानी को अपने अंदर लिए हुए थी और इस कहानी को दर्शकों ने पसंद किया। ये एक सफल प्रयास साबित हुआ। अगर हॉरर फिल्मों की बात करें तो राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज, राज 3, राज रिबोट, इन फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया। और फिल्म फुटपाथ के साथ इन्होंने बिपाशा बसु को लिया फिल्मों में। साथ ही जहर, कलयुग, वो लम्हे, जन्नत, तुम मिले, मर्डर, आशिकी और गैंगस्टर इनकी वो फिल्में रहीं जिनकी कहानी के साथ साथ इनके गीत संगीत को भी काफी पसंद किया गया।

श्रोताओ, कहा गया है कि जिंदगी में कभी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि इस रिस्क को लेने के लिए आप अपनी जान को जोखिम में डाल दें। हमारे कहने का मतलब ये है कि कई बार कुछ कार्यों को लेकर, खासतौर से अगर कला की बात की जाए, तो कला में कलाकार नवीन प्रयोग करते हैं और नएपन का कला के क्षेत्र में हमेशा स्वागत होता है, क्योंकि कला का अर्थ ही है रचना, सृजन करना, कुछ विशेष और नया लेकर आना। कला में जहां एक तरफ पुरानी परंपरा को जीवित रखा जाता है, वर्तमान में उसको संजो कर रखा जाता है, उसको लोग सीखते हैं, आगे फैलाते हैं, वहीं उसमें नएपन के लिए हमेशा एक गुंजाइश रहती है और रहेगी। मुकेश भट्ट जी ने कई ऐसी फिल्में बनाई जिनमें उन्होंने नएपन का समावेश किया। कहीं हॉरर और संगीत का कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत पसंद आया, तो कहीं फिल्म की एक कहानी थी जिसमें अभिनेता एक अपराधी के तौर पर जेल में बंद था और अभिनेत्री उसको छुड़ाने का प्रयास करती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो कि वास्तव में इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो दर्शकों को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर कि कहीं वो नापसंद कर दिया गया तो क्या होगा, ये ख्याल दिल में लाकर एक कलाकार अपने सृजन को या अपने नएपन को रोकता नहीं है, वो प्रयोग करता रहता है और ये प्रयोग अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसा ही मुकेश भट्ट जी के साथ भी हुआ। उन्होंने अपनी फिल्मों में कुछ अलग किया और उसको दर्शकों द्वारा पसंद भी किया गया।

मुकेश भट्टी जी को सन 2015 में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की तरफ से 8वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा में ग्लोबल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्माता के लिए आपको नामांकित किया गया सन 2005 में, और मर्डर फिल्म के लिए लोकप्रिय पुरस्कार आपको दिया गया वर्ष के सर्वश्रेष्ठ निर्माता के तौर पर। साथ ही आपको नामांकित किया गया फिल्म राज के लिए, गुलाम के लिए और दिल है कि मानता नहीं। इन फिल्मों के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। जमाने बीत जाते हैं मगर संगीत में एक ऐसी शक्ति है जो हमें बीते जमाने में ले जाता है। जी हाँ, जब भी हम कुछ सालों पहले का संगीत सुनते हैं तो हम उस समय में चले जाते हैं, उस समय के कलाकारों, उस समय की यादों से जुड़ जाते हैं। होता है ना सबके साथ ऐसा, शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आइए बढ़ते हैं आप अगले कार्यक्रम की तरफ और कार्यक्रम का नाम है कुछ बातें कुछ गीत। आज है दिन शुक्रवार, तारीख 5 जून सन 2026। श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस 2026। आज का मुख्य विषय है क्लाइमेट एक्शन और प्रकृति के साथ जीने पर गौर करना। जी हां, इस वर्ष के वैश्विक समारोह की मेजबानी अजरबैजान द्वारा की जा रही है और इसका प्रमुख कार्यक्रम बाकू में आयोजित किया गया। इसका मकसद रहा कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए। आइए गौर करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी और इसके बाद 5 जून सन 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। लगातार तापमान क्यों बढ़ रहा है, घटती जैव विविधता और जलवायु संकट से कैसे निपटा जाए, जो कि सतत विकास के लिए बहुत जरूरी है, प्रकृति आधारित समाधान कौन कौन से हैं और इन्हें किस तरह से जीवन में शामिल किया जा सकता है, ये सभी बिंदु इसमें शामिल हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों और प्रमुख संस्थानों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और पर्यावरण दिवस को लेकर जानकारी प्राप्त करना, जानकारी साझा करना और इसे बांटना बेहद जरूरी है। पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है श्रोताओं, क्योंकि हम इस पर्यावरण के बीच में रहते हैं, सांस लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने संगीत की बात की कि संगीत में एक ऐसी शक्ति है कि वो हमें बीते जमाने में ले जाता है। संगीत का आनंद या जीवन का आनंद या जीवन से जुड़ी हुई किसी भी नियामत का आनंद जो भी हमें कुदरत ने और ईश्वर ने प्रदान की है, वो हम तभी ले सकते हैं जब हम एक स्वस्थ वातावरण में हों, स्वस्थ पर्यावरण में हों। कुल मिलाकर चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। श्रोताओं, हम सभी एक दूसरे के साथ संपूर्ण हैं, एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे इस संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, घटनाएं, स्थान मौजूद हैं, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम ये सोचें कि बिना पर्यावरण पर ध्यान दिए, बिना पर्यावरण के स्वस्थ हुए हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, तो हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। छोटे छोटे प्रयास जीवन में अपनाएं, इन पर अमल करें, लोगों को इसकी शिक्षा दें और खास तौर से छोटे बच्चे, उनको शुरू से ही इस बारे में जानकारी दें, उन्हें सिखाएं कि हम कैसे अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, कैसे अपने आसपास सफाई कर सकते हैं, पेड़ों को लगाना और पेड़ों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। ये सभी ऐसी बातें हैं जो हम बच्चों को उनके शुरुआती दौर में अगर सिखाएंगे तो वो जीवन भर उनके साथ रहेंगे। तो इसी विषय पर और भी बातें होंगी गीत संगीत के साथ।

साथियों, हमारे पैरों के नीचे जमीन और सिर के ऊपर आसमान है, और यही वो है जिसके बीच में हम रहते हैं। धरती हमारे जीवन का आधार है और जीवन का आधार पर्यावरण भी है। हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी चाहिए। पानी जहां हमारी प्यास को तृप्त करता है, हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है और हमारे जीवन को सुचारू तौर पर चलाने के लिए आवश्यक है, वहीं हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा भी बेहद जरूरी तौर पर चाहिए। अब हमें आसपास हरे भरे जंगल और जैव विविधता के महत्व को भी समझना पड़ेगा। ये सभी हमारे यानी मानव के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है और मानव के अस्तित्व के लिए प्राणियों का अस्तित्व भी जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की, लेकिन हो क्या रहा है वर्तमान समय में वो शायद किसी से भी छुपा नहीं है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जंगलों की लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही है और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण को एक ऐसे संकट की ओर धकेल रहा है जिसे अगर गंभीर कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यही कारण है कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके, सचेत किया जा सके, सावधान किया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह विश्व स्तर पर शुरू होता हुआ हो चुका एक आंदोलन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धरती हमारी आवश्यकताओं को केवल पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी ये धरोहर है। हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि केवल हमें इस धरती पर जीना है, जबकि ऐसा नहीं है। धरती हर उस प्राणी और जीव के लिए है जो इस धरती पर जन्म लेता है। हमारे बाद भी बहुत सी पीढ़ियां इस संसार में आएंगी, जन्म लेंगी और उनको यहां पर जीना होगा, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस संसार को जीने लायक बनाएं, ताकि यहां पर सभी समान भाव के साथ समान शुद्ध और स्वस्थ माहौल में जी सके। वर्ष 2026 में इस दिन का केंद्र बिंदु जलवायु परिवर्तन और प्रकृति आधारित समाधान है। संसार में बढ़ते तापमान, मौसम का अनियमित होना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ये प्राकृतिक आपदाएं इस बात का इशारा दे रही हैं कि अब सचेत होने का समय आ गया है। जीवन की खूबसूरती का आनंद अगर लेना है साथियों, तो पर्यावरण के प्रति सचेत रहना होगा। शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से करें, फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारी दुनिया वास्तव में हर समस्या से रहित और जीने लायक होगी और हम होंगे चिंता मुक्त।

कुछ छोटे छोटे सुझावों पर गौर करते हैं जो कि हम अपने जीवन में इन्हें समाधान के तौर पर शामिल कर सकते हैं, और ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम पर्यावरण संरक्षण में क्या कर सकते हैं, वास्तव में वो हम ही हैं जो इसमें कुछ कर सकते हैं। एक आम नागरिक की भूमिका किसी भी समस्या का समाधान करने में बहुत अहम होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हर वर्ष कम से कम हम एक पेड़ लगा सकते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करना शुरू कर सकते हैं, पानी और बिजली की बचत अवश्य करें, इसे अपने जीवन में शामिल करें, सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग बढ़ाएं, कचरे को अलग अलग करके रीसाइकिलिंग को बढ़ावा दें और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों में भाग लें। ऐसा करके आपको पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नए नए तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको जीवन में पर्यावरण संरक्षण को शामिल करना है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दुहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है। मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोता, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के

0: शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है।
1: जी
0: यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है।
1: जी
0: यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवम्बर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास
3: ऐलान।
4: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने

0: एक एक हीरा दिया।
1: जी महाराज, बहुत कृपा।
2: महाराज की जय हो।
3: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
4: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
4: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
0: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
4: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
0: इसमें संदेह नहीं है महाराज, कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
4: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
6: हुआ? मुझे भी नकली हो सकता है
5: यार। क्या सबको नकली मिला? अब तुम भी नकली? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
7: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
7: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: धन्यवाद महाराज। महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
7: क्या? और कोई शंका?
0: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
7: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
8: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
4: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: कार्यक्रम नकली हीरे, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति

0: के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मीडियम वेव के मीटर्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने।

पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। आए हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक जरूरी कदम

राजस्त्री फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में आपने सुना ये गीत, जिसे लिखा था कुमार ने, संगीतबद्ध किया था जीत गांगुली ने।

मुझे कुछ कहना है इस फिल्म से सुनी शान और महालक्ष्मी की आवाज में। अब ये गीत शब्द रचना विशाल डाडलानी की, और विशाल डाडलानी के लिखे हुए इस गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

0: Okay, bye.
1: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
2: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और

0: The Prime Minister has said India's digital infrastructure journey is gathering remarkable momentum. In a social media post, Mr. Modi informed that AirTrunk has announced plans to invest around 3 lakh crore rupees in India and develop 5 gigawatt of data center capacity. Benchmark domestic equity indices slipped into negative territory during afternoon trade. Today, the Sensex lost 86 points to 74,274, while the Nifty dropped 43 points to 23,374 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आज आलमी योम माहौलियात है। जमीन पर सभी जानदार की जिंदगी की अहमियत बनाए रखने और उसके तहफ्फुज के लिए बेदारी बढ़ाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा माहौलियात प्रोग्राम के तहत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 से हुई थी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद पेश की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर आलमी यौम माहौलियात 2026 के मौके पर एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत आम का पेड़ लगाकर शजरकारी की। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरगीब से गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान रियासती हुकूमत ने माहौलियात और नेचर के तई अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कई खसूसी पेशकदमी की है। पहले ही साल 2017 में वन महोत्सव के मौके पर डबल इंजन हुकूमत ने 5 करोड़ शजरकारी के बड़े काम को अपने हाथों में लिया है। उन्होंने आवाम को आलमी यौम माहौलियात की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आला ने कहा
2: कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे, न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार के कोई अनुभव ही, लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की।
1: आज इस मौके पर चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर देहात, जौनपुर, मऊ, अमरोहा और दीगर इजला में शजरकारी की गई। दरियासना एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला ने लखनऊ के कुकरेल जंगल हलके में शजरकारी करके रियासत गीर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस साल रियासत में एक दिन में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निशाना रखा गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आलमी बैंक के तावन से 2,741 करोड़ रुपए की लागत वाली एयर शेड पर मबनी उत्तर प्रदेश साफ हवा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शजरकारी महाअभियान 2026 के तहत 35 करोड़ शजरकारी महाअभियान के लोगों का इजरा किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि माहौलियात के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिन्दुस्तान की कदीम रवायत में रचे बसे अंसर को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब कुदरत महफूज रहेगी तभी इंसानियत महफूज रह पाएगी। वजीर आला ने कहा
2: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए या भारत जैसे देश के लिए जिसके बारे में कहा जाता है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य, और उसमें अगर मौसम चक्र में अंतर आएगा तो सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा? किसान की आमदनी पे असर पड़ेगा, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ेगा, अनावृष्टि का सामना करना पड़ेगा, खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है, और पूरी दुनिया आज उन चीजों से चिंतित भी है और उनके लिए असमय घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है।
1: वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 3 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ समाजी तंजीम और अवामी राबता प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम और पार्टी अहदेदारों से मजाकिरात भी करेंगे। वजीर दिफा आज उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ बायोयुग ग्रीन कमांड प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर दिफा आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर कैंट वाके कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत शजरकारी भी करेंगे। बनारस में ब्रिक्स ममालिक के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज दूसरे दिन भी जारी है। मीटिंग में ब्रिक्स अराकीन ममालिक के नुमाइंदे सकाफती तआवुन की मुख्तलिफ अव्वलियत वाले शोबों पर गौरखोज कर रही है। मीटिंग के दौरान क्रिएटिव मईशत, सकाफती विरासत के तहफ्फुज, तहजीब पर मबनी, हमी जहत तरक्की और आवाम से राबते को मजबूत बनाने जैसे मौजों पर बहस हो रही है। वाज़ेह है कि सेशन का इफ्तिताह कल किया गया था जिसकी सदारत हिंदुस्तान हुकूमत के सकाफत सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने की थी। 2 रोजा इस मीटिंग का इख्तिताम आज होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने इम्तिहानी अमल को मजीद महफूज और शफाफ बनाने के लिए चेहरे की तस्दीक का निजाम मुतारिफ कराया है। कमीशन ने हाल ही में मुनक़िद होने वाले इब्तदाई सिविल सर्विसेज इम्तिहान

0: और उस साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इम्तिहान में कामयाबी के साथ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यह सिस्टम इस बात को यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त फॉर्म भरते वक्त जिस उम्मीदवार की तस्वीर अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार है जो दाखिला कार्ड के साथ इम्तिहानी मरकज में मौजूद है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने अगस्त सितंबर के सेशन के लिए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत के लिए खवातीन से दरख्वास्तें तलब की है। इसमें तुलबा, मुहक्किकीन, समाजी कारकुनान और किसी यूनिवर्सिटी या दीगर तालीमी या गैर तालीमी इदारे से वाबस्ता असातज़ा शामिल हैं। और महकमे मौसमियात ने लखनऊ समेत कई जिलों में आइंदा कुछ घंटे में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंस मरकज के मुताबिक दारुल हुकूमत लखनऊ समेत रियासत के कई हिस्सों में मुतवस्सत से लेकर हल्के आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: रीजन वेव के मीटर्स पर और न्यूज ऑन EIR ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

कार बहनों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार लेकर आपसे मिलने और ढेर सारी बातें करने आप पहुंची हूं मैं आपकी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पाराशर। वृक्ष कबहु ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियां कभी अपना पानी खुद नहीं पीती। ठीक उसी प्रकार प्रकृति की भांति सज्जन पुरुष भी दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन जीते हैं, यानी कि हमारी प्रकृति में मौजूद हर एक चीज हमें जीवनोपयोगी संदेश देती है। फिर चाहे हम उस संदेश में छिपी गहराई को समझें या ना समझें, बहनों प्रकृति प्रदत्त अनमोल संसाधनों से हमारी धरती का निर्माण हुआ है। धरती पर जीवन को संभव बनाने वाली प्रत्येक वस्तु जैविक तथा अजैविक घटकों के रूप में प्रकृति की ही तो देन है। ये जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर हमारे पर्यावरण के निर्माता कहे जाते हैं। बहनों पर्यावरण और हमारी सोच का गहरा संबंध है। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ बाहरी नियमों से नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता और दृष्टिकोण में बदलाव लाने से संभव है। ये सच है बहनों कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, आसपास वैसा ही वातावरण भी निर्मित हो जाता है। जैसे एक पुरानी सोच है कि प्राकृतिक संसाधनों का असीमित भंडार है, जबकि वर्तमान आवश्यकता तो कहती है कि हमें प्रकृति का इस्तेमाल उसकी क्षमता और संतुलन को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अक्सर हम पर्यावरण की समस्याओं के लिए केवल सरकार या उद्योगों को दोषी मानते हैं, जबकि बहनों हम अपने घरेलू स्तर से ही ऊर्जा की बचत, कम कचरा पैदा करने और पौधारोपण जैसे छोटे छोटे कदम उठाकर पर्यावरण को बचाने में सहयोग कर सकते हैं। बहनों हमें पर्यावरण विरासत में मिली वो अमानत है जो हमारी भावी पीढ़ियों को हमें सौंपनी है। पर्यावरण और हमारी सोच एक दूसरे के पूरक हैं। अपनी दैनिक जीवन शैली में हमारी सकारात्मक और जिम्मेदार सोच ही हमें स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जा सकती है।

0: पर्यावरण संरक्षण को लेकर मन में बहुत से सवाल उठते हैं। इनमें से कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए हमने की बातचीत एक पर्यावरण चिंतक डॉक्टर मनीषा से अपने कार्यक्रम सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम के माध्यम से।
1: मनीषा जी, आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: आज पर्यावरण दिवस है, तो एक पर्यावरणविद होने के नाते आपके अनुसार महिलाएं अपनी दैनिक जीवनचर्या का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान किस प्रकार दे सकती हैं?
2: पर्यावरण जो कि आज एक बहुत ही वैश्विक और ज्वलंत मुद्दा है और इसे लेकर न केवल एक देश अपितु संपूर्ण विश्व चिंतित है और बुद्धिजीवी पृथ्वी के इस भविष्य को लेकर विचारवान हैं कि वह अपनी संततियों को किस प्रकार का जीवन देंगे। क्यों ना महिला होने के नाते इसकी शुरुआत घर से ही कर ली जाए, जैसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जाने अनजाने मूल्यों और सकारात्मक आदतों से जुड़ जाती है। महिलाएं घर को साफ रखती ही हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो यदि वे नौकरी पेशा हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में भी इसे स्वीकार कर लें, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें और छोटे छोटे स्लोगन के जरिए अन्य लोगों को भी न केवल एक संदेश दें अपितु उन्हें पर्यावरण स्वच्छता के लिए प्रेरित भी करें।
1: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक गृहिणी किस तरह से अपने बच्चों और अपने परिवार को शामिल कर सकती है?
3: माँ अपने बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। वह प्रथम शिक्षिका होने के नाते

मूल्यों और भारतीय संस्कृति को बड़े ही सहज रूप में अपने पालियों को हस्तांतरित कर सकती है और छोटी छोटी आदतों से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण का विकास कर सकती है। जैसे रोजमर्रा के जीवन में अपने घरों में छोटे छोटे पौधे लगाकर बच्चों को उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है एवं घर में अपने वस्तुओं को यथा स्थान रखना, जहां आप रह रहे हैं वहां आसपास बच्चों को सिखाना कि पार्क इत्यादि स्थल पर कूड़ा ना फेंकें, किसी पेड़ पौधे को नुकसान ना पहुंचाएं, सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, सड़कें जैसी जगहों पर कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। गृहिणी होने के नाते परिवार के सभी सदस्यों में यह जागरूकता पैदा करें कि

0: में यह जागरूकता पैदा करें कि दैनिक जीवन में जल का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करें, जल व्यर्थ ना बहाएं। विद्युत उपकरणों को जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें, जैसी छोटी छोटी आदतों का विकास करके अपने बालकों में सहजता से ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सकता है।
1: हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य और मूल तत्व पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण में किस प्रकार सहयोगी हैं?
0: भारतीय संस्कृति में वनस्पति तथा जीवों को समुचित स्थान दिया गया है। अपने देश में प्राचीन काल से ही पशु पूजा, वृक्ष पूजा तथा पर्यावरण पूजा के अनेक उदाहरण धर्मशास्त्रों, संस्कारों, पूजा स्थलों, शिलालेखों, प्राचीन चिन्हों और गुफाओं आदि में मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में आम, पीपल, केला, दूब, घास, अशोक, तुलसी आदि की पूजा के भी असंख्य उदाहरण मौजूद हैं। हमारे ऋषिगण पृथ्वी पर वनों को जीवनदायी मानते थे। आज के वैज्ञानिक युग में भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। भारत में वनों और वन्य प्राणियों की पूजा की परंपरा अनादि काल से ही चली आ रही है, इसलिए ये आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक और उत्तम है।
1: कार्यक्रम के अंत में आप हमारी श्रोता बहनों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: संदेश के रूप में अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, यावत् भूमंडलम धते सशैलवन काननम तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रकी। अर्थात जब तक पृथ्वी वनों और पहाड़ों से युक्त जंगलों में से समृद्ध रहेगी, तब तक यह मानव की संतानों का पालन पोषण करती रहेगी। धन्यवाद।

0: बहनों, कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी हाँ, एक कवि का भाव विभोर मन विचारों के सागर में जब डुबकी लगाता है तो अनगिनत शब्द रूपी रत्न लेकर बाहर निकलता है। तो आइए बहनों, बिना देर किए सुनवाते हैं आपको प्रभा गुप्ता का ये काव्य पाठ।
1: कविता का शीर्षक है, सागर के पन्नों पर लहरों ने पाती लिखी है।

से करती है छुप छुप के बातें, लहरों से करती है छुप छुप के बातें, रेतीले तट पर हवा

0: बहनों, अभी आपने सुना कवयित्री प्रभा गुप्ता का काव्य पाठ, और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: बहनों, आज पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर कार्यक्रम के सेगमेंट मेरी पहचान में हम करेंगे बात सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, जो एक महान पर्यावरणविद, गांधीवादी विचारक और चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। बहनों, सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को टेहरी गढ़वाल के गंगा किनारे एक गांव मरोदा में हुआ था। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी श्रीदेव सुमन से हुई। सुमन जी का अनुसरण करते हुए पुलिसिया कार्रवाई का सामना भी उन्हें करना पड़ा। टिहरी साम्राज्य में जब स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था, तब स्वतंत्रता संघर्षों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी ईमानदारी और समर्पण भाव के कारण सुंदरलाल उस समय गढ़वाल के सामाजिक राजनीतिक दुनिया के उभरते हुए सितारे थे। विमला नौटियाल से विवाह करने की ये शर्त भी उन्होंने रखी कि उन्हें विवाह के बाद राजनीति की चमक दमक छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा करनी होगी। दोनों पति पत्नी ने विवाह के पश्चात घनसाली के पास स्थित सेलारा गांव में एक आश्रम बसाया, जो सामाजिक गतिविधियों का प्रशिक्षण केंद्र बना। बहनों, प्रकृति से प्रेम करने वालों ने भी पर्यावरण की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात है सन 1973 की, जब उत्तराखंड के चमोली जिले में ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ। तब सुंदरलाल बहुगुणा और उनके साथ वहां के ग्रामीण और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जब लकड़हारे पेड़ों को काटने आते तो स्थानीय पुरुष और विशेषकर महिलाएं पेड़ों को गले लगाकर उनसे चिपक कर खड़ी हो जाती थी। विरोध करने के इस खास अंदाज के कारण ही इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। बहनों, सन 1980 में तत्कालीन भारत सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर 15 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह का प्रसार किया। सन 1981 से 1983 के दौरान 5000 किलोमीटर की लंबी ट्रांस हिमालयी पद यात्रा कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। पर्यावरण ही स्थायी अर्थव्यवस्था है का नारा देते हुए पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन का संदेश भी उन्होंने दिया। बहनों, सुंदरलाल बहुगुणा ने टेहरी बांध के निर्माण का भी कड़ा विरोध

किया था, हमेशा जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए खत्म हो चुके वनों और बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय समुदायों को संगठित भी किया। प्रकृति और समाज हेतु अभूतपूर्व योगदान देने के लिए सन 2009 में पद्म विभूषण, सन 1987 में राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड, जमनालाल बजाज पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया गया। 94 वर्ष की आयु में 21 मई सन 2021 को ऋषिकेश में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार।

बहनों, आज फैशन ब्यूटी में हम बात करने वाले हैं बेहद पॉपुलर कंफर्टेबल स्टाइलिश ड्रेस काफ्तान की। जी हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता हुआ तुर्की में खूब पहना जाने वाला काफ्तान रूस और अरब देशों के अलावा भारत और दुनिया के कई देशों का लोकप्रिय आउटफिट बन चुका है। कफ्तान शब्द पुराने तुर्की शब्द कैप्टॉन से लिया गया माना जा सकता है, जिसका अर्थ है थैला जैसा वस्त्र। बहनों, कफ्तान का लुक होता भी तो कुछ ऐसा ही है। शरीर को झुलसा देने वाली इस गर्मी में काफ्तान एक ऐसा खूबसूरत विकल्प है जिसे ऑफिस, पार्टीज, आउटिंग कहीं भी पहना जा सकता है, बशर्ते इसे स्टाइल करने के कुछ बेसिक टिप्स हमें मालूम हो। जैसे बहनों, अगर आप पिकनिक या डे आउटिंग पर कहीं जा रही हैं तो कॉटन या शिफॉन फैब्रिक के काफ्तान बेस्ट रहते हैं। वहीं अगर आप किसी इवनिंग पार्टी में काफ्तान पहनना चाहती हैं तो जॉर्जेट, रेयॉन, सैटिन या सिल्क फैब्रिक अपना सकती हैं। बहनों, काफ्तान स्टाइलिंग में इसकी लेंथ का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर ऑफिस में काफ्तान पहनना है तो मीडियम लेंथ का प्रिंटेड काफ्तान अच्छा ऑप्शन है, जिसे लेगिंग्स के साथ पेयर किया जा सकता है। बात जब

कैजुअल आउटिंग की हो तब शॉर्ट लेंथ काफ्तान को स्किन फिट जीन्स के साथ पहनिए। वेडिंग आउटफिट के तौर पर फ्लोर लेंथ वाला काफ्तान ही बेस्ट चॉइस रहेगा। बहनों, काफ्तान अगर हैवी वर्क वाला हो तो इसके साथ एक्सेसरीज और ज्वेलरी सिंपल और लाइट ही रखिए, और अगर काफ्तान सादा है तो बोल्ड या स्टेटमेंट ज्वेलरी से उसे और खास बनाया जा सकता है। बहनों, काफ्तान ड्रेस से खुद की स्टाइलिंग करना बेहद आरामदायक और आसान है। बहनों, सजना संवरना फैशन ट्रेंड्स के साथ चलते हुए खुद की ग्रूमिंग का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और आइए अब एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, गर्मियों में जब कुछ भी हैवी खाने का मन ना करे तो आप दही चावल की रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। जी हाँ बहनों, दक्षिण भारतीय दही चावल जिसे थायर सादम भी कहते हैं, पेट को ठंडक देने के साथ ये स्वादिष्ट भी होता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पके हुए चावल, 1.5 से 2 कप ताज़ा दही जो कि खट्टा ना हो, 1/4 कप दूध चावल को ज़्यादा खट्टा होने से बचाने के लिए, और नमक स्वाद अनुसार। बहनों, तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच तेल या घी, आधा छोटी चम्मच राई के दाने, आधा छोटी चम्मच उड़द दाल, 8 से 10 करी पत्ते, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और हींग 1 चुटकी। सबसे पहले बहनों, पके हुए चावल को एक बड़े कटोरे में निकालें और कांटे या चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। चावल को ठंडा होने दें, फिर इसमें ताज़ा दही, दूध और नमक डालें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि एक मलाईदार मिश्रण बन जाए। और अब लगाना है इसमें तड़का। तो तड़के के लिए पैन में तेल या घी गरम करें, राई और उड़द डालें। जब ये चटकने लगे तो हींग, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता डालें और कुछ सेकंड तक भूनें। तड़के को दही चावल के मिश्रण के ऊपर डालें और

एंजॉय करें दही चावल की ये डिश। और इसी के साथ कार्यक्रम घर संसार की सभी श्रोता बहनों को रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर का नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर संसार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे प्रेरणा केशव तलेगांवकर की आवाज में गजल। गजल से पहले सुनिए ये गीत, जिसके बोल हैं धीरे धीरे आ क्षितिज से।

धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। ये गीत आपने सुना प्रेरणा केशव तलेगांवकर के स्वर में। अगली रचना सुनिए आप ही के स्वर में। भक्ति में रचना के बोल है, हरि देखे बिनु कल न परे।

पेरिया केशव तलेगांवकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत और इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्यीय जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन SOCHM ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। SOCHM के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की

0: की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
3: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एंड माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
4: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरणीय संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है।

0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
1: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख

0: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को भी स्टॉल लगा रहे हैं, लोकल फॉर भोपाली है, दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामेगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें सुनिए पंडित अजय पोहनकर का गायन राग सिंध भैरवी में और उसके बाद मिश्र पहाड़ी में।

पॉप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का गायन राग मिश्र पहाड़ी में। आप सुनिए भोले बिसरे गीत लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज में, फिल्म यहूदी का ये गीत।

फिल्म से सुनिए शकील बदायूनी का लिखा हुआ गीत। नौशाद के संगीत के साथ आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की।

0: रेडियो वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम अंजुमन में सबसे पहले सुनिए मकाला कुदरत का बचाव। मकाला निगार है अताउल्ला।
1: ऑल इंडिया रेडियो आगरा के तमाम सामईन को अताउल्ला अजहर हुसैन का सलाम। मकाला पेश खिदमत है बउनवान कुदरत का बचाव हमारे वजूद के लिए ज़रूरी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कुदरत उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जो कि अपने अंदर बहुत सारे मानी व मफहूम को समोए हुए है। कुछ लोग कुदरत को ईश्वर और भगवान से जोड़ कर देखते हैं, इसलिए वो कुदरत की पूजा पाठ भी करते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि कुदरत अपने अंदर वो तमाम बातें और तमाम चीज़ें समेटे हुए है जो कि दुनिया पर बसने वाली तमाम मखलूक के लिए ज़रूरी हैं। कुदरत का बचाव हम सब के लिए फ़र्ज है, तभी बेहतर ढंग से इस दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजार सकते हैं। कुदरत के बचाव के लिए हम किन किन पहलुओं को सामने रखें।

आइए इस पर हम एक नज़र डालते हैं। हमारे वजूद के लिए कुदरत में सबसे अहम चीज़ है हवा। अगर इंसानों के लिए सबसे अहम चीज़ है हवा, इंसानों के लिए हवा की सप्लाई बंद हो जाए तो इंसान एक पल के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकता। हवा में भी साफ हवा हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है। हवा की आलूदगी आज दुनिया के अंदर कुदरत के लिए सबसे बड़े चैलेंजों में से एक है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बढ़ती हुई आलूदगी के मसले से निपटने की खातिर सरकार मुख्तलिफ किस्म के इकदाम कर रही है, तो वहीं हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार का साथ देकर कुदरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और अपनी हवा को साफ शफाफ बनाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बनाएं। साफ हवा में सांस लेने के लिए खुले में शौच से परहेज़ करें और कूड़ा करकट इधर उधर फैलाने से भी गुरेज करें। ये सब गंदे अफ़ाल अंजाम देने से हवा प्रदूषित होती है और इंसानों जानवरों के लिए मुजिर साबित भी होती है। कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरी अहम चीज़ होती है पानी। पानी कुदरत का वो हसीन तोहफा है जो न सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस है बल्कि नबातात, जमादात और हैवानात की बका के लिए भी पानी एक लाजमी और ज़रूरी चीज़ है। पानी के बगैर दुनिया की खूबसूरती और रंगीनी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है और ना ही इंसानी वजूद का। लेकिन आजकल हम पानी का गलत और नाजायज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से पानी की किल्लत के खतरात मंडला रहे हैं। कुदरत के ताल्लुक से जो जानकार लोग हैं वो लोग तस्लीम करते हैं कि पानी के मामलात पर ही तीसरी आलमी जंग बर्पा हो सकती है। इसके अलावा ज़मीन से पानी की सतह दूर होने से मुतअद्दिद खतरात और खदशात भी पैदा हो रहे हैं। अलगर्ज़ साफ पानी की कमी इंसानी समाज व गैर इंसानी समाज के लिए तशवीशनाक बनती जा रही है। इसी वजह से 22 मार्च 1993 से आलमी योम आब भी मनाया जाता है जिसमें कि पानी के फवायद, उसकी किल्लत, मीठे पानी के हुसूल और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर गौर व फिक्र किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक ज़मीन का 70.9 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। अरस्तु ने इस कायनात को आग, हवा, मिट्टी और पानी का मजमूआ भी करार दिया है। इन सब बातों से मालूम होता है कि कायनात की तश्कील में पानी का एक बहुत ही अहम योगदान है। इसलिए हमको पानी की हिफाजत करनी चाहिए और पानी के नाजायज इस्तेमाल से हमको बचना भी चाहिए। घरों में, स्कूलों में पानी जमा करने के जो भी तरीके हमारी समझ में आ सकें उनका इस्तेमाल करके हम पानी को जमा कर सकते हैं और कुदरत को बखूबी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकते हैं। कुदरत के बचाव के लिए एक बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है, वो है दरख्त। रूए ज़मीन पर जा बजा फैले दुनिया भर में बसने वाली तमाम मखलूक के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है दरख्त। दरख्त ना सिर्फ हमको साया फराहम करते हैं बल्कि ये माहौलियाती आलूदगी को कम करने में भी मुआविन साबित होते हैं। दरख्त सैलाब की तबाहकारियों से बचाओ और ज़मीन के कटाव को रोकने का एक बहुत ही अहम जरिया है। माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क की कुल रकबे का 25% हिस्सा पर जंगलात का होना ज़रूरी है। नेचर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 5 अरब पेड़ हर साल लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सर्वे के मुताबिक हम हिंदुस्तानी हर साल 10 अरब दरख्तों का नुकसान भी उठा रहे हैं। भले ही हुकूमतें माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए नए नए मंसूबे लाती हैं, मगर अक्सर देखने में ये आता है कि हुकूमत के ज़रिया करोड़ों दरख्त लगाने के बावजूद भी हम उन दरख्तों की हिफाजत से कासिर रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, शजरकारी यानी कि पेड़ लगाना एक अहसन और काबिल सताइश कदम है। हमको बढ़ चढ़कर शजरकारी में हिस्सा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने वजूद को बचाने के लिए कुदरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। लेकिन शजरकारी के मुकम्मल फ़वाइद उसी वक्त हासिल किए जा सकते हैं जबकि हमारे ज़रिया लगाए गए तमाम पौधे सेहतमंदाना अंदाज में परवान चढ़ें। बल्कि यूं कहे कि पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है बल्कि पौधे लगाकर उनको तनावर दरख्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भारत के तकरीबन 300 मिलियन अफराद अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जंगलात पर ही मुनहसर हैं, लेकिन बदकस्मती से अपने यहाँ अक्सर जंगलात खस्ता हालत में हैं जिसकी वजह से इंसानों के लिए ज़रूरी अशिया की फराहमी में कमी वाक़े हो रही है और माशी तरक्की पर इसके मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। अगर हम कुदरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सोच रहे हैं तो हमें जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराना होगा और जंगलात के अंदर पेड़ों को काटने से इज्तनाब भी करना होगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जहाँ कुदरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारी बातें ज़रूरी हैं,

0: वहीं कुदरत के बचाव के लिए परिंदे और जानवरों की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। आजकल हमने अपने आप को मॉडर्न कहलाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम जानवरों और परिंदों से कोसों दूर होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में खालिस दूध की कमी ख़ास तौर पर नज़र आती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की सही तौर पर परवरिश व पर्दाख्त नहीं हो पा रही है। घरों के अंदर हम जानवरों को रखने से कतरा रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने ये नज़र आ रहा है कि हम अपने घरों में बरकत का फुकदान देख रहे हैं। घरों के अंदर अगर हमारे पास जगह हो तो हम परिंदों और जानवरों के लिए एक जगह खास करके उनकी देखभाल कर सकते हैं। हमारा ये कदम कुदरत के तहफ्फुज़ के लिए एक बेहतरीन कदम साबित होगा और हम अपने वजूद को भी बचा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे मकाला कुदरत का बचाव। मकाला निगार थे अताउल्लाह अजहर हुसैन। कलामी शायर में अब सुने मोहम्मद वसी बेग को।
2: दोस्तों, पेश खिदमत है मेरी गज़ल के दो तीन अशार। कहा है कि राह में पुरखों की अजमत का निशान मिलता नहीं, राह में पुरखों की अजमत का निशान मिलता नहीं, अब जो प्यासा हो मुसाफिर तो कुआं मिलता नहीं। राह में पुरखों की अजमत का निशान मिलता नहीं, अब जो प्यासा हो मुसाफिर तो कुआं मिलता नहीं। काट लो हंस बोल कर तुम छाओ में उम्मीद की, काट लो हंस बोल कर तुम छाओ में उम्मीद की, हर किसी को जीस्त में आराम जहां मिलता नहीं, हर किसी को जीस्त में आराम जहां मिलता नहीं। शेर देखिएगा बतौर खास के, जुस्तुजू उसकी कहां लाई यहां तो दूर तक, जुस्तुजू उसकी कहां लाई यहां तो दूर तक, एक भी राही के कदमों का निशान मिलता नहीं, एक भी राही के कदमों का निशान मिलता नहीं। और अपने दिल की नाजुक बात जिससे कह सकूं, अपने दिल की नाजुक बात जिससे कह सकूं, मुझको तो अब कोई ऐसा राजदा मिलता नहीं, मुझको तो अब कोई ऐसा राजदा मिलता नहीं। और शेर देखिए कि गांव जैसी रोटियां पकती नहीं है शहर में, गांव जैसी रोटियां पकती नहीं है शहर में, जिस जगह भी जाऊं चूल्हे का धुआं मिलता नहीं, जिस जगह भी जाऊं चूल्हे का धुआं मिलता नहीं। मख्ता पेश कर रहा हूं, कहा है कि तेरगी है अपनी परछाई न ढूंढो ऐ बिलाल, तेरगी है अपनी परछाई न ढूंढो ऐ बिलाल, ऐसे में साए सरे आबे रवा मिलता नहीं, ऐसे में साए सरे आबे रवा मिलता नहीं। और इसके गजल के दो तीन शेर समाप्त कीजिए। कहा है कि लहराई उसकी जुल्फ जो नाजो अदा के साथ, लहराई उसकी जुल्फ जो नाजो अदा के साथ, करने लगी है रक्स घटाएं सभा के साथ, करने लगी है रक्स घटाएं सभा के साथ। और आई है आज छू के यकीनन तेरा बदन, आई है आज छू के यकीनन तेरा बदन, खुशबू फजा में बिखरी हुई है सभा के साथ, खुशबू फजा में बिखरी हुई है सभा के साथ। और मंजिल जरूर पाऊंगा मुझको यकीन है, मंजिल जरूर पाऊंगा मुझको यकीन है, तय कर रहा हूं राह दिली कामना के साथ, तय कर रहा हूं राह दिली कामना के साथ। और इसे देखेंगे, वो कौन था जो राह से भटका गया हमें, वो कौन था जो राह से भटका गया हमें, हम तो समझ रहे थे कि हैं रहनुमा के साथ, हम तो समझ रहे थे कि हैं रहनुमा के साथ। और इसे देखें, कहे जीनत किसी के दस्ते हिनाई की यूं बढ़ी, जीनत किसी के दस्ते हिनाई की यूं बढ़ी, है आरजू का खून भी शामिल हिना के साथ, है आरजू

जू का खून भी शामिल हिना के साथ। तो शेर देखेंगे, नस्लें भुला सकीन जिसे वो दिया सबक, नस्लें भुला सकीन जिसे वो दिया सबक, टकराया जब भी कोई हमारी अना के साथ, टकराया जब भी कोई हमारी अना के साथ, नस्लें भुला सकीन जिसे वो दिया सबक, टकराया जब भी कोई हमारी अना के साथ, और चूमे हैं कामयाबी ने मेरे कदम बिलाल, चूमे हैं कामयाबी ने मेरे कदम बिलाल, जब भी सफर पे निकला हूँ माँ की दुआ के साथ, जब भी सफर पे निकला हूँ माँ की दुआ के साथ, जब भी सफर पे निकला हूँ माँ की दुआ के साथ। और एक गजल के दो तीन शेर और समाप्त कीजिए। कहा है कि उसका यही है कारे हुनर जानते हैं हम, उसका यही है कारे हुनर जानते हैं हम, एक दिन वो फेर लेगा नजर जानते हैं हम, एक दिन वो फेर लेगा नजर जानते हैं हम, उसका यही है कारे हुनर जानते हैं हम, एक दिन वो फेर लेगा नजर जानते हैं हम। और यारब हमारा अज़्म सलामत रहे सदा, यारब हमारा अज़्म सलामत रहे सदा, मुश्किल बहुत है अपना सफर जानते हैं हम, मुश्किल बहुत है अपना सफर जानते हैं हम, यारब हमारा अज़्म सलामत रहे सदा, मुश्किल बहुत है अपना सफर जानते हैं हम। और सब हादसे की सुन के खबर देखने को आए, सब हादसे की सुन के खबर देखने को आए, तुमको किसी ने दी ना खबर जानते हैं हम, तुमको किसी ने दी ना खबर जानते हैं हम। और ये और बात कि तूने जबान से नहीं कही, दोस्तों शेर देखिएगा, ये और बात तूने जबान से नहीं कही, तेरी हर एक बात मगर जानते हैं हम, तेरी हर एक बात मगर जानते हैं हम, जो आशियां बनाया है हमने बज़ौक़ ओ शौक़, जो आशियां बनाया है हमने बज़ौक़ ओ शौक़, फूकेंगे इसको बर्क़ ओ शरर जानते हैं हम, फूकेंगे इसको बर्क़ ओ शरर जानते हैं हम। और बातिल का कौन हक का तरफदार कौन है, बतौर खास ये देखें कि बातिल का कौन हक का तरफदार कौन है, किसका सजेगा नेजे पे सर जानते हैं हम, किसका सजेगा नेजे पे सर जानते हैं हम। मक्ता पेश करता हूं, कहा है कि हमको जरा भी खौफे तलातुम नहीं बिलाल, हमको जरा भी खौफे तलातुम नहीं बिलाल, माँ बाप की दुआ का असर जानते हैं हम, माँ बाप की दुआ का असर जानते हैं हम। एक गजल के दो तीन शेर और समाप्त कीजिए। कहा है कि सिर्फ दो पल लगे गंवाने में, सिर्फ दो पल लगे गंवाने में, उम्र गुजरी थी जिसको पाने में, उम्र गुजरी थी जिसको पाने में, सिर्फ दो पल लगे गंवाने में, उम्र गुजरी थी जिसको पाने में, और बारहा पांव हो गए जख्मी, बारहा पांव हो गए जख्मी, एक अलग रास्ता बनाने में, एक अलग रास्ता बनाने में। और है अजब उसका मशगला यारो, है अजब उसका मशगला यारो, लुत्फ आता है दिल दुखाने में, लुत्फ आता है दिल दुखाने में। और शेर देखिएगा बतौर खास, कहा है कि दोस्त दोस्त मेरा ही बन गया दुश्मन, दोस्त दोस्त मेरा ही बन गया दुश्मन, क्या मिला आईना दिखाने में, क्या मिला आईना दिखाने में। और बुझ भी सकता है जिंदगी का चराग, बुझ भी सकता है जिंदगी का चराग, अब तगाफुल किया जो आने में, अब तगाफुल किया जो आने

और जिंदगी अब बदल नहीं सकती, जिंदगी अब बदल नहीं सकती, देर की रास्ते पे आने में, देर की रास्ते पे आने में। और शेर मकता पेश करता हूं, कहा है कि कह दिया सुन के ए बिलाल उसने, कह दिया सुन के ए बिलाल उसने, कह दिया सुन के ए बिलाल उसने, है बहुत कर्ब इस फसाने में, है बहुत कर्ब इस फसाने में। दोस्तों ये दो तीन शेर और समाप्त कीजिए। कहा है कि तेरा चराग जलाने का ढब निराला है, तेरा चराग जलाने का ढब निराला है, कि मेरे घर के सिवा हर तरफ उजाला है, कि मेरे घर के सिवा हर तरफ उजाला है, तेरा चराग जलाने का ढब निराला है, कि मेरे घर के सिवा हर तरफ उजाला है, और हवा के झोंकों ने कश्ती को जब उछाला है, हवा के झोंकों ने कश्ती को जब उछाला है, न पूछ किस तरह हमने इसे संभाला है, न पूछ किस तरह हमने इसे संभाला है। और उसी से जान लो रहता नहीं यहाँ कोई, उसी से जान लो रहता नहीं यहाँ कोई, जमीन पे काई जमी है दरों पे जाला है, जमीन पे काई जमी है दरों पे जाला है, और खिजा की रुत अभी आई नहीं तो फिर किसने, खिजा की रुत अभी आई नहीं तो फिर किसने, भरी बहार में गुलशन को फूंक डाला है, भरी बहार में गुलशन को फूंक डाला है, और था बेकसूर जिसे कत्ल कर दिया तुमने, था बेकसूर जिसे कत्ल कर दिया तुमने, ये शख्स तो मेरा बरसों का देखा भाला है, ये शख्स तो मेरा बरसों का देखा भाला है, और उसी से होंगे मुकम्मल वफा के अफसाने, उसी से होंगे मुकम्मल वफा के अफसाने, उसी से होंगे मुकम्मल वफा के अफसाने, हमारी आंखों से जो खून टपकने वाला है, हमारी आंखों से जो खून टपकने वाला है। और मक्ता पेश करता हूं, कहा है कि बिलाल तुम ही कहो किसका एतबार करें, बिलाल तुम ही कहो किसका एतबार करें, हर एक शख्स ही जब रंज देने वाला है, हर एक शख्स ही जब रंज देने वाला है, हर एक शख्स ही जब रंज देने वाला है। दोस्तों दो शेर और समाप्त कीजिए। कहा है कि मुझे दिया है उसने लिबास कांटों का, मुझे दिया है उसने लिबास कांटों का, सिला मिला है ये इश्को वफा की बातों का, सिला मिला है ये इश्को वफा की बातों का, और बुझा दिए हैं उम्मीदों के सब दिए मैंने, बुझा दिए हैं उम्मीदों के सब दिए मैंने, फरेब खाया है अब तक बहुत उजालों का, फरेब खाया है अब तक बहुत उजालों का, और सब अपनी जात के बारे में सोचते हैं यहाँ, सब अपनी जात के बारे में सोचते हैं यहाँ, बनावटी है हर एक रंग रिश्ते नातों का, बनावटी है हर एक रंग रिश्ते नातों का, और किसी भी दिन मुझे ले जाएगी उड़ा के हवा, किसी भी दिन मुझे ले जाएगी उड़ा के हवा, हूं एक सूखा हुआ गुल चमन के हाथों का, हूँ एक सूखा हुआ गुल चमन के हाथों का, और मैं आसमां से सितारे भी तोड़ लाऊंगा, मैं आसमां से सितारे भी तोड़ लाऊंगा, सहारा मुझको जो मिल जाए तेरी बाहों का, सहारा मुझको जो मिल जाए तेरी बाहों का, और तू अपनी जुल्फ के साए में करने दे आराम, तू अपनी जुल्फ के साए

0: में करने दे आराम, तू अपनी जुल्फ के साए में करने दे आराम, थका हुआ हूँ मुसाफिर वफा की राहों का, थका हुआ हूँ मुसाफिर वफा की राहों का। और शेर देखेंगे, तुम्हारी बज्म में ये क्यों बिलाल उदासी है, तुम्हारी बज्म में ये क्यों बिलाल उदासी है, लगे है दिन में भी मंजर सियाह रातों का, लगे है दिन में भी मंजर सियाह रातों का। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
1: शायर में अभी आपने सुना मोहम्मद वसी बेग को, और अब सुनिए अफसाना पॉलिथिन। अफसाना निगार है महमूदा कुराशी।
2: हम आजाद परिंदे हैं और जहाँ चाहे घूम फिर सकते हैं, जमीन का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ हम नहीं घूम सकते, लेकिन फिर भी हमारे बीच सरहदें हायल हैं जिसका एहतराम हम पर वाजिब है। परिंदों की सभा में एक सारस ने सभी से मुखातिब होते हुए कहा, लेकिन हम फिर भी अपना रिस्क ढूंढते हुए जहाँ चाहे जा सकते हैं, बस हमारी उड़ानों में दम होना चाहिए और हौसले बुलंद। लेकिन अब हमें ये फिक्र सताती है कि हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। हमारी आने वाली नस्लों की उड़ानों में तो वो जोर नहीं है जो हमारी और हमसे पहले नस्लों में हुआ करता था। हम लोग तो कई कई रोज की मुहास पर घुमाते थे, मजाल है जरा भी थकन ही महसूस हो जाए, लीडर सारस ने दम भरते हुए कहा। आज की नस्ल तो हमारा नाम डुबाने पर लगी है, लेकिन ये कसूर उसका भी नहीं है। जब से ये बेतार की तरतीब चल निकली है, सब उसी के गुरेदा हो गए हैं। उनके पास वक्त ही कहाँ होता है जो लंबी सैर पर ही निकल जाए। मुझे तो फिक्र होने लगी है। उस सभा में मौजूद एक मादा सारस ने लीडर सारस की बातों से मुत्तफिक होते हुए जवाब दिया, शायद आप सही कह रहे हैं। हमारी नस्ल को आज अच्छा खाना भी कहाँ मिल पाता है। हमारे बच्चे रिस्क की तलाश में इधर उधर घूमते भी हैं तो उन्हें क्या मिलता है, प्लास्टिक की थैलियाँ और थर्मोकोल की पेटियों में बंद बदबूदार खाना। इंसानों ने तो प्लास्टिक को अपने गले का हार बना लिया है, बस जितना इस्तेमाल करता है उतना ही कचरा उससे बढ़ता है। बाजार में तो हालत ये है कि हर चीज दो तीन पॉलिथीन में ना लपेट दें, वो इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती। अब हमारे बच्चे भी तो यही सब खाते हैं, तो फिर क्यों कर कमजोर ना होंगे। वहाँ मौजूद सभी परिंदों ने एक ही आवाज से कहा, हाँ हाँ, कम अज कम हमारे बच्चों को साफ सुथरी गिजा, ताज़ा पानी और साफ सुथरा माहौल तो मैसर होना चाहिए, जिसके लिए हम फिक्रमंद हैं। लेकिन क्या ही किया जा सकता है, ये मसला आज सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये तो आलमी सतह पर सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो हम अदना सी कौम क्या कर सकती है, एक बुजुर्ग मादा सारस ने अपना मुशाहिदा बयान करते हुए कहा। हमारे बच्चे पॉलिथीन खाते हैं, पॉलिथीन और थर्माकोल किसकी ऐजाद करता है, इंसान की, और इंसानों ने ही पूरी फिजा में जहर घोल दिया है। हवा के गिर्द आलूदा गुबार ने पूरे मुल्क में पॉल्यूशन मचा कर रखा हुआ है। ताज़ा हवा तो मैसर ही नहीं, और दिल्ली और यूपी में तो सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। दूसरे यहाँ के पानी में ही जहर घुला हुआ है, जिसको पीने से न जाने कौन कौन सी बीमारियां बदन में सरायत कर जाती हैं। अभी हाल ही की बात है, जापान में मिनी माता रोग से वहाँ के सभी मछलियाँ मर गयी। करे कोई भरे कोई, मादा सारस ने तंजिया तौर पर कहा। हम क्या ही कर सकते हैं, सभी इंसान की ऐजाद करदा अवामिल से कारोबारी तरक्की के लिए ऐसे ऐसे तजुर्बे किए जा रहे हैं जिससे फिजा में जहर घुला हुआ है। हम सोचे भी तो क्या सोचें, इंसान की कारोबारी तरक्की को तो नहीं रोका जा सकता। इंसान तो ग्लोबल वार्मिंग के तहत पूरी दुनिया को एक गांव में मुंतकिल करने के फिराक में है। सभी परिंदे इसी सोचो फिक्र में डूबे हुए थे कि तभी परिंदों की उस सभा में घूमते हुए कुछ चौपाए जानवर भी शरीक हो गए और अपने मसाइल की वजाहत करते हुए गौ माता ने कहा, आज के दौर में तो हम भी महफूज नहीं है, इज्जत एहतराम तो दूर है, हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी किसी को लेने की फुर्सत कहाँ है। अभी हाल ही में आवारा घूमती हुई हमारी ही नस्ल की 25 गायों का ऑपरेशन हुआ है, जिनके पेट से 25-25 किलो पॉलिथीन की थैलियां निकली हैं, जो उनके बदन में अस्थमा, एनीमिया, ब्लड प्रेशर, एलर्जी और बदहजमी जैसी बीमारियां पैदा कर रही थी। घूमने फिरने वाले जानवरों का खाना कूड़े कचरे पर ही मुनहसर होता है, और पॉलिथीन के शापर में बंद चीजें ही ये खाते हैं। अब ये पॉलिथीन गलती भी तो नहीं है, इसलिए

ये वो हमारे अंदर जमा होकर बीमारियों की वजह बनती है। ये प्लास्टिक हमें हजम नहीं होती, जिससे हमारी आंतें बंद हो जाती हैं, शदीद कब्ज होती है और बिलाआखिर जानवर भूख से मर जाते हैं। अब आप सब अंदाजा लगा सकते हैं ये इंसानों के कूड़े कचरे में मौजूद पॉलिथीन हमारे ऊपर क्या असर डाल रही है। हम लोगों का खाना पीना तो इंसानी कूड़े कचरे पर ही मुनहसर है। क्या इंसान अपनी जिंदगी से इस पॉलिथीन को अलग नहीं कर सकता? फिक्रमंद लहजे में गौ माता ने कहा। तभी गौ माता की परेशानी को बयान करते हुए देख सभी चौपाए जानवर एक बुलंद आवाज के साथ लीडर सारस से मुखातिब हुए। प्लास्टिक में मौजूद रंग और केमिकल्स हमारे खून में शामिल होकर जहरीलापन पैदा करते हैं। हद तो यह है कि प्लास्टिक खाने से हमारे हार्मोन्स की खराबी के बायस पॉली दी सलाहियत भी होता

0: हार्मोन्स की खराबी के बायस तौलीदी सलाहियत भी मुतासिर होती है। हमारे बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। क्या सारे कानून सिर्फ हम जानवरों के लिए ही हैं? इंसानों को मालूम होना चाहिए वो अपनी जाती मफाद के लिए हम जैसे बेजबानों की जिंदगियां क्यों दांव पर लगा रहे हैं। सरकार इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती और सख्ती से पॉलिथीन मुक्त मुहाज पर इंसानों को अमल पैरा रहने की दावत देनी तो बनती है। क्या सारे कानून हमारे ऊपर ही मुसल्लत किए जाएंगे? कोई तो हमारी बात सरकार तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। सभी चौपायों का दर्द सुनकर लीडर सारस ने कहा, इंसानों की ऐजाद करदा ये पॉलिथीन ने हमारे लिए ही नहीं बल्कि हर चरिंद परिंद जानवरों और खुद इंसानों के लिए बड़ा मसला पैदा कर दिया है और प्लास्टिक मुक्त भारत भी कल कुछ ज्यादा असरअंदाज नहीं हुआ। हमारे लिए इस सभा का मकसद ही सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था और मुल्क हिंदुस्तान को पॉलिथीन मुक्त कराना है। लीडर सारस ने सभी से मुखातिब होते हुए कहा, सबको यकीन दिलाया कि ये बात हम जरूर मजलिस कानून साज में पेश करेंगे। लीडर सारस की बात पर सभी ने मुत्तफिक होते हुए सहमति दर्ज कराई, लेकिन मादा सारस की पेशानी पर फिक्र की लकीरें बता रही थीं कि वो जरूर इन सभी बातों से मुत्तफिक नहीं है। फिक्र और सोच के घोड़े दौड़ाते हुए मादा सारस ने लीडर सारस की बात की मुखालफत करते हुए कहा, ये सब कानूनी तौर पर खत्म नहीं हो सकता, बल्कि इंसान को चाहिए कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम से कम करे, उन्हें हरगिज न जलाए और कूड़ेदान में फेंकते वक्त इस बात को यकीनी बनाए कि जानवर उसे बिल्कुल खाने ना पाए। ऐसी सहूलियत खुद इंसान ही कर सकता है। पॉलिथीन को खत्म इंसान ही कर सकता है, उसे सिर्फ अपने पहले से मौजूद कानून को अमली जामा पहनाना है। ये बात 100% सच है कि इंसान ही पॉलिथीन का इस्तेमाल खत्म कर सकता है। बस इस बारे में हमें ये सोचना है कि इंसान उसे कैसे अमली जामा पहनाएगा और हमारे इस अमल पर वो क्या रद्द अमल देगा।
1: आप सुन रहे थे अफसाना पॉलिथीन। अफसाना निगार थी महमूदा कुरैशी। इसी के साथ उर्दू कार्यक्रम अंजुमन अब खत्म होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सबसे पहले आप सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी

0: संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बदा अने आपणो सूरत मजामा ने? तू शू लई आव्यो छो भाई? धन्यवाद दोस्त, सरस मजानू चित्र बनाई देते हैं। जरा एसपी जना लोको आप भाई के भेंट आप मांगे थे।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 5:05 हो चुके हैं। अब वक्त है आज के कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का।

हमारे सभी श्रोता 5:10 पर आनंद ले सकेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का। 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा शीत जल मत्स्य संपदा पर। साथ ही आप सुनेगा वार्ता युवा पीढ़ी और हरित भविष्य की जिम्मेदारी। वार्ताकार होंगी उन्नति अग्रवाल और चलते चलते में आप सुनेंगे हीट स्ट्रोक, लू से बचाव।

शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम्य लोग, जिसमें चर्चा का विषय होगा मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर आदित्य कुमार से वार्ता, पशुओं में कुपोषण से होने वाले रोग, लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। साथ ही आप सुनेंगे वार्ताकार ज्ञानेंद्र कुमार रावत से कानूनी वार्ता, श्रमिकों की हड़ताल और कानूनी प्रावधान।

7:10 पर विविधा कार्यक्रम के तहत आप सुनिएगा जीवन शैली के डॉक्टर पीके गर्ग से पर्यावरण संरक्षण हम सब का दायित्व पर वार्ता। शाम के 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जिसमें आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुविख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता से अनिंद्र सिंह की बातचीत। रात्रि 8:00 आप सभी आनंद ले सकेंगे फिल्मों से कव्वालियों कार्यक्रम महफिले कव्वाली, और 8:30 पर आप सुनेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

रात्रि के 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा करंट अफेयर्स। रैन 10 बजे आकाशवाणी आगरा से सभी श्रोता सुन सकेंगे पसंदीदा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रजनी गंधा, और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित विश्वनाथ से राग पूर्या कल्याण में ख्याल गायन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रेडियो की इस पावन तरंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए ईश्वर के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। इसी भाव के साथ हम आरंभ कर रहे हैं आज का सुर संध्या कार्यक्रम, जहां संगीत, भक्ति और शांति एक साथ प्रवाहित होंगे।

0: बाबा नानक के चरणों में जब मन लग जाता है तो जीवन की हर कठिनाई सहज हो जाती है। बाबा नानक की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे फिल्म कोराम से, आवाज थी किशन लाल एवं साथियों की। गीतकार थे देव कोहली और संगीतकार दिलीप सैनी और समीर सैनी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या। आइए अब सुनते हैं अगली रचना, जो कि फिल्म स्वदेश से, आवाजें हैं मधुश्री, विजय प्रकाश और आशुतोष गोरारकर की। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार ए आर रहमान।

राम का नाम लेते हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। राम की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है। आइए आप सुनते हैं अगली रचना, जो कि फिल्म हल्ला बोल से, आवाज और संगीत है सुखेंद्र सिंह का, गीतकार है समीर।

वाहेगुरु केवल आराधना के प्रतीक नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो हमें सही राह दिखाती है। वाहेगुरु के चरणों की धूल में ही भक्ति का सच्चा आनंद छुपा है। किसी के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम युववाणी का।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग युवा साथियों, मैं हूं आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अच्छा साथियों, आपको कैसा लगता है जब आप हरी भरी धरती, स्वच्छ हवा, साफ जल और चहचहाते पक्षियों की आवाजें सुनते हैं? यकीनन मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन क्या हम अब अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए सही ढंग से प्रयास कर रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे विश्व में एक विशेष दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आपसे पूछते हैं इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न। प्रश्न है कि हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो साथियों सोचिए, गेस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इसका उत्तर जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में। अच्छा दोस्तों, भारत में अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल एरियाज पाए जाते हैं, जैसे कि मैदान, पहाड़ और नदियाँ। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन भी अलग अलग रूप में मिलते हैं। ये रिसोर्सेस लोगों के जीवन और काम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्रकृति हमें जल, वायु, भूमि और अनेक नेचुरल रिसोर्सेस प्रदान करती है। ये संसाधन मानव जीवन, जीव जंतुओं के संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके सही यूज और संरक्षण से पर्यावरण संतुलित रहता है, लोगों की आजीविका को भी सहारा मिलता है। इसी प्रकार हिली एरियाज के ठंडे और स्वच्छ जल स्रोत भी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, जिनसे शीत जल मत्स्य संपदा का विकास होता है, यानी फिशरीज रिसोर्सेस। दोस्तों, शीत जल मत्स्य संपदा का अर्थ उन मछलियों और मत्स्य संसाधनों से है जो ठंडे पानी में पाए जाते हैं। भारत में ये संपदा मुख्य रूप से माउंट

माउंटेनियस रीजन्स जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों की नदियाँ, झीलें और जलाशय ठंडे, साफ और ऑक्सीजन से भरपूर होते हैं, जो मछलियों के रहने लायक हैं। शीत जल में पाई जाने वाली प्रमुख मछलियों में महाशीर, रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट शामिल हैं। शीत जल मत्स्य पालन पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा साधन है। किसान ट्राउट जैसी मछलियों का पालन करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इससे लोगों को रोजगार मिलता है और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा दोस्तों, महाशीर जैसी मछलियों के कारण खेल पकड़ने वाले खेल जैसे कि स्पोर्ट्स फिशिंग और टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलता है। हालांकि जल प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, बांध निर्माण और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसी समस्याएं इस संपदा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इसलिए इन मछलियों और उनके नेचुरल हैबिटेट्स का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नदियों और झीलों को साफ रखना चाहिए, पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा मछली पकड़ने पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, लोगों में जागरूकता फैलाकर और नियमों का पालन करके इन संसाधनों को बचाया जा सकता है। साथियों, इसी संदर्भ में अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछली पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग हर वर्ष 5 जून को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है, जो अवैध मछली पकड़ने की रोकथाम, जलीय संसाधनों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मत्स्य संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। सही प्रबंधन और मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से शीत जल मत्स्य संपदा न केवल पर्यावरण की रक्षा कर सकती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका को भी मजबूत बना सकती है। अगर हम इसे समझदारी से यूज करें और नेचुरल वाटर रिसोर्सेज की रक्षा करें तो दोस्तों, ये रिसोर्सेज लंबे समय तक हमारे लिए उपयोगी रहेंगे और हमें लाभ देते रहेंगे। इसीलिए प्रकृति के इन अनमोल उपहारों को बचाना केवल एक ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। अब साथियों, समय है आपके मनोरंजन का, तो आप सभी को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा संगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: साथियों, आपका युवावाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आप है अपनी रेडियो दोस्त स्वस्ति आर्य के साथ। अच्छा दोस्तों, जैसा कि हम अवैध, गैर सूचित और अनियमित यानी इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड मछली पालन के खिलाफ लड़ाई के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात कर रहे थे, ये दिवस हमें मत्स्य संसाधनों के संरक्षण, फिश फार्मिंग और फिशिंग कम्युनिटी के कल्याण के महत्व की याद दिलाता है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। ये योजना न केवल मछली उत्पादन बढ़ाने पर बल देती है, बल्कि मत्स्य संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, मॉडर्न टेक्निक्स के यूज और कोस्टल एरियाज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित करती है। साथियों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी और ये एक महत्वपूर्ण योजना भी है, जिसका उद्देश्य देश के मत्स्य क्षेत्र का समग्र विकास करना, मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। ये योजना के तहत नई मछली तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का सुधार, बायोफ्लॉक और आरएएस जैसी आधुनिक प्रणालियों की स्थापना, हैचरी डेवलपमेंट, मछली बीज उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण मछली आहार की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाता है। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, फिश मार्केट, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जैसे आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, ये योजना के माध्यम से सामान्य वर्ग के बेनिफिशरीज की परियोजना लागत का लगभग 40% और महिलाओं, SC/ST के बेनिफिशरीज को 60% तक ग्रांट दिया जाता है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के मछली पालकों को अपने बिजनेस को बढ़ावा देने और मॉडर्न टेक्निक्स में सहायता मिलती है। इस प्रकार जहां एक ओर अवैध और अनियमित मछली पालन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास समुद्री और जलीय संसाधनों के संरक्षण पर जोर देते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन रिसोर्सेज के सही और जिम्मेदार यूज को बढ़ावा देकर मत्स्य क्षेत्र को अधिक उत्पादक, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाने का कार्य करती है। ये योजना मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार, खाद्य पोषण सुरक्षा को मजबूत करने और भारत को मत्स्य उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करती है। साथियों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केवल मछली उत्पादन बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि ये भारत की ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल भी है। इसके माध्यम से मॉडर्न टेक्निक्स और साइंटिफिक मेथड्स को अपनाकर मत्स्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ये योजना से मछुआरों और मत्स्य किसानों की इनकम बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर भी पैदा होते हैं।

0: ये योजना एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर देश की इकोनॉमी को मजबूत करने, आत्मनिर्भर भारत और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथियों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालक को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक मजबूत और मॉडर्न बिजनेस बनाने की दिशा में एक पहल कदम है। ये योजना लोगों की आमदनी बढ़ाती है, रोजगार के नए मौके देती है और नेचुरल रिसोर्सेज के सही यूज को बढ़ावा देती है। इससे देश के ग्रामीण और कोस्टल एरियाज में विकास की नई गति मिलती है। अच्छा दोस्तों, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। विकास की दौर में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे। क्या उन्हें स्वच्छ हवा, साफ पानी और हरियाली से भरपूर वातावरण मिलेगा? ऐसे में समय की मांग है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इन्हीं विचारों के साथ हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये वार्ता, जिसका विषय है युवा पीढ़ी और हरित भविष्य की जिम्मेदारी। वार्ताकार है उन्नति अग्रवाल।
1: पृथ्वी हमारा घर है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं, जिस भोजन का सेवन करते हैं और जिस प्रकृति के बीच जीवन बिताते हैं, वह सब हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है। लेकिन आज यही पर्यावरण अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। और दोस्तों, युवा पीढ़ी किसी भी समाज की रीढ़ होती है। युवाओं के पास वह ऊर्जा, वह सोच और वह साहस होता है जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर एक नया रास्ता बना सकता है। आज हमारी धरती एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और मौसम का चक्र बिगड़ना, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम रोज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अगर आज का युवा आगे नहीं आया तो हमारा आने वाला कल बहुत अंधकारमय हो सकता है। इसलिए आज हमें ये समझना होगा कि हरित भविष्य कोई चॉइस नहीं है बल्कि हमारी मजबूरी और हमारी जिम्मेदारी दोनों है। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें इस हरित भविष्य की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ विकास की अंधी दौड़ चल रही है। हमने गगनचुंबी इमारतें बना ली, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी, सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा दिया, लेकिन इस सब की कीमत किसने चुकाई? इस सब की कीमत हमारी प्रकृति ने चुकाई है। आज नदियाँ कचरे के ढेर में बदल चुकी हैं, सांस लेने के लिए हवा में जहर घुल चुका है और प्लास्टिक ने हमारी मिट्टी को बंजर बना दिया है। ये सब देखकर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पुरानी पीढ़ियों ने जो गलतियाँ की या अनजाने में जो नुकसान हुआ, उसे सुधारने का जिम्मा अब युवाओं के कंधों पर है। युवा पीढ़ी के पास तकनीक की ताकत है, जानकारी का भंडार है और सबसे बढ़कर उनके पास एक लंबा जीवन आगे जीने के लिए है। अगर आज हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो कल को हमें ही एक प्रदूषित और बीमार दुनिया में जीना पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा अब सिर्फ किताबों या भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि हरित भविष्य का मतलब सिर्फ कुछ पेड़ लगा देना या साल में एक बार पर्यावरण दिवस मना लेना है, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। हरित भविष्य का मतलब है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां हम तरक्की भी करें लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। एक युवा के रूप में हमें अपनी रोज़मर्रा की आदतों को बदलना होगा। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी काम करते हैं, उसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। क्या हम पानी बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम बिना ज़रूरत के बिजली का पंखा या लाइट खुली छोड़ देते हैं? क्या हम बाज़ार जाते समय प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल करते हैं? ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। हरित भविष्य की शुरुआत हमारे अपने घर से, हमारे अपने कमरे से होती है। आज का युवा सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वह बदलाव का दूत है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर जो सबसे बड़े आंदोलन चल रहे हैं उनका नेतृत्व युवा कर रहे हैं। चाहे वे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज़ उठाना हो या फिर स्थानीय स्तर पर कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करना हो, युवा हर जगह आगे है। सोशल मीडिया के इस दौर में युवाओं के पास अपनी बात को

0: लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की अद्भुत ताकत है। आज की युवा पीढ़ी को डिजिटल जनरेशन कहा जाता है। हमारे पास तकनीक की जो समझ है वह पिछली पीढ़ियों के पास नहीं थी। इस तकनीक का उपयोग हम हरित भविष्य के लिए कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। आज ऐसे कई युवा स्टार्टअप सामने आ रहे हैं जो पर्यावरण की समस्याओं का तकनीकी समाधान निकाल रहे हैं। कोई सौर ऊर्जा को सस्ता बनाने के लिए काम कर रहा है, तो कोई प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पौधों से बनी थैलियां तैयार कर रहा है। बदलाव हमेशा एक दिन में नहीं आता और ना ही इसके लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत होती है। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पानी की हर एक बूंद कीमती है। ब्रश करते समय नल बंद रखना, नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनसे करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है। इसी तरह बिजली बचाना भी पर्यावरण को बचाने जैसा ही है, क्योंकि आज भी हमारे देश में ज़्यादातर बिजली कोयले को जलाकर बनाई जाती है। एक और बड़ी समस्या है कचरे की। हम हर दिन कितना सारा सूखा और गीला कचरा बाहर फेंकते हैं। अगर युवा अपने घरों में ही कचरे को अलग-अलग करना शुरू कर दे, यानी गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, तो कचरे का निपटारा करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही हमें पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। कोयला और पेट्रोल डीजल सीमित हैं और ये खत्म होने वाले हैं। युवाओं को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए आगे आना चाहिए। जब युवा इन तकनीकों का समर्थन करेंगे तो इनका विकास और तेजी से होगा। हरित भविष्य का मतलब यही है कि हम ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का इस्तेमाल करें जो कभी खत्म ना हो और जिनसे प्रदूषण भी ना फैले। आज के समय में सिर्फ पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पेड़ की देखभाल करना और उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग फोटो खिंचवाने के लिए पौधा लगा देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। युवाओं को इस सोच को बदलना होगा। हमें वन चाइल्ड वन ट्री, यानी हर युवा को कम से कम एक पौधा लगाने और उसे पेड़ बनने तक पालने का संकल्प लेना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि पर्यावरण की रक्षा करने से विकास रुक जाएगा और नौकरियां कम हो जाएंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच तो ये है, हरित भविष्य युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर लेके आ रहा है। इसे हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, कचरा प्रबंधन में, पर्यावरण परामर्श में और सस्टेनेबल फैशन में आज युवाओं की बहुत मांग है। एक हरित भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। आज स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण की पढ़ाई तो कराई जाती है, लेकिन वह अक्सर सिर्फ परीक्षा पास करने तक ही सीमित रह जाती है। युवा पीढ़ी को ऐसे व्यवहारिक शिक्षा को ज़मीन पर उतारना होगा। हमें खुद भी जागरूक होना होगा और समाज के उन वर्गों को भी समझाना होगा जो शिक्षा के अभाव में पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमारे किसान भाई अनजाने में फसलों के अवशेष, जिसे हम पराली के नाम से जानते हैं, उसे जला देते हैं, जिससे भारी प्रदूषण होता है। युवा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों को समझा सकते हैं कि पराली जलाने के क्या नुकसान हैं और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसी तरह झुग्गी झोपड़ियों और गरीब बस्तियों में स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जा सकती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और जब पर्यावरण का ज्ञान बढ़ेगा तो धरती अपने आप सुरक्षित हो जाएगी।
1: वेलकम बैक साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था युवा पीढ़ी और हरित भविष्य की जिम्मेदारी। वार्ताकार थी उन्नति अग्रवाल। दोस्तों, विज्ञान की दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई खोज हमारे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। कभी नई दवाइयाँ, कभी मॉडर्न डिवाइसेस और कभी ऐसी टेक्निक्स जो बीमारियों को समझने का हमारा तरीका ही बदल दे। ऐसी ही एक अभिनव तकनीक है जो आज की चर्चा में चल रही है। उसका नाम है क्लियर टेक्नोलॉजी, जो चिकित्सा और कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है क्लियर टेक्नोलॉजी और ये स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण कैसे है। साथियों, क्लियर टेक्नोलॉजी मतलब क्लीवेबल लाइट इरेस्ड एंटीबॉडी रिपोर्टर एक एडवांस्ड बायो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिस्ट ने सेल और टिश्यूज के अंदर मौजूद विभिन्न प्रोटीनों का अत्यंत सटीक अध्ययन करने के लिए विकसित किया है। ये टेक्निक विशेष रूप से कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस और दूसरी जटिल बीमारियों के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथियों, आइए जानते हैं ये टेक्निक कैसे काम करती है। इस टेक्निक में विशेष

प्रकार की एंटीबॉडी का यूज किया जाता है जो विभिन्न प्रोटीनों से जुड़कर उन्हें पहचानने में मदद करती है। लाइट की हेल्प से इन सिग्नल्स को हटाया जा सकता है और दोबारा यूज किया जा सकता है, जिससे एक ही सैंपल बार बार अलग अलग प्रोटीनों का एनालिसिस करना संभव है। अब दोस्तों बात करते हैं इस टेक्निक की कुछ विशेषताओं की। एक ही बायोलॉजिकल स्पेसिमेन में अनेक प्रोटीनों की पहचान और मैपिंग हो सकती है। सेल स्ट्रक्चर्स और प्रोसीजर को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। ये हाईली एक्यूरेट और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। बायोलॉजिकल सैंपल्स को नुकसान पहुंचाए बिना बार बार टेस्ट की सुविधा मिलती है। दोस्तों इस टेक्निक के कई लाभ हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट और साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये टेक्निक वैज्ञानिकों को कैंसर के ट्यूमर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जिससे बीमारी की पहचान और उपचार को एक अलग ही मौका मिलता है। इसके साथ ही यह अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी मस्तिष्क संबंधी बीमारियों पर शोध कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्लियर टेक्नोलॉजी हर पेशेंट की जरूरत के अनुसार उसको इलाज देती है। नई दवाओं के विकास और उनकी इफेक्टिवनेस की जांच में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर ये टेक्निक भविष्य में कई गंभीर बीमारियों के बेहतर डायग्नोसिस और उपचार का मार्गदर्शन कर रही। साथियों, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये टेक्निक लाखों लोगों के जीवन में नई उम्मीद की किरण बनकर उभरेगी। ऐसे साइंटिफिक इन्वेंशंस और इनोवेशंस हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की दिशा में हमारी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। दोस्तों इसी उम्मीद और नई सोच के साथ अब आइए आनंद लेते हैं इस मधुर गीत का।

अच्छा साथियों, आपको याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। अब साथियों, वैसे तो समय है आप सभी से विदा लेने का, पर चलते चलते आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय हीट स्ट्रोक से बचाव बहुत ही जरूरी है। तेज धूप में ज्यादा देर तक रहने से शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिससे चक्कर आना, वीकनेस, सिर दर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए दोस्तों, सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिए, हल्के और लाइट सूती कपड़े पहने और दोपहर को अगर बहुत जरूरी ना हो तो बाहर जाने से बचे। ये सावधानियां हमें और हमारे परिवार को हीट स्ट्रोक से बचा सकती हैं। तो साथियों, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ कार्यक्रम युवावाणी समाप्त करने की अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्थ आर्य को दीजिए आज्ञा। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। प्रोग्राम प्रेजेंटर थी स्वस्ति आर्य। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

नमस्कार किसान साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रामीण लोक और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र उमा अली। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो जीवन की हर चुनौती में हमारा मार्गदर्शन करता है, और आज का विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। प्रिय किसान साथियों, जीवन में हम सभी सफलता पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हमारी मेहनत रंग लाए और हमें मान सम्मान मिले। लेकिन क्या केवल प्रतिभा और परिस्थितियां ही सफलता तय करती हैं? नहीं, सफलता का सबसे बड़ा आधार है हमारा मन, हमारी सोच और हमारा आत्मविश्वास। कबीरदास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि मनुष्य अपने मन से हार मान ले तो वह जीतते हुए भी हार जाता है, और यदि उसका मन दृढ़ है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां में भी वह सफलता प्राप्त कर सकता है। साथियों, कल्पना कीजिए, कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसने मेहनत भी की, लेकिन परीक्षा से पहले वह सोचने लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर यदि वही विद्यार्थी यह सोचकर आगे बढ़े कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं सफल हो सकता हूं, तो उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यानी जीत और हार की शुरुआत हमारे मन से होती है। मित्रों,

इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने मन को मजबूत रखा, उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। जब भारत ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, तब अंग्रेजों की शक्ति बहुत अधिक थी, संसाधन कम थे, चुनौतियां हमारे लिए बहुत सारी थी, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मन से हार नहीं मानी। उनके दृढ़ संकल्प ने आखिरकार भारत को आज़ादी दिलाई। इसी प्रकार दुनिया के अनेक महान व्यक्तियों ने जीवन में असफलताओं का सामना किया। कई बार उन्हें नकारा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने अपने मन को कमज़ोर नहीं होने दिया। परिणाम स्वरूप वे इतिहास में अमर हो गए। साथियों, अक्सर हम अपनी असफलताओं का कारण परिस्थितियों को मान लेते हैं। हम कहते हैं कि समय खराब था, हमारे पास संसाधन नहीं थे या किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, हमारे मन की भीतर होती है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और फिर हार को अपना भविष्य मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बड़ी सफलता से पहले संघर्ष आता है। कोई भी व्यक्ति बिना चुनौतियों के सामना किए महान नहीं बनता। मेरे साथियों, जीवन एक खेल की तरह है। खेल में वही खिलाड़ी जीतता है जो अंत तक मैदान में डटा रहता है। जो खिलाड़ी शुरुआत में ही हार मान लेता है, उसकी हार निश्चित हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में भी परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हों, यदि हमारा मन मजबूत है तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। कभी कभी एक छोटा सा सकारात्मक विचार भी जीवन बदल देता है। जब हम कहते हैं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। जब हम कहते हैं मैं कोशिश करूँगा, तब नए रास्ते खुलते हैं। और जब हम कहते हैं मैं हार नहीं मानूंगा, तब सफलता हमारे करीब आने लगती है। मित्रों, आज के समय में मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, स्वयं पर विश्वास रखें। दूसरा, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तीसरा, असफलताओं से सीखें, उनसे डरें नहीं। चौथा, अच्छे लोगों और सकारात्मक विचारों के संपर्क में रहें। पांचवा, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाएं। याद रखिए, बड़े परिवर्तन एक दिन में नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। श्रोताओं, एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है ना, तो उसे अंधेरे का सामना करना पड़ता है। उसे मिट्टी को चीर कर बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। धीरे धीरे वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। संघर्ष हमारे जीवन की मिट्टी है, चुनौतियां हमारी परीक्षा हैं, और आत्मविश्वास वह शक्ति जो हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, जब भी लगे कि रास्ता मुश्किल है, तब इस पंक्ति को याद कीजिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने अपने मन को मजबूत रखा, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। तो श्रोताओं, आइए आज हम यह संकल्प लें कि हम कभी भी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानेंगे। हम अपने मन को सकारात्मक, दृढ़ और आत्मविश्वास से भरपूर बनाए रखेंगे, क्योंकि असली जीत मैदान में नहीं, सबसे पहले मन में हासिल होती है। इसी संदेश के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूँ इस लोकगीत के साथ। आप आनंद लीजिए इस लोकगीत का, और मैं आपसे मिलूंगी इस गीत के बाद।

0: किस्सा साथियों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत तबस्सुम सलीम की आवाज़ में। साथियों, सही खान पान ना होने से मानव हो या पशु, किसी का भी शरीर कुपोषण का शिकार हो सकता है। हमारा ख्याल तो हमारे पारिवारिक जन रख लेते हैं, लेकिन अपने पशुओं का ध्यान हमको रखना होता है। बेजुबान अपने बच्चों व अपनी अच्छी परवरिश के लिए हम पर निर्भर होते हैं। वैसा ना होने पर वे भी मनुष्यों की तरह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनका शरीर कमज़ोर होकर रोगग्रस्त हो जाता है। कौन से रोग हैं जो कुपोषण की वजह से होते हैं, आइए जानते हैं आज की वार्ता में, जिसका विषय है पशुओं में कुपोषण से होने वाले रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर आदित्य कुमार।
1: हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को दाने व चारे के रूप में जो खाने को देते हैं, उसमें बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो पशुओं के लिए अति आवश्यक होते हैं। ऐसे पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है। इन पोषक तत्वों से पशु के शरीर की सभी क्रियाएं सामान्य रूप से चलती हैं, क्योंकि ये पोषक तत्व पशु के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं व शरीर की कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट को ठीक करते हैं। इन पोषक तत्वों से ही पशु शरीर को शक्ति मिलती है व शरीर की

वृद्धि होती है, परंतु यह बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारे पशुओं को पोषक तत्वों की आपूर्ति उचित मात्रा में नहीं होती है। पशुओं को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, विटामिन्स व खनिज लवणों आदि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पशु के शरीर में कमी हो जाने पर पशु के शरीर की क्रियाएं सामान्य रूप से नहीं चल पाती हैं, जिसकी वजह से पशु के शरीर का विकास रुक जाता है तथा पशुओं से मिलने वाले उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों से होता है। इसमें सल्फर व फास्फोरस भी पाया जाता है। प्रोटीन से पशु शरीर के तंतुओं की वृद्धि, नई कोशिकाओं का निर्माण, टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनर्जन्म व मरम्मत होती है। प्रोटीन से पशु शरीर में पाचक रस, हार्मोन्स, एंजाइम्स का निर्माण होता है, जिससे शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त होती है व शरीर की वृद्धि होती है। यदि पशु शरीर के प्रोटीन की उचित आपूर्ति ना हो तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है और पशु की उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। अतः पशु को प्रोटीन की उचित मात्रा, सोयाबीन, बिनौला, गेहूं, ज्वार आदि को उचित अनुपात में देने से प्राप्त हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नामक तत्वों से होता है। इससे पशुओं को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन का क्षय भी कम होता है। यह पशु के शरीर में जिगर व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है व आवश्यकता पड़ने पर रक्त में मिलकर ऊर्जा देता है। यह चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से पशुओं के शरीर में कमजोरी आ जाती है व पशु के शरीर की क्रियाएं चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती व पशु का उत्पादन कम हो जाता है। अतः पशुओं में इनकी आपूर्ति के लिए पशुओं को उचित मात्रा में हरा चारा व दाना खिलाना चाहिए। इसकी कमी से पशुओं में कीटोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मिलने से होता है। वसा पशु शरीर को शक्ति व गर्मी प्रदान करता है। शरीर की वृद्धि, विकास व स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। वसा त्वचा व प्रजनन के लिए भी आवश्यक है, जो कि भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। वसा पशु के शरीर को सर्दी से बचाती है और उसके शरीर को सुडौल बनाती है। वसा के अभाव से वसा में घुलनशील विटामिन शरीर को नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर में विटामिन की कमी, अनेक विकार हो जाते हैं। पशु का शरीर कमजोर व दुबला हो जाता है व शरीर के बाल गिर जाते हैं। अतः पशुओं को वसा वाला भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जल की संरचना हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से होती है। पानी पशु के शरीर का सबसे आवश्यक तत्व है। पानी भोजन पचाने, शरीर में बनने वाले दूषित पदार्थों को पेशाब व पसीने के रूप में बाहर निकालने व शरीर को सदैव गर्म करने, रक्त को तरल रूप में बनाए रखने में सहायक होता है। पशु के शरीर को पानी सीधे पीने के अलावा दाना व चारा से भी उपलब्ध होता है। पशु के शरीर में पानी की कमी से रक्त प्रवाह पर असर पड़ता है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। पानी की कमी से पशु को कब्ज बना रहता है। अतः पशु को उचित मात्रा में पानी पिलाना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए व आवश्यकता पड़ने पर नॉर्मल सलाइन का घोल खून की नस में चढ़ाना चाहिए। विटामिन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन आदि मूल तत्वों से बना जटिल यौगिक है, जो कि पशु शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनकी उपस्थिति से शरीर निरोग व स्वस्थ रहता है। सभी जीवों में जीवन क्रियाओं को संतुलित रूप से चलाए रखने के लिए इनका भोजन में होना अति आवश्यक है। प्राकृतिक रूप से यह हरे चारों में पाया जाता है। पशुओं के लिए मुख्यतः विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई आवश्यक हैं। विटामिन ए का पशु पोषण में विशेष महत्व है। यह साधारणतः हरी सब्जियों व चारों में पाया जाता है। पशु की हड्डियों के निर्माण में व रोगों से बचने में इनका विशेष महत्व है। आंखों की रोशनी व प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में इस विटामिन का योगदान है। इस विटामिन की कमी से पशुओं के शरीर का विकास रुक जाता है। जननांग व पाचन तंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते व त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। पशुओं में इसकी कमी से गर्भपात हो जाना व दूध का कम होना देखा जाता है। इसकी कमी से बछड़े अंधे पैदा होते हैं। इसकी कमी से बचने के लिए पशु को उचित मात्रा में हरा चारा खिलाना चाहिए और जरूरत होने पर इसके इंजेक्शन और विटामिन ए युक्त पाउडर पशुओं को खिलाना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक सामूहिक विटामिन है, जिसमें B1, B2, B3, B6 और B12 आदि विटामिन होते हैं। यह पशु आहार का आवश्यक तत्व है।
इस विटामिन से

0: पशुओं की पाचन क्रिया ठीक रहती है, वह पशु स्वस्थ रहता है। इसकी कमी से पशु का पाचन खराब रहता है, त्वचा खुश्क व रूखी हो जाती है, दुग्ध उत्पादन व प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। विटामिन सी का निर्माण पशुओं में हरी घास खिलाने से होता रहता है। इस विटामिन से पशु के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, वह इसकी कमी से दांत व हड्डियां संबंधी रोग हो जाते हैं। पशुओं के जोड़ों में सूजन व कैल्शियम की कमी हो जाती है, पशुओं की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उचित उपयोग के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से सूखा नामक रोग हो जाता है, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है, पशु कमजोर हो जाते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर रोग उभरने की संभावना ज्यादा हो जाती है, हड्डियों में सूजन आ जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए पशुओं को भरपूर हरा चारा व संतुलित आहार जिसमें खनिज लवण उचित मात्रा में हो दिया जाना चाहिए। विटामिन ई के अभाव से पशुओं की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, वह इसकी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ई के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। विटामिन के की कमी से खून पतला हो जाता है, वह खून का जमना कम होने से रक्त स्राव नहीं रुकता, अक्सर दस्त व पेचिस की शिकायत भी बनी रहती है। विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए हरा चारा व संतुलित आहार देना चाहिए। इसकी कमी को पूरा करने के लिए भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पशु के शरीर का उचित विकास व प्रजनन क्षमता के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे खनिज तत्व कहते हैं। इनमें सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, कोबाल्ट आदि शामिल हैं। सामान्य पशु शरीर क्रिया के लिए इन खनिज तत्वों का पशु की खुराक में होना अति आवश्यक है। खनिज तत्वों की कमी के कारण शारीरिक भार में कमी, बालों का झड़ना, थकान व दुर्बलता, भूख न लगना, खून की कमी, त्वचा में रूखापन देखा जाता है। मैग्नीशियम की कमी से लैक्टेशन टेटनी की दशा बनी रहती है। खनिज तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पशुओं को प्रतिदिन उनकी खुराक में उचित मात्रा में खनिज मिश्रण युक्त दाना व हरा चारा खिलाना चाहिए।
1: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता, जिसका विषय था पशुओं में कुपोषण से होने वाले रोग। वार्ताकार थे डॉक्टर आदित्य कुमार। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नई किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, इस समय मक्का की कई नई किस्में आई हुई हैं, जो कम समय में ज़्यादा उत्पादन और रोग सहनशीलता देती हैं। पहली है पूसा HM4, जो 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है, सूखा सहनशील है, बड़े व समान भुट्टे होते हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। दूसरी है HQMP1, हाई प्रोटीन मक्का, पशु चारा व दाना दोनों के लिए बढ़िया होती है, लगभग 75 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। विवेक QMP9 केवल 88 दिनों में तैयार हो जाती है, जल्दी पकने वाली हाइब्रिड फसल है, रोग सहनशील भी है। इसके अलावा VL मधुवाला व VL लोफाई भी बेहतर गुणवत्ता और अधिक उत्पादन देती हैं। किसान साथियों, सही किस्म, सही समय और सही प्रबंधन अपनाकर आप सभी मक्का की खेती से बेहतर उत्पादन व अधिक मुनाफा ले सकते हैं। और अब समय है साथियों कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का, तो लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब जानते हैं मंडी भाव। लहसुन का भाव रहा 4,500 से 5,500 रुपये प्रति क्विंटल, अदरक 3,800 से 4,000 रुपये, टमाटर का भाव रहा 600 रुपये से 800 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 800 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ 2,735 रुपये और सरसों का दाम रहा 7,377 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये था किसान साथियों मंडी भाव। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल भी। बीते 24 घंटों में आगरा और उसके आसपास का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम ताप

मान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अनुमान है कि अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और हमें पता है कि अब हमारे सभी किसान साथी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम के दूसरे लोकगीत का, तो सुनते हैं शिव कुमार पराशर की आवाज़ में ये मधुर लोकगीत।

ओमाली से आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक। आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और अब वक्त है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजुबाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताएं साथियों, कैसा रहा आज का दिन? और आज के दिन क्या आपने कुछ नया और अलग किया? अब आप सोच रहे होंगे, हमेशा तो कार्यक्रम में मैं हालचाल पूछती हूँ, आज ये क्या पूछ रही हूँ और क्यों पूछ रही हूँ? भाई, ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज हम सभी के लिए बहुत खास दिन जो है, और हमें पता है कि आप कार्यक्रम सुनते सुनते इतना सब जान गए हैं कि आपको पता है कि आज कौन सा विशेष दिन है। जी हाँ साथियों, आप सही समझे, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्यों, आप और हम सभी तो सहयोगी हैं ना अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने की राह पर। भाई, पर्यावरण का ध्यान रखना, उसके लिए कुछ करना एक शुभ काम ही तो है। तो क्या आपने आज कोई पेड़ लगाया अपने नाम का या अपनी माता के नाम का? क्या कुछ पौधों को पानी दिया? क्या किसी को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया? या बहते नल को बंद किया? किसी कार्यक्रम में भाग लिया? या छोटे बच्चों को समझाया कि पानी बिजली बर्बाद नहीं करते, इससे धरती माता को दर्द होता है? वाकई साथियों, पेड़ों में जीवन होता है, फिर उन्हें उखाड़ फेंकना भी तो पेड़ों की हत्या करना हुआ ना, और इसकी सजा फिर हमें प्रकृति माँ ही देगी। तो साथियों, हम हर हर गंगे बोलते तो ज़रूर हैं और इस मंत्र का भी जाप करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। लेकिन ये मंत्र हमें क्या समझाता है, क्या सिखाता है? कभी कभी हम सब ये नहीं जान पाते। ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, ख़ास तौर पर अब, क्योंकि अब अति हो चुकी है और जब पानी सिर से ऊपर होने लगे तो उससे पहले संभल जाना चाहिए, वरना डूबना तय है। आप समझ रहे हैं ना, या पहेलियों और मुहावरों में ही उलझ गए हैं? साफ शब्दों में बता दें कि प्रकृति मैया को मना लो भैया, वरना उसकी नाराज़गी बढ़ती हुई लग रही है। धरती माँ को फूलों वाली हरी चुनरिया उड़ा दो, मैया सब पर प्रसन्न हो जाएगी। सच में साथियों, अपने दिल की कहूँ तो जब मैं पढ़ती थी ना, तो कवित्री महादेवी वर्मा की रचना गिल्लू पढ़ी, उसमें उन्होंने एक गिलहरी के बारे में बताया जो उनके घर में फुदक फुदक कर आती थी। उस समय कभी कभी लगता था कि ऐसी रचनाओं को पढ़ने का क्या फ़ायदा, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? लेकिन अब समझ में आता है, क्योंकि तब तो इतनी समझ थी नहीं।

कि ये कहानियाँ, ये काव्य रचनाएँ, ये आत्मकथाएँ पढ़ने से मन निर्मल हो जाता है, अपने आसपास के छोटे छोटे जीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, उनसे हम प्रेम करने लगते हैं। और साथियों, प्रेम का तो बस एक ही नियम है कि जिससे प्रेम करते हैं उसे कष्ट ना हो। चाहे हम काली काली कुकू करती बोलें, वो है डाली डाली फिरती, ऐसा पढ़कर सुनकर हमें कोयल को जानने और वाकई प्रकृति और हमारा जो अनोखा रिश्ता है ना, उसे समझने में मदद मिलती है। तो हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है, और साथियों, पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े जीवों, जलीय जीवों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पानी, हवा, मिट्टी, सभी का हमने ध्यान रखना है। और हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस प्रकृति से प्रेम करें, इसे सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सोचें, जागरूक बनें, तभी पर्यावरण दिवस मनाने की सफलता है। क्योंकि चहचहाती चिड़ियों, आसमान में उड़ते पक्षियों, आकाश छूते पेड़ों, जंगलों से आती शीतल हवा, कल कल करती नदियाँ हम सबको बहुत पसंद हैं। और ये वो बहुत अच्छे से समझ सकता है जो खुद मिट्टी से जुड़कर खुद अपने बाग को सजाता है।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: साथियों, पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में तो हमने बात करी, लेकिन जो लोग धरती से जुड़े होते हैं और अपने हर पौधे को, अपने बाग को खुद सींचते हैं, वो ही समझते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं उन्हें। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये एक दिन मनाने वाला नहीं, बल्कि ये तो साल भर मनाने वाला उत्सव है। और वैसे भी प्रकृति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे ही अनेक दिन मनाए जाते हैं, जैसे वेटलैंड डे, पर्यावरण संरक्षण दिवस, ऊर्जा संरक्षण दिवस, ओजोन दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस। तो चलिए आज इसी से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। तो बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और तब तक हम आपको सैर कराते हैं आगरा में ही बने हुए ताज नेचर वॉक की। भाई साथियों, आजकल वैसे भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और महंगाई के दौर में कहीं दूर जाना संभव नहीं हो पाता, तो आगरा और इसके आसपास रहने वाले इस खूबसूरत पार्क में जाकर आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ताजमहल से पैदल ही आप ताज नेचर वॉक जा सकते हैं। बस आपको टिकट लेकर अंदर जाना है और आपको अपनी पहचान के लिए कोई आईडी देनी होगी, और टिकट भी महंगा नहीं है। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक तरह के एडवेंचर जैसा महसूस कर सकते हैं। बस ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे साथ ही रहें, वरना वो रास्ता भटक सकते हैं। साथियों, यहाँ बहुत सारी हरियाली है और फूलों के भी पौधे हैं, झूले हैं, कहीं पहाड़ी तो कहीं पुल है, कहीं मैदान तो कहीं सीढ़ियाँ हैं, और काफ़ी आगे जाकर जंगल जैसा महसूस होता है। लेकिन वहाँ जाने में थोड़ा खतरा है, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर, नील गाय वगैरह भी हो सकती हैं, और सांप, खरगोश, बतख भी आपको दिखेंगे। इसके अलावा साथियों, यहाँ मुमताज पॉइंट और शाहजहाँ पॉइंट भी है, जहाँ से ताजमहल साफ दिखाई देता है और बहुत सुंदर नज़ारे हैं, तो आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक वॉच टावर भी है, जिस पर सीढ़ियों से चढ़कर आप ऊपर पहुँचेंगे तो दूर दूर तक देख सकते हैं। अगर आप जंगल की साइड जाएंगे तो वहाँ एक झील भी है। साथियों, वैसे ताज नेचर वॉक का निर्माण कार्य 1997 से ही शुरू हो गया था, लेकिन पर्यटकों और आम जनता के लिए इसे 2013-14 में ही शुरू किया गया, और इसे पर्यटकों को आगरा में रुकने के लिए, आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। और पर्यटक ही नहीं, आम जनता भी इसमें एक दिन बिताकर प्रकृति की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा आपको ज्ञान सागर का ये ज्ञान, हमें पत्र लिखकर बताइएगा। साथियों, अभी तो हम प्रकृति के उपहारों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें एक दिन के लिए भी इन चीज़ों से दूर रखा जाए तो जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है साथियों कि जो कुछ आपके पास है उसकी समय रहते कद्र कीजिए। ऐसे ही अगर हमारे श्रमिक साथी काम ना करें तो समाज का क्या हाल होगा? तो आप जानना चाहते हैं कि श्रमिकों की हड़ताल से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है? तो आइए इसी विषय पर विस्तृत जानकारी लेते हैं ज्ञानेंद्र कुमार रावत से।
1: किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां स्थापित उद्योग धंधों से प्राप्त उत्पादन पर निर्भर करती है। उद्योग धंधों में नियोक्ता द्वारा कर्मकारों को नियुक्त किया जाता है, तथा उद्योग धंधों के कुशल संचालन

तथा नियोजक नियोजक नियोजक कर्मकार के मध्य संबंधों की सीमाओं झगड़ों को निपटाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बनाया गया, जिसकी धारा एक में वर्णित है कि यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाएगा तथा इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष पर होगा तथा यह 1 अप्रैल 1947 से प्रभावी होगा। इसके पश्चात इसकी धाराओं में परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। मुख्यतः धारा 22 हड़ताल और तालाबंदी का निषेध करती है, जिसके द्वारा संविदा के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति जनोपयोगी सेवाओं में कार्यरत है हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो उसे विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी। नियोजक को हड़ताल पर जाने से 6 सप्ताह पूर्व एक सूचना देनी होगी तथा ऐसी सूचना देने के 14 दिवस के अंदर या हड़ताल के समाप्त होने के पहले या समझौते की कार्यवाही के निष्कर्ष के पश्चात ही हड़ताल कर सकेंगे। इसी प्रकार तालाबंदी के लिए नियोजक को अपने कर्मकार को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व एक नोटिस देना होगा तथा ऐसे नोटिस के 14 दिवस के अंदर अथवा तालाबंदी से पूर्व या समझौते की कार्रवाई के निष्कर्ष के 7 दिन पश्चात ही तालाबंदी कर सकते हैं। यदि हड़ताल या तालाबंदी पहले से है तो किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 23 में प्राविधान दिया गया है कि यदि कोई भी नियोजक एवं कर्मचारी समझौता की कार्रवाई के विचाराधीन रहते हुए हड़ताल एवं तालाबंदी करेगा वह अवैध होगी। श्रम न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्रवाई लंबित होने की दशा में अथवा निर्णय के बाद 2 माह की अवधि से पूर्व हड़ताल नहीं करेंगे। मध्यस्थता की कार्रवाई के दौरान हड़ताल और तालाबंदी एवं निष्कर्ष के 2 माह तक जब तक इसका प्रकाशन नहीं हो जाता हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर सकते हैं। धारा 24 विधि विरुद्ध हड़ताल और तालाबंदी के बारे में बताती है। धारा 22 अथवा धारा 23 के प्रावधानों के उल्लंघन में घोषित हड़ताल एवं तालाबंदी अवैध होगी। यदि हड़ताल या तालाबंदी पहले से चल रही है तो अवैध नहीं होगी। धारा 25 अवैध हड़ताल अथवा तालाबंदी के लिए आर्थिक सहायता करने को सभी लोगों को निषेधित करती है। धारा 25 से किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जहां 50 से कम व्यक्ति कार्य करते हैं वहां यह प्रावधान लागू नहीं होगा तथा जो व्यक्ति सामयिक कार्य करते हैं उन पर भी ये प्राविधान लागू नहीं होंगे। धारा 25 भी में लगातार सेवा को परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति लगातार सेवा में माना जाएगा यदि वह किसी हड़ताल या तालाबंदी या बीमारी की छुट्टी या अधिकृत छुट्टी से बाहर रहा है। धारा 25 से किसी कर्मकार को 1 वर्ष में 45 दिन से अधिक के अवकाश पर रहता है तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी कर्मकार के एवज में लगाया गया है और उसका नाम मस्टर रोल में है तो वह भी इस प्रावधान का लाभ नहीं ले सकेगा। धारा 25D बताती है कि प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मकारों का मस्टर रोल रखना अनिवार्य होगा। धारा 25C बताती है कि यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति की एवजी में कार्य करने के लिए मना करता है तो वह भी मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा। धारा 25F बताती है कि किसी कर्मचारी के छटनी का प्रावधान क्या है, जिसके द्वारा नियोजक कर्मचारी को 30 दिन का नोटिस देगा या 1 माह का अग्रिम वेतन देगा तथा नोटिस में हटाए जाने का कारण भी देगा। यदि नियोजक का स्थानांतरण किसी कारणवश होता है तो कर्मकार मुआवजे का अधिकारी होगा। धारा 25FF(1) प्रथम में दिया है कि यदि नियोजक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करता है

0: से कर्मकार को नोटिस व मुआवजा दोनों ही देने होंगे। धारा 25 जी बताती है कि किसी कर्मकार के छटनी का प्रावधान क्या है। धारा 25H बताती है कि छटनी शुदा कर्मचारी का पुनर्नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है। धारा 25L में परिभाषाएँ दी गई हैं, जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के तहत फैक्ट्री, खान और प्लांटेशन आदि आते हैं। धारा 26 अवैध हड़ताल या तालाबंदी के लिए 1 माह के कारावास व ₹50 जुर्माना की सज़ा का प्रावधान करती है। नियोजक के लिए भी 1 माह की सज़ा व ₹1,000 जुर्माना का प्रावधान करती है। धारा 27 बताती है कि अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए दुष्प्रेरण करने पर 6 माह की सज़ा या ₹1,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 28 अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए आर्थिक सहायता देने पर 6 माह की सज़ा या ₹1,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान करती है। धारा 29 अवार्ड या निर्णय के उल्लंघन पर 6 माह की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्राविधान करती है। यदि लगातार इस प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो ₹200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जाने का प्राविधान है। धारा 30 गोपनीय सूचना देने पर 6 माह की सज़ा और ₹1,000 जुर्माने का प्राविधान करती है। धारा 30A बिना सूचना दिए प्रतिष्ठान बंद किए जाने पर 6 माह की सज़ा तथा ₹5,000 का जुर्माना का प्रावधान करती है। धारा 31 विभिन्न प्रकार की घटनाओं के लिए सज़ा का प्रावधान करती है जो इस अधिनियम में नहीं दी गई हैं, मैं 6 माह की सज़ा और या ₹1,000 जुर्माना का प्रावधान करती है। धारा 32 प्रकीर्ण के नाम से दर्ज है जिसमें कंपनी द्वारा किए गए अपराध को बताया गया है।
1: हाँ तो साथियों, मिली ना आपको अच्छी जानकारी श्रमिकों की हड़ताल और कानूनी प्रावधान विषय पर, और आपको जानकारी दे रहे थे वार्ताकार ज्ञानेंद्र कुमार रावत।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: साथियों, एक और बात जिसने मुझे कल बहुत ही प्रभावित किया और उससे मुझे बहुत ही खुशी हुई, वो ये कि कल जब मैं बाजार जा रही थी तो वहाँ मुझे एक परिवार मिला जो बहुत सारे पौधे लेकर और कई चीज़ें खरीद रहा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बात की तो पता चला कि वो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस को पूरे परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। और तो और, जो पेड़ उन्होंने पिछले साल लगाए थे उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। सभी अपनी पसंद का पेड़ लगाते हैं। पता है, उन्होंने पेड़ों को नाम भी दे रखे हैं। हमें उनका ये विचार और आज का दिन मनाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा। हमने भी उनसे कार्यक्रम के बारे में पूछा और बताया कि वो कार्यक्रम को कैसे सुन सकते हैं और कैसे कार्यक्रम से जुड़े रह सकते हैं। उन्होंने भी वादा किया वो कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और पत्र भी ज़रूर लिखेंगे। हमने भी उनसे उनकी पसंद का गीत पूछा, उन्होंने बहुत खुश होकर बताया। तो इसीलिए आज की पाती में हमने उनसे की गई बातचीत को ही ले लिया। तो चलो उनकी पसंद का गीत सुनवाएं। उससे पहले बता दें उनका नाम, और नाम है सविता देवी, नंदीलाल, सुमेर, शीलू और शानू, और उन्होंने गीत पसंद किया है फिल्म प्यार झुकता नहीं का।

तो साथियों, अब आपको बता दें सेहत टिप्स। साथियों, कहा जाता है कि मुस्कुराता चेहरा सृष्टि का सुंदरतम फूल है, और मुस्कान को बनाए रखने के लिए दांतों और मसूड़ों का मजबूत होना जरूरी है। तो साथियों, काले तिल, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा और हर एक के घर में होते भी हैं ये तिल। काले तिल आप आधा चम्मच लेकर रात में आधा गिलास पानी में भिगो दीजिए, और इस पानी को छान कर मुँह में पानी भर कर इधर उधर घुमा कर 3-4 बार घुमाइए, फिर थूक दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, और ये क्रिया आप सप्ताह में 1 या 2 बार करेंगे तो आपको दांतों और मसूड़ों से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। और साथ ही हम तो यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ और खुश रहें, बस इसीलिए आपको सेहत टिप्स देते हैं कार्यक्रम में, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित ले लेते हैं और साथ

आपने अगर कार्यक्रम को ध्यान से सुना है तो जरा सोचिए हमने आज क्या छोड़ दिया भला। चलिए हम ही बता देते हैं कि हमने आज पूछे गए प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तो चलिए आपके मन का बोझ हल्का करते हैं और बताते हैं कि आज के प्रश्न का उत्तर है 22 अप्रैल और प्रश्न था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। और इसी के साथ कार्यक्रम मजदूर मंडल को यहीं संपन्न करने की अंजू बाला को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, प्रस्तुतकर्ता थे अंजू बाला। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था।

0: भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today. Addressing a public gathering on the occasion, Prime Minister Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the waste to wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Prime Minister is scheduled to visit Daman later today to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees. These projects include major healthcare and aviation infrastructure. He will also lay foundation stone for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. India's economy has maintained strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% as compared to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. Prime Minister Narendra Modi has said that it reflects the inherent strength of Indian economy, the success of reforms and the hard work of 140 crore Indians. In a social media post, Mr. Modi said, Government will leave no stone unturned to further ease of living, ease of doing business and increase opportunities for the youth. Union Home Minister Amit Shah has said, Prime Minister Narendra Modi is working with the goal of building a developed India by 2047. Addressing the Prahari Sammelan at the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh international border in Tripura today, the Home Minister emphasized that making the nation safe and secure is absolutely essential before achieving complete

0: development. He highlighted that it is equally crucial to keep the youth away from drug abuse and to thwart all attempts to damage the national economy through fake currency. Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today announced that natural gas has been discovered at the Srivijayapuram 3, about 15 kilometers off the east coast of the Andaman Islands. In a social media post, Mr. Puri said the discovery reinforces the vast energy potential of the Andaman Sea and marks another success in the ongoing exploration campaign in the basin. Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal arrived in New Delhi today on a three-day visit to India. He is visiting India at the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Ranjit Jaiswal said that Dr. Jaishankar will hold talks with his Nepalese counterpart tomorrow.
1: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
0: India today lodged a strong protest with Pakistan regarding the neighbouring country's plans to hold general elections to the so-called Gilgit-Baltistan Assembly in the Indian territories illegally and forcibly occupied by Pakistan. The elections are scheduled for 7th of this month. In hockey, India has defeated Pakistan 5-3 in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Kakamigara, Japan today to set up a title clash against host Japan. In a high-scoring contest, India held its nerve against its arch rival to seal its place in the final. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार. मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है. श्रोताओं, वक्त है विविधा कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर पीके गर्ग से वार्ता. वार्ता का विषय है पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व.
3: धरती के प्राणियों एवं वनस्पतियों को स्वस्थ व जीवित रहने के लिए हमारे पर्यावरण का स्वच्छ रहना अति आवश्यक है, किंतु मानव द्वारा स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रकृति का इस प्रकार से दोहन किया जा रहा है कि हमारा पर्यावरण दूषित हो गया है. और आज पर्यावरण प्रदूषण भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक गंभीर समस्या बन गई है. पर्यावरण प्रदूषण से एक ओर हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो दूसरी ओर इसके कारण अन्य जटिल समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं. पृथ्वी के वातावरण में 76% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 3% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है. इन गैसों का पृथ्वी पर समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का आनुपातिक संतुलन बिगड़ जाता है तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं. प्रदूषण के कई कारण हैं. उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ जल एवं भूमि प्रदूषण का कारक बनते हैं. साथ ही इनके कारण वातावरण में विषैली गैसों के मिलने से वायु भी प्रदूषित होती है. मनुष्य ने अपने लाभ के लिए जंगलों की तेजी से कटाई की है. जंगल के पेड़ प्राकृतिक रूप से प्रदूषण नियंत्रण का काम करते हैं. पेड़ों के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण भी वातावरण में विषैली गैसें जमा होती रहती हैं और उनका शोधन नहीं हो पाता है. मनुष्य सामान को ढोने के लिए पॉलीथीनों का प्रयोग करता है. प्रयोग के बाद इन पॉलीथीनों को यों ही फेंक दिया जाता है. ये पॉलीथीन नालियों को अवरुद्ध कर देती हैं व भूमि से मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को भी कम कर देती हैं. समय के साथ विकास के पथ पर मनुष्य की मशीनों पर निर्भरता भी बढ़ी है. इन मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है. बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में वृद्धि हुई है. उद्योगों के रासायनिक अवशिष्टों को नदियों में बहा दिया जाता है. इस प्रकार जल प्रदूषित हो जाता है. परमाणु शक्ति के उत्पादन के क्रम में परमाणु विखंडन के कारण भी पर्यावरण

0: प्रदूषण काफी बढ़ता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मनुष्य का शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता जा रहा है। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तभी संभव है जब हम इनका ठीक प्रकार से उपयोग करें। परिवहन, इमारत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के उपाय की नित नई खोजों की हमें जानकारी रखनी होगी। मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर उसकी निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ने पाए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण के बिना मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए देसी तकनीकों से बने उत्पादों का उत्पादन व उपयोग जरूरी है। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक व कृषि वानिकी के माध्यम से अधिक पेड़ लगाए जाने की भी आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। जरूरत है कि हम सब इस सोच का हिस्सा बने और अन्य को जागरूक करें। उसके बाद ये जागरूकता विश्वभर में फैल जाएगी। भौतिक सुखों की चाहत में हमने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लिया है, जिसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में भयंकर होगा। आज ही से हम प्रण लें कि एक पौधा लगाकर उसको बड़ा करने की भी जिम्मेदारी लेंगे। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज या कपड़े का कैरी बैग का उपयोग करेंगे। कूड़ा करकट इकट्ठा कर नियत स्थान पर ही डालेंगे। पानी का संरक्षण करेंगे, बरसात के पानी का संचयन करेंगे। नाली में अवशिष्ट पदार्थ, केमिकल आदि को प्रवाहित नहीं करेंगे। मिलावट युक्त खाद्य पदार्थों को खाने से बचेंगे और इसे रोकने के लिए प्रशासन की मदद लेंगे। एक जागरूक नागरिक बन शहर, राज्य व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर पर्यावरण का संरक्षण कर विकास में सहयोग करेंगे। अंत में मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के एक कथन का उल्लेख करना चाहूँगा कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेले जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे डॉक्टर PK गर्ग से वार्ता। वार्ता का विषय था पर्यावरण संरक्षण हम सबका दायित्व। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का एहसास कराना है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। श्रोताओं, शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, हरियाली और जैव विविधता हमें स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण हमारा पर्यावरण निरंतर संकट का सामना कर रहा है। इसी के साथ ये कार्यक्रम विविधा यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: माँ सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
5: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ मां के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
4: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच एमओयू का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक

0: राष्ट्रीय वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायो प्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जब हम गन्ने से बायो प्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायो प्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही फायदा, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
0: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहाताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्र भूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहाताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
2: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
3: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि जो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद

0: पर स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री

0: करते रहें।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायो प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हो चुके हैं। अब वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा से आज के प्रोग्राम का आगाज। सभी मेरे प्रिय श्रोताओं और साथियों को आपके रेडियो होस्ट यानी कि मैं सागर जग्गी का प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज 5 जून है और श्रोताओं, आज पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है। ये दिन हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराता है। स्वच्छ वायु, निर्मल जल, हरे भरे जंगल और जैव विविधता केवल हमारी आवश्यकताएं ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी अमूल्य धरोहर भी है। भारत की संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। श्रोता, हमारी नदियां, पर्वत, वृक्ष और वन्य जीव हमारी सभ्यता और संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। आज जब पर्यावरणीय चुनौतियां विश्व के सामने गंभीर रूप धारण कर रही है, तब पर्यावरण संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बन गया है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालने के लिए आज के कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश में हम लेकर आए एक विशेष भेंट वार्ता, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुविख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता से अनिंद्र सिंह की बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए सुनते हैं विशेष भेंट वार्ता और समझते हैं कि अपनी धरती, अपने पर्यावरण और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं। प्रस्तुत है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह विशेष भेंट वार्ता।
4: श्रोताओं नमस्कार। हम समय समय पर आपकी मुलाकात कुछ ऐसे विद्वजनों से या कहें कि विशिष्ट व्यक्तियों से कराने का प्रयास करते हैं अपने कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से, जो हमारी जिंदगी में, हमारे समाज के लिए, हमारे एक पूरे समूचे राष्ट्र के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं, पर्दे के पीछे एक ऐसी भूमि

0: भूमिका निभाते हैं जिसका शायद हमें अपनी सामान्य दिनचर्या में एहसास नहीं होता। हम जिस सृष्टि का हिस्सा हैं उस सृष्टि को संरक्षित करना ये हम सब का दायित्व तो होता है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये काम करते हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में एक ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति जुड़े हैं हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर शरद गुप्ता जी। पर्यावरण हम सब की चिंता का विषय है और पर्यावरण के लिए जो डॉक्टर साहब का काम है उससे शायद हम में से हर आगरावासी वाकिफ होगा, और आगरावासी ही क्यों, मुझे लगता है कि अब उस काम की धमक या चमक बहुत दूर दूर तक दिखाई और सुनाई देती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। पर्यावरण की बातें करना और सिर्फ बातें करना ये हम अरसे से होता हुआ देखते आए हैं, लेकिन पर्यावरण है क्या, उसका क्या महत्व है हमारे लिए, एक समूचे सृष्टि के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं। आज अगर मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँ कि पर्यावरण को वो किस तरह से समझें, अपने आसपास की जो वातावरण है या अपने आसपास का जो आवरण है जिसको हम पर्यावरण का नाम देते हैं, उस चीज को वो किस रूप में देखें, किस रूप में समझें।
1: मैं सर्वप्रथम तो आगरा आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने पर्यावरण के संबंध में मेरे को यहाँ आमंत्रित किया है। चूंकि पर्यावरण वैसे तो एक बड़ा नीरस विषय है और हर एक को इसका समझ में भी नहीं आता कि सिर्फ ये तो मानते हैं कि हाँ पर्यावरण है और पेड़ लगा दिए तो पर्यावरण हो गया। चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं अक्सर ये देखता था कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको अक्सर जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं निमोनिया हो जाता है। घर वाले आते हैं कि साहब पसली चल रही है, इसको बुखार आ गया, खांसी हो गई। तो हमारा सिर्फ इतना नहीं कि हमने दो दवाई लिख दी और सही हो गया। जब हम इसके कारण में गए तो हमें ये देखा कि जो सबसे बड़ा इसका एक रीजन है वो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है
0: जी।
1: और वायु प्रदूषण के जो कारक हैं वो हमारे ही द्वारा पैदा किए गए हैं। अगर वायु प्रदूषण किसी तरह से कम कर दिया जाए, उस पर अंकुश लगा दिया जाए, तो शायद ये जो बच्चे रोज बीमार पड़ जाते हैं और घर घर हमको उनको कहता है एक नेबुलाइजर मशीन ले लो,
0: घरों में ले लो,
1: जो पहले कभी सोचते भी नहीं थे
0: जी जी,
1: वो मशीन उसको दिला देते हैं कि भाई जब सांस फूले तो घर में किसी बड़े बूढ़े किसी को भी तो नेबुलाइज कर देना, क्योंकि हमारे को पहले पता ही नहीं था कि हम कितने एयर क्वालिटी हमारे लिए आवश्यक है, बेहतर है। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें हमने देखा कि भाई वहां तो वायु प्रदूषण जो है एयर AQI 50 से कम रहता है, और हम लोग तो 150, 200, 250 वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है वो हमारे भारतवर्ष में ही है, और उनका AQI इतना ज्यादा होता है कि हमारे को इतनी सारी सांस संबंधी रोग हो जाते हैं, कैंसर हो रहा है फेफड़े का, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, हम परिचित नहीं, क्योंकि हमने तो सांस ले ली, हमको पता ही नहीं कि हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारे लिए कितनी घातक है और किस स्तर की सांस हमारे लिए होनी चाहिए। तो जब मैंने इसमें पढ़ा, देखा, सब समझा, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो हमको कदम उठाना चाहिए। हमारा सिर्फ फर्ज यही नहीं है, हमारे यहाँ एक कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो वैक्सीनेशन है वो इसी आधार पे है। तो अगर हमारे को अच्छी हवा में हमारे बच्चे सांस लेंगे तो वो हो सकता है कि बीमार कम
0: पड़ेंगे।
1: तो उसके जब हमने कारक जानने चाहे तो बहुत सारे उसके रीजंस हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा तो डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है। हमारे यहाँ जो एवरेज वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट कवरेज है वो 30-35% होना चाहिए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा आगरा जैसे शहर में मात्र 3% का जो है कवरेज है,
0: केवल 3%
1: है। इतनी तेजी से हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है विकास भी होना चाहिए, सड़क भी बननी चाहिए,
0: लेकिन विकास किस कीमत पे हो ये भी हमें तय करना होगा।
1: एक आम आदमी की जान की कीमत पे नहीं हो जिसका उसको अंदाज ही नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ पेड़ लगा देना ही वह नहीं है कि साहब आपने कम कर दिया। क्योंकि आप भी बताइए, आपने एक 50-100 साल पुराना एक पेड़ जो हजारों टन ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहा है, बहुत सारे हवा में ऐसे तत्व कारक है उनका सोख करके वो कम करता है,
0: और आपको एक बेहतर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है।
1: आपने एक पेड़ काट दिया और सरकार ने कहा कि नहीं,

0: ये हमने तो एक पेड़ काट दिया, उसके बदले में हम 10 लगा देंगे। एक 50 साल के आदमी को आप क्या 6 6 महीने के 10 बच्चों से कंपनसेट कर सकते हैं? वो सारी चीज उसका वो कंपनसेट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप 10 पेड़ लगाएंगे भी तो उसमें से 2 या 3 सरवाइव करेंगे, उनको उतना बड़ा होने में एक बहुत लंबा समय लगेगा, और वो समय वो पीरियड इतना खराब होगा कि वो हमारे लिए बड़ा सारा टॉक्सिक एनवायरमेंट देगा। तो इस सब को लेकर के मेरे कई बार बहुत सारे प्रयास किए, क्योंकि हमारे आगरा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको हम
1: जी
0: कीठा मसूर सरोवर के नाम से जानते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: उसका 400 हेक्टेयर का एरिया है, वैसे तो एरिया उसका करीब 1600 हेक्टेयर है, और उसका जो है किसी वजह से 400 कर दिया गया। मैंने बड़ा प्रयास किया कि नहीं साहब, उसका एरिया उतना ही कर दिया जाए जितना उसका है, लेकिन किसी भी स्तर पर जब मेरे को सफलता नहीं मिली तो अल्टीमेटली मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अदालत ये सारी पिटीशन डाली, और मैं तहे दिल से सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने जो मैंने आम जनों की लोगों की बात सामने रखी उसको उन्होंने समझा, उन्होंने कमेटीज बनाई, इंस्पेक्शंस कराए, देखा, उससे उसका एरिया उन्होंने 800 हेक्टेयर कर दिया। क्योंकि जो इसमें एक चीज कहूंगा कि जो एक पेड़ है ना, वो एक पेड़ नहीं है, वो सैकड़ों पंछियों का आसरा है, घर है, फल भी देता है, फूल भी देता है, रहने का आवास भी देता है, उस पर सैकड़ों कीड़े मकोड़े असंख्य रहते हैं। तो एक पेड़ हजारों
1: हजारों
0: लोगों की
1: सृष्टि
0: जिंदगी का
1: जिंदगियां लेके
0: जिंदगियों का
1: चलता है,
0: आसरा है।
1: आसरा है।
0: आपके हमारे लिए वो एक पेड़ हो सकता है, लेकिन हम उन मूक पक्षियों का घर छीन लेते हैं एक पेड़ काट करके।
1: उन जीव जंतुओं का क्या जो उसी के सहारे पले बढ़े और अपनी पूरी कई कई पीढ़ियां उस पे उनकी जो है आश्रित रही हैं।
0: बड़ा कष्ट होता है। आप देखिए कि आप एक पेड़ काट दें तो कितने पंछी कितना
1: बेघर हो जाते
0: रोते हैं,
1: हैं।
0: चिल्लाते हैं। आपने कई बार देखे होंगे वीडियोस कि साहब देखिए एक पेड़ काट दिया, सैकड़ों पंछी हवा में उड़ रहे हैं, मोर रो रहे हैं कि साहब उनका पेड़ काट दिया, जो आपने हैदराबाद का एक सुना
1: जी
0: होगा
1: जी
0: ऑडियो
1: जी
0: वीडियो। तो
1: ये वास्तव में मतलब जब हम इसको गहराई से सोचते हैं, कोई भी व्यक्ति जब इसको गहराई से सोचेगा तो शायद उस पर्यावरण जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मकसद और उसका मतलब जो है वो शायद जान पाएगा। पर्यावरण कहने में हो सकता है बहुत छोटा सा शब्द लग रहा हो, लेकिन आपने जिस तरह से उसको समझा है या अभी हमारे श्रोताओं के साथ समझाने का जो एक प्रयास किया है, तो जैसे आपने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हमारे भारतीय जो हमारी संस्कृति है या हमारी भारतीय जो परंपराएं हैं उसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, वैदिक इतिहास की बात करें, प्रकृति का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण, उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास आपको बहुत सारे माध्यमों के जरिए हमारे में इनकलकेट कर दिए गए, हमारे एक जीवन जीने के तरीकों में वो समाहित कर दिए गए।
0: बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे पूर्वजों ने इस संबंध में बहुत ज्ञानवान थे, उन्होंने रोकने के लिए कई सारे तरीके अपनाए। जैसे कहा कि नहीं जी, पीपल का पेड़ नहीं काटेंगे, बरगद का नहीं काटेंगे, आप इसके काटने से, हमको भले ही डराया गया कि ये पाप है, पेड़ काटना पाप है, कि आप इस पेड़ को नहीं काटें, क्योंकि उनको देखिए पहले से मालूम था कि ये पेड़ रात को भी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, तो उनको पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि नहीं जी, एक चींटी को मारना भी पाप, उन्होंने कहा कि चींटी मत मारिए, क्योंकि वो एक हमारे इकोसिस्टम का पार्ट
1: हिस्सा
0: है
1: है,
0: और हर एक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल
1: रोल
0: है।
1: है।
0: अभी आपने कुछ वर्ष पूर्व पढ़ा होगा कि साहब नींबू नहीं पैदावार हुई, नींबू बड़ा महंगा हो गया। क्या हुआ कि हमारे जो राजस्थान साइड से हमारे यहाँ जो आते हैं, जो सिट्रस फ्रूट आते हैं, तो उसका जो पॉलिनेशन है वो तितलियां करती हैं, और हमारे यहाँ बहुत हैवी क्वांटिटी में हमारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड
1: पेस्टिसाइड्स
0: का
1: यूज हो रहे हैं
0: यूज
1: आजकल
0: हुआ,
1: खेती
0: तो
1: में,
0: उससे मर गई, और मर गई तो पॉलिनेशन
1: पॉलिनेशन
0: नहीं
1: नहीं
0: हुआ,
1: हुआ।
0: पॉलिनेशन नहीं हुआ तो पैदावार नहीं हुई। तो मैं आपको इसका रोल बता रहा हूँ कि हम लोग तो तितली देखते कि रंग बिरंगी है, उसको खूबसूरती से देखते, लेकिन उसका एनवायरमेंट पे कितना बड़ा रोल है वो हमको भी देखना चाहिए। तो हर कीट पतंगे का एक रोल है, वो पॉलिनेशन करते हैं, आप ये देखिए, एक चिड़िया अगर किसी फल को भी खाती है तो वो अपना जो एक्सक्रीटा है उसका उत्सर्जन करती है, तो उससे पेड़ उगते हैं। तो वो हमारा एक इकोसिस्टम है, हम उसको डैमेज बराबर कर रहे हैं, उसका महत्व समझना पड़ेगा। उसको भी जीवन पर रहने का उतना ही हक है जितना हमारा है।
1: जितना इस इंसान का है, और हम शायद इस चीज को बिल्कुल धता बता के, और आजकल का जो शहरीकरण है, आजकल का जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, विकास है, आजकल तकनीकी के आने से हम बहुत सारे परिवर्तन

0: अपने इर्द गिर्द होते हुए महसूस तो करते हैं, लेकिन उनके जो आने वाले समय में प्रभाव होंगे शायद उनकी कल्पना भी नहीं कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहते हैं कि प्रकृति ने हमको इतनी नियामत दी, उसको हमें सजा के संवार के रखना हमारा कर्तव्य है, हर आम आदमी का कर्तव्य है। हमारे यहाँ को, जैसे ही मैंने कहा कि हर चीज को शायद धर्म से जोड़ा गया, धर्म से इसलिए जोड़ा कि शायद धर्म के नाम कुछ उसको बचाने का काम करे। हमारे यहाँ नदियां हैं, उनको माँ कहा गया, यमुना मैया, गंगा माँ, माँ का दर्जा दिया गया कि हम उनको बिगाड़े नहीं। लेकिन हमने क्या किया कि अपनी फैक्ट्री लगाई और उसका जो उत्सर्जन हुआ उसको एक नाली में डाल करके उसको छोड़ दिया। हमारे यहाँ जितना मलमूत्र का उत्सर्जन होता है, फैक्ट्रीज का इतना होता है, उसके लिए बजाय हम एसटीपी ईटीपी प्लांट लगाते, उसका रिसाइकिल करते, यूज करते, हमने ले जा करके नाले में
0: नाले
1: ले गया
0: सीधे जो
1: और
0: है
1: उनको,
0: नदियों में।
1: और ये हुआ कि नाले के धीमे धीमे उसमें इतनी गाद जमा होती गई कि नदियां खत्म हो गई। उसका उदाहरण आप देखिए, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, बरसों से उसकी ऊपर कहानियां हैं कि कैसे घाट बने और क्या बना कि उसे नदियां पार करें, पूरे पूरे शहर सभ्यता बनी। आप देखिए जैसे यमुना नदी है, दिल्ली भी बसा हुआ है, मथुरा है, आगरा है, प्रयागराज तक तमाम शहर उसके किनारे
0: किनारे पे
1: बसे।
0: बस
1: और आज की स्थिति यह है कि दिल्ली, आगरा, मथुरा, हर शहर के लिए पानी 100-100, 200-200 किलोमीटर से गंगा से लाया जा रहा है। तो भैया गंगा कब तक जिंदा रहेंगी? गंगा को भी हम वही बेहाल कर
0: हसर
1: रहे हैं
0: कर
1: जो
0: रहे
1: हमने
0: हैं जो
1: किया,
0: यमुना का कर दिया।
1: यमुना कर दिया। यमुना आगरा में मात्र एक आपको नाले का के रूप में दिखती है, बड़ा खराब लग रहा है मेरे को ये शब्द प्रयोग करने में, लेकिन वास्तव में वो नाले का हो जाता है। गर्मियां आती हैं हमारे शहर में, आदमी पानी को तरसता है, एक एक टैंकर पानी उसके के लिए सुबह से शाम तक घर के दो लोग तो इसी व्यवस्था में लग जाते हैं कि उसको पानी मिल जाए एक बाल्टी, तो पानी नहीं मिलता, लट चलते हैं, सिर फूटते हैं, गांव गांव जो है कि पानी के पीछे झगड़े होते हैं। आप ही देखिए कि पानी की हमारी कितना महत्व है और उसको हमने खुद ही अपने हाथ से खत्म करते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको ध्यान तो देना पड़ेगा।
0: सरकार के प्रयास बहुत सारे होते हैं, सरकारी स्तर पे बहुत सारी योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन उन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि ये इतना बड़ा जो अंतर है उसको कैसे पाटा जाए?
1: देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जो है इसके लिए हमको प्रयास करने चाहिए। हमारे को अब सिर्फ अपना निजी हित नहीं रखने चाहिए, हमेशा हम निजी हित आड़े आते हैं और कहते हैं कि मेरे करने से क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैंने अपनी फैक्ट्री का ले आ करके उसमें डाल दिया, या मेरे आगरा कोई देखते हैं हम कहते हैं जी मैंने तो चमड़े की कतरन ली और डाल दी नाले में और नदी में डाल दी, तो मेरे से क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी तो एक फैक्ट्री है। तो हर आदमी अगर ऐसे सोचता है तो हजारों फैक्ट्रियों वालों ने ये करना चालू कर दिया और हमारे यहाँ ये सब खत्म हो गई। इसके लिए भी मेरे को फिर से पहल करनी पड़ी और मेरे को फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, और न्यायालय में जाकर के हमने कहा कि जी साहब ये नदी है, इसका भी एक घर होता है, इसका भी अपना एक एरिया है, आप ये मत सोचिए कि एक पतली सी धारा जा रही है कि ये है, इसका अपना स्वरूप होता है,
0: प्रकृति ने वो एक सुनिश्चित उसको एक रोल दिया
1: रोल
0: है,
1: दिया है,
0: उसको एक स्थान दिया
1: उसका
0: है।
1: कैचमेंट एरिया है,
0: बिल्कुल
1: उसका कैचमेंट एरिया है कि पानी बारिश में आएगा वो बह करके उसमें कैसे पहुंचेगा। अब आपने उसमें अवरोध पैदा कर दिए, उसका कैचमेंट एरिया खत्म कर दिया, तो एक फ्लड प्लेन जोन कहलाता है उसका, नदी का। मैंने माननीय जो हरित न्यायालय एनजीटी है उसमें इस संबंध में एक याचिका दायर की और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरी बात को माननीय न्यायाधीशों ने और जो वहां टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात को समझा, और यमुना का उन्होंने असगरपुर, जहां यमुना उत्तर प्रदेश में एंटर होती है और प्रयागराज तक का करीब 700 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, उसका फ्लड प्लेन जोन इसरो और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का 100 साल का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया और डाटा इकट्ठा करके फ्लड प्लेन जोन उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ और उस पर अब मुड्डियां भी लग रही हैं आजकल। तो फ्लड प्लेन जोन अगर बन जाएगा कि भाई ये नदी है, ये इसका एरिया है, ये इसका घर है, भाई इसमें आप कुछ नहीं करें, इसमें आप ये नहीं, आपने अट्टालिका खड़ी कर दी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी और अपना सीवर ले जाकर के उसमें छोड़ दिया, आपने उसमें फैक्ट्री लगा दी, तो अगर वो उसका फ्लड प्लेन जोन बचा रहेगा तो फ्लड प्लेन जोन बचे रहने से नदी
0: तो आज
1: सदा
0: नहीं तो
1: नीरा
0: कल,
1: रहेगी,
0: हाँ आज नहीं तो कल सदा नीरा रहेगी।
1: सदा
0: ये
1: नीरा
0: बिल्कुल
1: रहेगी।
0: ठीक कहा
1: तो
0: आपने।
1: हम जो है कहते हैं ना आचमन जल का, तो वो दिन आएगा अगर हम सब लोग प्रयास करें, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ असंभव नहीं, कि चीज खराब हो गई, अगर आदमी बीमार पड़ गया तो उसका इलाज अगर हम कर दें तो सही होता है, तो उसका भी हम इलाज कर रहे हैं, इलाज करेंगे सही होगा, उसका आचमन योग्य हम जल करेंगे। हम इसमें बहुत और भी आगे प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यमुना का जो वो है वो अपना पुराना स्वरूप
0: स्वरूप जो है वापस
1: वापस
0: लेके आ पाए।
1: लेके आ सके।
0: अच्छा सर, जो आजकल की एक विकास यात्रा है जिसको हम कहें कि भारत, हम देखते हैं कि सरकार ये कहती है कि हम विकसित राष्ट्र बन रहे हैं और

0: 2000 सैंतालीस तक हम विकसित भारत की परिकल्पना जो है उसको साकार करना चाहते हैं। लेकिन इस यात्रा में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उस विकास यात्रा में जो बदलाव होंगे तकनीकी तौर पे तो होंगे ही, लेकिन डेमोग्राफी भी चेंज होती है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उस विकसित भारत की यात्रा में। आपको क्या लगता है कि ये जो पर्यावरण है, हमारा इकोसिस्टम है, हमारी इकोलॉजी है, हमारे जो एक नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर जो हमारा प्रकृति ने नवाजा है हमारे देश को, उसके स्वरूप को कम से कम बिगाड़ते हुए क्या ये विकसित भारत की परिकल्पना हम साकार कर पाने की दिशा में सही रास्ते पर अग्रसर हैं?
1: देखिए, आपने बड़ा ज्वलंत समस्या का ये सवाल उठाया है। ये वास्तव में हम लोग बड़े इस चीज से चिंतित हैं। हम ये नहीं कहते कि साहब विकास नहीं हो, विकास भी हो, लेकिन विकास ऐसा नहीं हो जो पर्यावरण के उस पर रख के विनाश कर दे। पर्यावरण भी रहे और विकास भी हो, दोनों का चोली दामन का साथ होना चाहिए। आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं, वास्तव में गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाती है कि नहीं साहब ये आपका प्रोटोकॉल है, ये SOP है, आपको ये शर्तें पूरी करनी है, तब आप इसका पालन करते हुए तब आप ये इंडस्ट्री लगाएंगे। उसके लिए एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसीज हैं, वो इनका असेसमेंट करते हैं कि साहब इसका एनवायरनमेंट पे क्या
0: किस हद तक प्रभाव
1: पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो जो इंडस्ट्री लगे, तो हमारा ये कहना है कि जो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसीज हैं वो हमारे यहाँ के इकोलॉजी का और जो पर्यावरण का है उसको उसमें इस तरह से समाहित करें कि हमारा भी हित, आम जनता का हित रहे।
0: आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा,
1: क्योंकि हमेशा क्या होता है इसमें देखा जाता है कि जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उनका हित सर्वोपरि हो जाता है और ये छोटी चीज जिसको मानते हैं वो गौण, उसको वो दरकिनार कर देते हैं। अब मैं आपको हाल का ही उदाहरण दे दूं
0: जी,
1: कि आप ये देखिए कि अब हमारे देश में जैसे अभी कोविड हुआ था तब हमारे देश को चिप और सेमीकंडक्टर्स की बड़ी भारी कमी महसूस हुई। मैं अभी आपके आकाशवाणी में हूँ तो आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हर चीज में चिप्स और कंडक्टर्स और सब आए हैं। मैं अपनी कार से भी आया हूँ तो कार में भी सेमी कंडक्टर चिप्स लगे हुए हैं, इसकी डेफिनेटली बहुत जरूरत है। लेकिन जब मैंने उसका आकलन किया, पढ़ा और देखा, तो उसमें एक प्लांट में चिपका कर लगता है तो वो 160,000 लोगों की शहरी जनसंख्या के बराबर के पानी का कंजम्पशन करता है
0: एक प्लांट।
1: हमारे करीब 6 प्लांट लगने जा रहे हैं
0: और तो ये शुरुआत है अभी, तो
1: अभी तो शुरुआत है, उनका एक्सपेंशन भी होगा, फर्दर और भी आएंगे। तो अगर क्योंकि उसमें अल्ट्रा प्योर वाटर का यूज होता है सिलिकॉन चिप्स के बनाने में, क्योंकि बहुत गर्म होती है जो उसकी बनाने की प्रक्रिया है, उसमें 200 लीटर से करीब 1 लीटर अल्ट्रा प्योर वाटर तैयार हो पाता है और वो जो पानी होता है उससे इंस्क्रिप्शन होता है चिप्स के ऊपर। तो हमारा ये कहना है कि ये ऐसे क्षेत्रों में लगाए जाए जहां पानी सरप्लस हो, क्योंकि हमने देखा कि कुछ ऐसे एरिया हैं जो डार्क जोन है, क्रिटिकल एरिया है, जहां हमारे ग्राउंड वाटर नहीं है और आसपास बड़ी शहरी ऐसी जनसंख्या है जहां पर पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत रहती है, और अगर वो पानी वहां डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो हमारे आम जनता के लिए पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उनको स्टडी करके क्या ऐसी जगह पे नहीं लगाया जाना चाहिए जहां बहुत पानी हमारा सरप्लस है। जो प्लांट लगा रहे हैं तो उसके उसमें इकोनॉमी का भी ठीक है ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे यहाँ सी कोस्ट है, कोस्टल एरियाज है, वहां पानी है समुद्र का, उसका डिसेलिनेशन करिए, उस पानी का आप यूज करके उस प्लांट को लगाइएगा।
0: और ये तो केवल एक एस्पेक्ट है जहां पानी की बात हो रही है। एक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है, AI का युग आ रहा है, बड़े बड़े डेटा सेंटर स्थापित करने की बातें हो रही हैं, ह्यूज काइंड ऑफ पावर कंजम्पशन इज रिक्वायर्ड। बड़े बड़े जो है डेटा सेंटर्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी जो संयंत्र हैं बिजली के, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोसिस्टम को इम्पेक्ट करने वाला है।
1: डेफिनेटली आपने बड़ा सही ज्वलंत सवाल उठाया है कि आजकल AI का समय आ रहा है और AI भी डाटा पे काम करता है, वो अपने आप तो नहीं करता, जो डाटा फीड है उसको वो सेलेक्ट करके वो आपको देगा। AI हमारे आगे आने वाले समय की जरूरत है, लेकिन वो हमारे इकोसिस्टम को, पर्यावरण को कैसे प्रभावित करेगा ये भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि जो डाटा सेंटर

0: आ रहे हैं, हमारे को अपने डेवलप करने हैं देश के लिए, वो गीगावाट्स में लग रहे हैं उनकी कैपेसिटी हम जो जीबी और ये सब पढ़ते थे कि उस सब में नहीं है, उनकी गीगावाट्स में उनमें बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी पावर सप्लाई की जरूरत है। जो डाटा सेंटर्स हैं उनको कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए,
1: बिल्कुल
0: और उसमें इतनी हीट जनरेट होती है कि उसकी कूलिंग की भी जरूरत है। तो एक तरफ तो हमारे को बिजली चाहिए,
1: और
0: और
1: एक
0: बिजली के
1: तरफ
0: अलावा फिर उसको हमको ठंडा करना है, तो जो हमारे बैटरीज हैं उसमें केमिकल्स यूज होंगे, लिथियम यूज होगा, तमाम तरह के जो यूज होंगी, तो हमारी एक उसमें दरकार है कि जो एनर्जी यूज हो वो ग्रीन एनर्जी यूज हो, क्योंकि अभी जैसे हमारे यहाँ हाइड्रोजन फ्यूल बनना है, तो हमारे एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी आई कि सब ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल है। जब मैंने पढ़ा, समझा, देखा, तो उसमें ये पाया कि जो एनर्जी है, जो बिजली है, वो ट्रांसमिट जो की जा रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उससे हाइड्रोजन फ्यूल बनना है, तो दैट इज टोटली ग्रीन
1: ग्रीन
0: ग्रीन फ्यूल। तो ऐसे ही हमारे डाटा सेंटर्स जो है ग्रीन सेंटर्स होने चाहिए, उनको जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो उनके लिए ग्रीन एनर्जी आए, जो बिजली का उत्पादन हो, चाहे वो विंड टर्बाइन से हो, चाहे सोलर से हो, उससे हो, प्लस उसके जो कूलिंग होनी है उसके लिए बहुत सारे जो फ्लोराइड गैसेस होती हैं वो यूज होनी है, एग्जैक्ट नाम नहीं होता पर फ्लोरिन गैसेस होती हैं, तो जो एयर कंडीशनर्स में यूज होती हैं वो हमारी ओजोन लेयर को भी
1: प्रभावित करती
0: प्रभावित
1: हैं।
0: करती हैं।
1: हाँ,
0: तो हमारे को ये देखना है कि जो हीट एक्सचेंजर जो नई पद्धति है,
1: सीएफसी जो हम लोग,
0: सीएफसी है, कार्बन फ्लोरो कार्बन है
1: जी,
0: तो है, जो हीट एक्सचेंजर्स है, तो वो हीट एक्सचेंज करके हमारे इन्वायरमेंट को तो गर्म करेंगे, एक चीज ठंडी कर रहे हैं लेकिन उसको ठंडा करने के लिए जो गर्मी पैदा हो रही है,
1: वो तो
0: तो उसके
1: हमारे
0: लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने पढ़ा कि चाइना ने तो उसको समुद्र के अंदर लगा दिया कूलिंग करने के लिए, तो या तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, फिर मैं कहूंगा उसको कोस्टल एरियाज में प्रेफरेबली लगाया जाए, कोस्टल एरियाज में हमारे यहाँ विंड टर्बाइन भी मिल जाएगी, विंड स्पीड हमारे यहाँ अच्छी रहती है, करीब 25-30 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड उनको चाहिए होती है वो विंड
1: वाटर
0: टर्बाइन
1: भी प्लेंटी अवेलेबल है,
0: से,
1: उसको
0: वाटर
1: भी
0: भी है,
1: सेलेनेशन
0: सोलर
1: की,
0: भी वहां पे बहुत अच्छा है,
1: जी
0: साल में 365 दिन में से 300 दिन से ज्यादा सोलर एक्सपोजर रहता है, तो हमारे को उसको ग्रीन स्टेशंस में कन्वर्ट कर देना चाहिए एआई सेंटर्स को, क्योंकि एक डाटा सेंटर का 10,000 लोगों को रोजगार देने जा रहा है, लेकिन रोजगार
1: अपनी
0: क्या
1: जगह है।
0: एनवायरमेंट की कीमत पे, एक आम आदमी के ऐसे उसकी कीमत पे जो उसको पता नहीं कि देर सवेर उसके जीवन शैली पे कितना प्रभाव छोड़ेगा, आगे आने वाली जनरेशन पे क्या प्रभाव करेगा, इसका भी हमको अध्ययन करना है। ये नहीं कि साहब उस कंट्री ने कर लिया, उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस दूसरी हैं,
1: बिल्कुल,
0: हमारे यहाँ
1: जो
0: की
1: डेमोग्राफी है
0: है
1: उसको देख के हमें
0: वो
1: डिसीजंस लेने
0: दूसरी है
1: पड़ेंगे।
0: हमारे यहाँ की।
1: और कुछ एस्पेक्ट्स जो हम टच कर सकते हैं?
0: देखिए, इसमें मेरा यही कहना है कि आम आदमी को एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ बच्चों को एनवायरनमेंट संबंध में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया लिखाया जाता, बच्चों को प्राथमिक स्तर पे ही एनवायरनमेंट के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा उसकी होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट के बारे में
1: समझ जो है
0: समझ
1: अपनी
0: ले,
1: विकसित कर
0: जाने
1: पाए।
0: कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है, या उसका क्या रोल हो सकता है एनवायरनमेंट, हर आदमी का एक रोल हो सकता है कि वो कैसे एनवायरनमेंट को बचाए, कि पानी कम खर्च करे, बिजली कम खर्च करे, उसका समय पे यूज करे, कहाँ कौन सी जो रिसाइक्लेबल है उसका यूज करे, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो आने वाली समस्या है, आप प्लास्टिक का इतना यूज करते हैं कि अब वो एक माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारे
1: शरीर में पहुंच गई
0: हेल्थ
1: है,
0: का एक बहुत बड़ा इशू
1: बहुत
0: बनने जा
1: बड़ा
0: रहा है,
1: इशू है,
0: बहुत
1: पानी
0: बड़ा
1: में है, समुद्र में
0: है,
1: है,
0: हर जगह है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है।
1: उसके प्रति जो एक
0: जागरूक,
1: कॉन्शियसनेस है
0: यस,
1: वो होनी बड़ी
0: वो
1: जरूरी
0: हम लोग को
1: है।
0: जागरूक करना पड़ेगा, आगे आने वाली जनरेशन को हमको पढ़ाना पड़ेगा, उसको सिर्फ A+B वाला फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाना है, हमको प्रैक्टिकल उसको पढ़ाना है कि ये चीज देखिए, आपको नदी बचानी है, पेड़ भी बचाने हैं, तालाब भी बचाना है, पशु पक्षी भी बढ़ाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत तेजी से रेज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, इस बार सुपर अलनीनो आ रहा है, और सुपर अलनीनो का सारा कारण हमारे द्वारा ही पैदा किया गया है, और सुपर अलनीनो के कारण अभी से प्रेडिक्शन पहले 95% थी, अब 90% कर दी गई कि बारिश शायद नॉर्मल से 90% होगी, और 90% भी

0: मैं वो टोटल है पूरे देश के हिसाब से, कहीं बहुत ज्यादा होगी वो कम होगी, कहीं हो सकता है 40-50% हो जाए, कहीं 110% हो जाए, तो एवरेज नाइन्टी
1: एवरेज नाइन्टी
0: परसेंट ये तो
1: परसेंट
0: अभी प्रेडिक्शन है, और डेली प्रेडिक्शन चेंज हो रहे हैं। तो अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है एनवायरमेंट का, तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ी उसमें गिर जाता है, प्लस उसमें हजारों लाखों जो है जीव जंतु खत्म हो जाते हैं, उनकी स्पीसीज खत्म हो जाती है हमेशा के लिए। क्योंकि जब इस सुपर अलिनो आया था 1888 में, तो एक बहुत बड़ा फेमाइन आया और उसकी वजह से लाखों लोग जो है काल के काल को समा गए थे, और वही स्थिति से हमारी सरकार ने स्टेप लिए, ध्यान दे रही है वो कि नहीं सब, कि बड़ी सतर्क है, कि लेकिन आम आदमी को भी उसको पहले से सतर्क कर देना चाहिए कि नहीं जी आपको पानी का अभी से सहेज के रखें, पानी का कम यूज करें,
1: आपने पहले ही
0: और
1: कहा था कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन, तो
0: बेटर देन
1: हमको ये समझना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियों को अगर संरक्षित करना है तो हमको अपने पर्यावरण को संसाधन नहीं मानना है, वो जो है प्रिविलेज नहीं है, वो आपके लिए एक जीवन का आधार है, तो उस पर्यावरण का संरक्षित करना वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आपके जहन में होना चाहिए। विकास जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पे नहीं। संतुलन कहीं ना कहीं आपको बनाना पड़ेगा, संतुलन
0: करेक्ट
1: क्रिएट करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिससे सारी दुनिया जूझ रही है, तो केवल हम बात करके, पर्यावरण की बातें करके, एक पेड़ लगा के उसको शायद नहीं सुलझा सकते। वो हमारे जहन का हिस्सा होना चाहिए, हमारी सोच का हिस्सा होना चाहिए, और पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता आपने अपने काम के जरिए जो लोगों तक पहुंचाई है और दिखाई है, उससे शायद हमारे सुनने वाले बहुत से श्रोता प्रेरणा जरूर लेंगे। आप हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: विविधा कार्यक्रम, मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुविख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता से अनिंद्र सिंह की बातचीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं आप समय है कार्यक्रम फिल्मों से कवालियां, महफिल एक कवाली का। कवाली केवल संगीत नहीं बल्कि जज्बातों की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। हिंदी सिनेमा ने भी समय समय पर ऐसी अनेक यादगार कवालियां दी हैं जिन्होंने दर्शकों और श्रोताओं के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। तो तैयार हो जाइए उन सदाबहार फिल्मी कव्वालियों के सफर पर जिनमें कभी इश्क की मिठास है, कभी नोक झोंक का अंदाज, तो कभी रूहानी मोहब्बत का पैगाम। आइए इस खूबसूरत एहसास के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की महफिल।

आप सुन रहे थे फिल्म कच्चे धागे से ये कव्वाली। आवाज और संगीत है नुसरत फतेह अली खान का और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जो कि है फिल्म फिजा से। आवाजें हैं कादर गुलाम मुस्तफा का और मुर्तजा की। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार यार रहमान।

कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं और कुछ यादों को जगा देती हैं। उम्मीद है ये धुन भी आपके दिल तक पहुंची होगी।

इमरान अजीज मियां से ये कवाली आपने सुनी फिल्म बजरंगी भाईजान से। शब्द रचना थी कौसर मुनीर की और संगीत था प्रीतम का। आइए अब सुनते अगली कवाली जो कि है फिल्म वीर जारा से। आवाज है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की। कवाली के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है मदन मोहन का।

कुछ नगमे आवाज नहीं होते, वो एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं और जब भी बजते हैं बीते लम्हों से फिर मुलाकात करा जाते हैं। इसी के साथ एक कार्यक्रम महफिल कव्वाली यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 बज चुके हैं श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

हवा के झोंकों में आज भी तुम्हारा एहसास मिलता है, जैसे हर फूल की खुशबू में तुम्हारा नाम खिलता है। आप सुन रहे थे फिल्म कृष से ये गीत, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार थे फराज और संगीतकार राजेश रोशन।

चांदनी रात ने जब झील से बात की, तब लहरों ने भी तुम्हारी यादों की सौगात दी। आप सुन रहे थे फिल्म गुरु से एक गीत श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजों में, जिसको लिखा था गुलजार ने और संगीत आर रहमान का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि फिल्म रॉक ऑन से फरहान अख्तर की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते

0: 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकील और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है

0: कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, चार नाइजीरिया, एक लाइबेरिया, तीन किर्गिस्तान, एक उज्बेकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक कांगो और एक इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
2: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
1: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्कियाती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बुहरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाजे किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमुई काबिल कदर तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद किफालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदामात पेशरफ्त की क़यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद किफालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल GDP के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल GDP की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज़ की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सैमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला

0: शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मंसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत बीएसएफ और एसएसबी करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निजाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
1: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरांदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाजत नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के एक एक शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इकतसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निजाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिजाइल निजाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निजाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नेहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाजह मौकफ को दोहराया है کہ نام نہاد گلگت بلتستان سمیت جموں کشمیر اور

लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिल तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसायल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, सियासी जबर, माशी इस्तेसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में डीएम्स को अपने जिले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो जरूरत पड़ने पर महकमा जाति कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आईन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरकी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरे अंडमान के तवानाई के वसी इम्कान को वाजह करती है और इस ताश में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियां और सिफारिशात दाखिल करने की अपील की है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नतायज के ऐलान के बाद अपने पोर्टल पर हुए मनसूबाबंद साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 12वीं जमात के उम्मीदवारों के जवाबी पर्चों के वेरिफिकेशन और दोबारा जांच के लिए यह पोर्टल 2 जून को शुरू किया गया था। CBSE ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान पोर्टल पर मुतअद्दिद मनसूबाबंद साइबर हमले हुए हैं। ताहम इन हमलों को 24 घंटे 7 दिन की लगातार निगरानी और जवाबी मैकेनिज्म के जरिए नाकाम बना दिया गया। इस दौरान IIT कानपुर, IIT मद्रास और दीगर मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की साइबर सिक्योरिटी टीमों की मदद हासिल रही। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मगरबी वस्ती और मगरबी वस्ती बुहरे अरब, गोवा के हिस्सों और कर्नाटक के इलाकों में मजीद आगे बढ़ गया है। इस तरह की सूरत हाल तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में भी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जुनूब मगरबी मानसून के वस्ती बुहरे अरब, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के मजीद हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने के लिए सूरत हाल मवाफिक है। मौसमियात की एजेंसी ने यह भी कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की सूरत हाल मगरबी वस्ती, मशरकी वस्ती और शुमाल मशरकी खलीज बंगाल के इलाकों के साथ साथ शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में भी जारी रहने की तवक्को है। हॉकी में भारत ने आज जापान के शहर काकामी गहारा में खेले गए मर्दों के अंडर 18 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 से हरा दिया, जहां भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इक्तसादी पेशरफ को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए भारत सब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ 7.7% रखी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इस 7 सरहदी मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ कराई जाएगी। और जुनूब मगरबी मानसून बहर अरब गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाशवाणी आगरा के इस सुरमई मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका ना अपना साथी सागर जोगी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनी गंधा, एक ऐसा संगीतमय गुलदस्ता जिसकी हर पंखुड़ी में महक है आपके प्यार की, आपके संदेशों की और आपके पसंदीदा फिल्मी गीतों की। श्रोताओं, आपके स्नेहिल पत्रों ने इस कार्यक्रम को हमेशा विशेष बनाया है। देश के कोने कोने से भेजे गए आपके संदेश, आपकी शुभकामनाएं और आपके मनपसंद गीत हमारे इस सफर को और भी रंगीन बना देते हैं। तो आइए अगले कुछ पल तक हम साथ साथ चलें मधुर धुनों की उस दुनिया में जहां यादें भी हैं, भावनाएं भी हैं और संगीत का अनमोल खजाना भी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के पहले पत्र से जो कि हमें प्राप्त हुआ है अलीगढ़ से, समीर जी और चेतना जी का। वो कह रहे हैं कोई भी गाना सुना दीजिए फिल्म परदेश से। तो चलिए सुनते हैं समीर जी और चेतना जी की फरमाइश।

तो कैसी लगी फरमाइश समीर जी और चेतना जी आपको? हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद आई होगी। खैर, हम आपको बता दें इस गीत के बारे में। ये जो गीत है फिल्म परदेश से है, आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार नदीम श्रवण। श्रोताओं, अगला पत्र प्राप्त हुआ है जो कि है केरला से। देखिए कितनी दूर से हमें पत्र प्राप्त हुआ है, अनिमेश जी का। अनिमेश जी, हम बेहद खुश हैं और ये आपका प्रेम, आप इतनी दूर रहकर भी हमें, हमारा आकाशवाणी आगरा आप सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बेहद खास बात है। तो चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश।

कुछ धुनें दिल को छू जाती हैं और कुछ यादों को जगा देती हैं। उम्मीद है ये गीत भी आपके दिल तक पहुंचा होगा। अनिमेश जी, अब हम आपको बता देते हैं इस गाने के बारे में, जानकारी दे देते हैं। ये गाना जो है, ये फिल्म राजा हिंदुस्तानी से है। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण और सपना अवस्थी की। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनी गंधा।

सुर जब दिल से निकलते हैं तो जुबां की जरूरत नहीं होती। फिल्मी गीतों की यही खूबी है, हर कहानी अपनी सी लगती है। श्रोता, हम आपको बता दें कि ये फरमाइश थी आगरा से अनुजी की। अनुजी, आप सुन रहे हैं ना, ये गीत खासम खास आपके लिए था। अब हम आपको बता देते हैं इस गीत की जानकारी, दे देते हैं इस गीत के बारे में। ये गीत जो था फिल्म कुछ कुछ होता है से था। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गीतकार थे समीर और संगीतकार जतिन ललित। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश, जो कि है अतुल जी की, मेरठ शहर से। उनकी फरमाइश है कि आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत को सुना दीजिए, दिल तो पागल है से। तो चलिए अनुजी, अतुल जी, सुनते हैं आपकी ये फरमाइश।

कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। श्रोताओं, आप जो ये गीत सुन रहे थे थी फरमाइश अतुल जी की मेरठ से। ये फरमाइश थी फिल्म दिल तो पागल है से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में, जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था उत्तम सिंह का। इसी गीत के साथ, इसी फरमाइश के साथ ये कार्यक्रम रजनीगंधा यही संपन्न होता है।

मिनिमम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं पंडित विश्वनाथ से

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित विश्वनाथ से राग पूरिया कल्याण में खयाल गायन। इसी के साथ ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और

0: भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।